एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

0: ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1,500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन और

0: ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1,500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली यह यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यह यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में चौथा स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचारों का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से कर रहे थे। FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः की 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

हर सुबह की तरह पहले वंदना देश की। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, चलो प्रशस्त पुण्य पर।

अंत है, पढ़े चलो पढ़े चलो। हमारा देश भारत विश्व को मानवता, सत्य और अहिंसा का संदेश देता है। सोने का सूरज जागकर हमारे देश को प्रणाम करता है। तो आइए हम सब भी माँ भारती के गुण गाएं इस देश वंदना के साथ।

समुसर में देश वंदना अभी आपने सुनी और आइए अब आरंभ करें आज की ईश वंदना। सबसे पहले लेते हैं मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य गणेश का नाम, जो बुद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और सारे काम निर्विघ्न करने में हमारी सहायता करते हैं। आइए लेते हैं गणेश भजन का आनंद।

शंकर महादेवन और साथियों के स्वर में ये गणपति भजन अभी आपने सुना। और आइए भक्ति रस से परिपूर्ण आराधना में लेते हैं माँ भगवती का नाम, जो इस संसार में जीवों को उनकी परिस्थितियों का सामना करने का साहस देती हैं और अपने आशीर्वाद से सारे काम सफल कराती हैं।

सत्येंद्र सिंह नारुका और साथियों के स्वर में ये देवी गीत अभी आपने सुना। और आइए आराधना में लेते हैं राम और श्याम का नाम, क्योंकि इस देश के चरित्र और चिंतन की कहानी बताते हैं राम और श्याम।

कृष्ण कहो या राम, ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे बेला सुराखी और साथियों के स्वर में। और अब अंत में आइए सुन लेते हैं भोले भंडारी का ये भजन। स्वर है मास्टर सलीम और साथियों के।

0: मास्टर सलीम के गाए इस गीत के साथ ही आज की आराधना हम यहीं संपन्न करते हैं। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। समय हो चला है खेती की बात सुनने का। बैंगन के फल भेदक कीट और उनका नियंत्रण, इस विषय पर सामयिक सुझाव सुनिए। वाचन स्वर अभिनव गौरहा का है।
1: किसान भाई हो, राम राम, जित्तू के जय जोहार। खेती के बात मापन के स्वागत है। आज बात करबो भांटा के फसल में तना और फल छेदक कीट के लक्षण और ओखर समन्वित प्रबंधन। तना और फल छेदक जेन कीट होते, एखर इल्ली जेन होते फसल ला नुकसान पहुंचाते। इल्ली मन हा गुलाबी रंग के आभा लिए हुए झुर्रीदार होते। एखर पीठ में बैगनी रंग के धारी होते। प्रौण हा मध्यम आकार के होते। एखर पंख सफेद होते और ओमन मा भूरा धब्बा होते। ये कीट के इल्ली सबले पहली कोमल शाखा मा प्रवेश करके अंदर से ही खात रही थे, जेखर से शाखा मुरझा के लटक जाते और बाद मा सूख जाते। तना छेदक के बात करी, पूर्ण विकसित इल्ली सफेद रंग के होते। व्यस्क कीट के पंख के अग्रभाग से सफेद हल्का भूरवा रंग के जिनमा तिरछा लकीर होते, इला तना छेदक कहे जाते। तो भाई ये दोनों जब आक्रमण करते तो भांटा के

0: फसल जिन होते ओला नुकसान पहुँचाते, तो आर्थिक नुकसान हो जाते। तो एखर से हमन ला बचना है, फसल ला बचाना है, तो समन्वित प्रबंधन जरूरी है। खेत में मुरझाए हुए और क्षतिग्रस्त फल ला तोड़ के ओखर अंदर पाए जाए वाले इल्ली सहित फल ला नष्ट कर देना चाहिए। फसल कटे के बाद खेत के जुताई कर देना चाहिए, जेखर से माटी में पड़े संखी मन ह नष्ट हो जाए। एक एक खेत में लगातार लंबा समय तक बैगन के फसल, भांटा के फसल नहीं लेना चाहिए। परभक्षी मन के बैठे पर टी आकार के खूंटी 10-15 ठी प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लगाना है, जेखर से पक्षी मन आके बैठी और जिन कीट होते उम्र चुन चुन के खा देते। तना और फल छेदक प्रबंधन पर 25 प्रति एकड़ फेरोमोन ट्रैप के उपयोग करना है। ये तो है समन्वित प्रबंधन के बाद, जो मतलब पैसा लगना नहीं है मां। अब रासायनिक नियंत्रण करबो। रासायनिक नियंत्रण कब करे जाते? जब इस सब के आक्रमण ज़्यादा हो जाते, तब भाई हाथ से तो हटे नहीं। तो बैगन के तना और फल छेदक कीट के नियंत्रण पर क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल 18.50% SC 200 ग्राम कीटनाशक ला 500 से 700 लीटर पानी के साथ प्रति हेक्टेयर हमला छिड़काव करना है। दूसर बैगन के तना और फल छेदक कीट के नियंत्रण पर इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 300 ग्राम कीटनाशक ला 500 लीटर पानी के साथ प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना है। बीटी आते बीटी दवाई हम अगर पूछबो दुकान में मिल जाते, ओखर 1 लीटर प्रति एकड़ हमन ला छिड़काव करना है। ये बड़ लाभदायक जिनिस है बीटी है। दानेदार कीटनाशक कार्बोफ्यूरान 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से भी हमन छिड़काव कर सकत हन, जेखर से जिन तना छेदक वाले जन कीट होते ओ मन से हम बांच सकत हन, अपन फसल ल बचा सकत हन। भांटा फसल लगात हन तो सबले कारगर उपाय है पक्षी मन के बैठे भर टी आकार के डंठल ला हम खोच दी अपन खेत में, जेखर से पक्षी मन आके एक कीट मन के समाप्ति कर सकते हैं। जैसे भी देखथन के हमन जब फसल ला कट गए ओखर बाद खेत के जुताई करथन, त पाछू मा कोकड़ा वानी बानी के मैना कीट जिन पक्षी है तिन मन आके पाछू नांगर पाछू चलत रहते, और ओमन के आँखी में दिख जाते वैसन कीट या जिन भी निकलते भूया ले ओला ओमन चुन चुन के खा लेते। ते प्राकृतिक रूप से हम ये सबके निवारण भर व्यवस्था कर सकत हन। तो ओ इस बैगन के तना और फल छेदक कीट के बात और ओखर समन्वित और रासायनिक नियंत्रण। राम राम, जय जोहार।
1: खेती के बाद कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया जा रहा था। वाचन स्वर अभिनव गौरहा का था। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:35 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। आज के अंक में मुख्य गायन स्वर श्रीकांत पारगांवकर का है। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

भरत अपनी माता कैकेयी के कठोर आचरण से क्षुब्ध होकर आत्मग्लानि की आग में जल रहे हैं। पति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोक से जन्म लेना उनके लिए घनघोर पातक सिद्ध हुआ है। पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं होती। मन में ये धारणा पुष्ट होती जा रही है कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सुनकर जल रहे हैं।

किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें, कि तभी कुबड़ी मंथरा भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदी फदी उनके सामने आ गई। शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबड़ पर जोर से एक लात मारी। चीखती चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबड़ फूट गया। शत्रुघ्न ने झूठा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी भरत ने उन्हें शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। पश्चाताप और ग्लानि की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है। लगता है जैसे सोने की कल्पलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। कभी तो वो माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण तथा सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत पर सिर धुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज के अंक में मुख्य गायन स्वर श्रीकांत पारगांवकर का था, संगीत संयोजन सतीश भाटिया ने किया था। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फ्लैगशिप कार्यक्रम नव विहान। आज हम आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये योजना 26 मार्च 2020 को आरंभ की गई थी और इसका शुभारंभ अप्रैल में कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ था। इसका उद्देश्य था गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त अनाज देकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है इस योजना के तहत। साथ ही साथ सरकार ने

योजना को आगे बढ़ाते हुए 1 जनवरी 2024 तक, फिर बाद में और 5 वर्षों के लिए बढ़ाकर 2028 तक कर दिया है। इसमें 80 करोड़ से अधिक गरीब और जरूरतमंद लाभार्थियों को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत कार्ड धारकों को बिना किसी शुल्क के अनाज मिलता है, बस राशन कार्ड होना आवश्यक है। प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो और अंत्योदय परिवारों को प्रति व्यक्ति 35 किलो अनाज दिया जाता है। सरकार ने इस योजना को 2028 तक बढ़ा दिया है, तो इसका लाभ हम अभी भी ले सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड यानी कि लाभार्थी देश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए अपना राशन कार्ड दिखाकर राशन ले सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे नव विहान कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:50 होने को हैं। अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

इसी सभा में सुबह 7:20 पर सुनिएगा गांधी चर्चा। विषय है कर्म का महत्व। वाचन स्वर हरिश्चंद्र वाद्यकार का। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में सुबह 7:30 सुनिएगा यादों के झरोखे से, और आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर आएंगे हम सुबह 10:30 से। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुनते हैं शुक्रवार को सुबह 10:00 से, जिसमें आज हम पारंपरिक भोजली गीत सुनवाएंगे सुशीला ध्रुव, गायत्री निषद और साथियों की आवाजों में। साथ ही साथ बाल मुकुंद पटेल और साथियों के स्वर में श्रवण कुमार का चरित्र भी आज के कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। आज सुबह पेश करेंगे 7:05 से, और प्रायोजित कार्यक्रम अपने समय 11:00 से प्रसारित किया जाएगा NCERT। इनसे मिलिए, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे सुबह 8:30 और दिन में 12:00 से संध्या 5:00 तक आप सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम। विविध भारती से ही अनुप्रसारित कार्यक्रम आप रात्रि सुनते हैं 9:15 से 11:00 तक।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ हम प्रसारित करते हैं संध्या 5 बजे। संध्याकालीन प्रसारण में आज 5:35 पर युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवा जगत का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें साइबर जागृति अभियान के बारे में आपसे चर्चा होगी। साथ ही साथ आज की बात होगी संस्कृत एक प्रवाहमय भाषा, पाणिनी शोध संस्थान के बारे में, और उस पर ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। क्रम होगा मेरा शहर, जिसमें बिलासपुर की पुस्तकालय के बारे में आपको जानकारी

दी जाएगी। गीत संगीत भी शामिल होगा आज की युवा जगत में। 7:30 पर सुनिएगा ग्राम सभा कार्यक्रम, जिसमें आज बेरा के गोट का विषय है रिश्तों का जीवन में महत्व का पर्व रक्षा बंधन। इसके अलावा कृषि प्रबंधन में महिला समूह की भूमिका के बारे में भी गोट बात होगी। फोन इन कार्यक्रम होगा खरीफ फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन पर। डॉक्टर दुष्यंत कौशिक श्रोताओं से बातचीत करेंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे और कार्यक्रम का संचालन करेंगे पंचू भैया।

शाम की सभा में फिल्म संगीत के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 5:05 पर, चित्रपट संगीत। ईमेल करें गीत सुने शाम 6:20 और 7 बजे। रजनीगंधा कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:15 से, और 8 बजे सुनिएगा संजय वत्सल का कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत।

0: सुबह 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करते हैं। 9:55 और 11:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले किए जाते हैं। शाम 6 बजे आप सुनते हैं 6:05 पर कार्यक्रम विवरण और प्रादेशिक समाचार 6:10 से आकाशवाणी रायपुर से। समाचार संध्या 8:45 पर दिल्ली केंद्र से और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 9 बजे दिल्ली केंद्र से हम रिले करते हैं। 11 बजे से 11:10 तक हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का अनुप्रसारण किया जाता है आकाशवाणी दिल्ली से। उसके बाद हमारी सभा का समापन होता है। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:55 होने को है। संस्कृत और हिंदी में समाचार अब दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत दिवसस्य रक्षाबंधन पर्वणः च हार्दिक्यः शुभकामनाः। अथ वार्ताः। नेपालदेशे अकस्मादागतेन भीषण जलाप्लावेन आपद्ग्रस्तानां भारतीय नागरिकाणां अन्वेषणाय तेषां रक्षणाय च भारतेन प्रयत्नाः तीव्रीकृताः। नेपालदेशे आगतेन भीषण जलाप्लावेन मृतानां संख्या 89,300 यावत् जाता। सहस्रशः लुप्तानां जनानां अन्वेषणाय अधिकारिणः प्रयत्नशीलाः सन्ति। तेषु 90,200 भारतीयाः अपि सन्ति। तिब्बत नेपालयोः अधिकारिभिः 15,000 लुप्तजनानां सूचना प्रदत्ता। तेषु 30 देशेभ्यः आगताः अनेकाः विदेशिनः अपि सन्ति। विदेशमन्त्रालयेन संसूचितं यत् नेपालदेशे अधुना पर्यन्तं 84 भारतीय नागरिकाः रक्षिताः सन्ति। तेषु त्रिशूली वन इत्यस्याः परियोजनायाः 63 कर्मचारिणः अथ तमिलनाडु राज्यात् आगताः 21 जनाः सम्मिलिताः सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् भारतेन नेपालस्य वर्तमानानाम् आपदुद्धार कार्याणां साहाय्यार्थं 47 तन्मिथाधिकाः आपत्कालीन साहाय्य सामग्र्यः प्रेषिताः।
2: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: राष्ट्रियापद प्रतिकार बलेन उक्तं यत् नेपालदेशे सहसा आगतेन विनाशकारिणा जलाप्लावेन बिहारोत्तर प्रदेशयोः सीमावर्ति क्षेत्रेषु अद्यावधि कश्चिदपि प्रतिकूल प्रभावः न जातः। तथापि

0: उभयोः राज्ययोः प्रशासनस्य समन्वयेन परिस्थितिं निरन्तरं निरीक्ष्यमाणा अस्ति। राष्ट्रियापत् प्रतिकारबलस्य महानिरीक्षकः नरेन्द्रसिंह बुन्देला उक्तवान् यत् उभयोः राज्ययोः राष्ट्रियापत् प्रतिकारबलस्य 20 दलानि नियोजितानि सन्ति। तेषु बिहारे 9 दलानि अथ उत्तरप्रदेशे च 11 दलानि सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः उज्बेकिस्तानदेशस्य 2-दिवसीययात्रायै प्रस्थास्यति। प्रधानमन्त्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतेः शौकत मिर्जियोयेव इत्यस्य आमन्त्रणे सति ताश्कन्द नगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिना मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः रणनीतिक सहमतिम् इतोऽपि सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्री जनधनयोजनायाः अद्य 12 वर्षाणि जातानि, येन देशस्य वित्तीय समावेशन परिदृश्यस्य परिवर्तने महत्वपूर्णं सोपानं चिह्नितमस्ति। 2014-तमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना इयं योजना समारब्धा। प्रधानमन्त्री जनधनयोजनायाः अन्तर्गतम् अद्य पर्यन्तम् 61 कोट्यधिकाः लेखाः उद्घाटिताः सन्ति, यस्मिन् निक्षेपस्य मूल्यम् आहत्य 17,000,000,000,000 रूप्यकाणि अस्ति। रक्षाबन्धनपर्व भ्रातृभगिन्योः मध्ये विद्यमानस्य विशेषस्नेहबन्धनस्य पर्व अस्ति यत् अद्य सम्पूर्णदेशे आचर्यते। अस्मिन् अवसरे भगिन्यः स्वभ्रातॄणां हस्तमणिबन्धेषु विविधवर्णानि रक्षसूत्राणि बध्नन्ति अथ च तेषां समृद्धेः आरोग्यस्य सुखस्य च कामनां कुर्वन्ति। तदनन्तरं भ्रातरः स्वभगिनीनां रक्षणस्य साहाय्यस्य च सङ्कल्पं कुर्वन्ति, सहैव ताभ्यः उपहारान् यच्छन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला च रक्षाबन्धनस्य अवसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रेषितवन्तौ इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि लगभग 1500 लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग भी शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोसेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाश समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और

0: वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चांदी की गुणवत्ता की जांच के लिए 102 जिलों में 341 सिल्वर एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स के साथ हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधारित चांदी के हॉलमार्किंग तंत्र का विस्तार किया है। मानक ब्यूरो त्योहारों के मौसम से पहले 25,000 से अधिक चांदी के कारोबारियों को पंजीकृत कर चुका है। पिछले साल सितंबर से ये व्यवस्था शुरू की गई थी और इसके बाद से 77 लाख से ज्यादा चांदी के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की जा चुकी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालटल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। श्रावण में आयोजित होने वाली 12 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालु पुंछ जिले में स्थित बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर जाते हैं। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कलराज स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोट्रानी को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। इससे पहले दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकर से होगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार अभी आपने सुने। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुति कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह
1: बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम आज सुबह सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

श्रोताओं, भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन है। आज आप सभी को इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को राखी हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पूरे देश में ये हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। राखी वैसे तो रक्षा का बंधन कहलाता है, साथ ही साथ शक्ति, विश्वास और विजय का प्रतीक भी है। जी हाँ श्रोताओं, केवल भाई के माथे पर तिलक, कलाई पर रेशमी धागा बांधना ही नहीं, भाई का अपनी बहन की रक्षा का वचन देना भी इस त्योहार की परंपरा रही है। सुख दुख में साथ देने के अलावा परिवार में सामंजस्य, एकता बनाए रखना और सभी

कसियों का, विशेष रूप से बुजुर्गों का, नन्हे बच्चों का ध्यान रखना भी इस त्योहार से हम सीखते हैं। पौराणिक कथाओं में देखा जाए या पुराने जमाने की बात की जाए तो शची ने इंद्रदेव को और द्रौपदी ने अपने सखा कृष्ण को, मुगल शासक हुमायूं को रानी कर्णावती ने भी राखी भेजी थी और सभी ने अपने वचन का पालन किया था और रक्षा का वचन निभाया भी था। तो इसके साथ साथ हम भाई बहन के अलावा परिवार से आगे बढ़कर समाज के लिए, देश के लिए, प्रकृति पर्यावरण के लिए भी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उसके प्रति सजगता प्रतिबद्धता भी याद रखेंगे तो हम इस धरती पर हर जीव के साथ सुखी रह पाएंगे। श्रोताओं, रक्षाबंधन के अलावा आज श्रावण पूर्णिमा को संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, जो कि शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार सन 1969 से मनाया जाता है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत के सम्मान के लिए, ऋषियों मुनियों को कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए और नई पीढ़ी को संस्कृत के बारे में, प्राचीन धरोहरों के बारे में, उस ज्ञान विज्ञान के बारे में जगाने के लिए, उन्हें बताने के लिए ये दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ हम सब ये भी जानते हैं कि पूर्णिमा को कभी कभी चंद्र ग्रहण लगता है और आज भी चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण होगा, परंतु भारत में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम राखी आराम से मना सकते हैं और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगने से हमारे शरीर के साथ साथ पृथ्वी के ऊपर भी उसका असर पड़ता है और विशेष रूप से जल तत्व जो है वो उसकी गति से प्रभावित होता है। इसीलिए ज्वार भाटे की स्थिति समंदर में बनती है और दूसरी ओर हम देख ही रहे हैं कि भयानक फ्लैश फ्लड जो कि नेपाल और हमारे देश के कुछ राज्य को जलमग्न कर चुकी है, उसने बहुत तबाही मचाई है। श्रोताओं, इस तरह की प्राकृतिक आपदा कोई भी रहम नहीं करती है, कोई भी दया नहीं करती है, बल्कि कुदरत का विकराल प्रवाह बहुत सारे पेड़ पौधों, जीव जंतु, घर संपत्ति को अपने वेग के साथ बहा ले जाता है, पीछे रह जाते हैं विनाश के निशान। इसीलिए पेड़ों की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना और प्रकृति के साथ रक्षा बंधन भी हमें मजबूत करना ही होगा, ताकि हर त्योहार, हर पर्व हम हर्षोल्लास के साथ मना सकें और बाकी के दिन चैन से जी सकें। फिलहाल कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत हमने सजा रखा है जो आज के दिन विशेष के लिए बनाया गया है, तो आप भी गुनगुनाइए हमारे साथ ये प्यारा सा गीत।

0: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
1: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
2: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
5: सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की ढेरों ढेरों बधाइयां दे रहे हैं दतरंगी से भागवत वर्मा और लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी।
0: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
1: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
2: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
6: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
7: संदेशों के बाद कार्यक्रम आज सुबह में आइए सुन लेते हैं आज की ट्रैफिक अपडेट्स जो हमें प्राप्त हुए हैं यातायात पुलिस बिलासपुर से।
8: नमस्कार मित्रों, अब आप सुनेंगे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर अर्थात अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था उमाशंकर पांडे से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज भाई बहनों का अमर प्रेम पर्व रक्षाबंधन है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे शहर ही नहीं पूरे जिले में बड़ी संख्या में रंग बिरंगी राखी की दुकानें सजी हैं, जहां राखी के पुराने

ठिकाने भी बज रहे हैं। इन दुकानों में बहनों की बड़ी संख्या राखी खरीदते दिखाई दे रही है। यही स्थिति मिठाई दुकानों की भी है, जिससे पूरे शहर की सड़कों में यातायात की अधिकता है। सभी वाहन चालकों से अनुरोध है, ऐसी स्थिति में अपने वाहनों की गति कम से कम रखें, धीरे चलें, सुरक्षित चलें। साथियों, आज रक्षाबंधन के पर्व पर सभी भाई अपनी बहनों के पास राखी बंधाने जाएंगे तथा राखी बंधाकर शाम से देर रात तक वापस भी आएंगे। ऐसे सभी भाइयों से अनुरोध है, रक्षाबंधन के उत्साह में अपनी सुरक्षा ना भूलें। ध्यान रहे, दो पहिया वाहन में तीन सवारी ना जाएं और दो पहिया वाहन में सहयात्री सहित जीवन रक्षक उपकरण हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने। जल्दी के चक्कर में वाहन तेज गति में न चलाएं। यदि वाहन चलाते बहन का फोन आ जाए तो भी मोबाइल न उठाइए, अर्थात वाहन चलाते मोबाइल से बातें बिल्कुल न करें।

0: हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने। जल्दी के चक्कर में वाहन तेज गति में न चलाएं। यदि वाहन चलाते बहन का फोन आ जाए तो भी मोबाइल न उठाइए, अर्थात वाहन चलाते मोबाइल से बातें बिल्कुल न करें। सड़क में जिस दिशा में मुड़ना हो हाथ या इंडिकेटर लाइट से संकेत जरूर करें। वर्षा से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, अतः पूरी सावधानी के साथ धीरे चलें। सड़कों में मवेशी भी है, इसका भी ध्यान रखें। यातायात संकेतों का पूरी तरह पालन करें। गलत दिशा में वाहन कभी ना चलाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आप सभी भली भांति जानते हैं कि नशा सर्वनाश का कारण है, इसे कभी भी हाथ ना लगाएं, अर्थात नशे की हालत में भूल कर भी वाहन ना चलाएं। मित्रों, अपनी बहनों के पास राखी बंधाने आपको हर वर्ष आना है, इसलिए सड़क सुरक्षा के इन नियमों का पालन करें तथा इस वर्ष अपनी बहनों को उपहार में उपरोक्त बातों को अक्षरशः पालन करने का वचन देते जाइए। तब आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई माने जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी बहनों को इस वर्ष सबसे कीमती उपहार जो दिया है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: इतनी महत्वपूर्ण और सुंदर जानकारी हमें दी यातायात पुलिस बिलासपुर की ओर से मिली है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और ट्रैफिक अपडेट्स के लिए भी धन्यवाद करते हैं। और बस इन्हीं बातों के साथ आज का आज सुबह कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो चला है। तो आपके हंसते मुस्कुराते खुशनुमा दिन की शुभकामनाओं के साथ हम ले रहे हैं विदा। नमस्कार।

अभी आपने सुना प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं, जिसे आपने ट्यून किया है FM बैंड 103.2 MHz पर। 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है गांधी चर्चा। कर्म का महत्व विषय पर आज की गांधी चर्चा आप सुनेंगे। वाचन स्वर हरिश्चंद्र वाटिकार का है।

गांधी जी गीता की भांति ही कर्म करने तथा फल की इच्छा न करने की प्रेरणा दिया करते थे। वह लोगों को सत्य की राह पर चलना सिखाते थे और दिग्भ्रमित लोगों को सही राह पर लाना अपना कर्तव्य समझते थे। भारत के स्वाधीन होने के कुछ महीने पूर्व गांधी जी विश्राम के लिए श्री महावीर त्यागी के साथ मसूरी गए। यह इलाका श्री महावीर त्यागी का ही था। एक दिन गांधी जी धूप में चटाई पर कुछ लिख रहे थे कि तभी त्यागी जी एकांत पाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दो क्षण मौन रहने के बाद गांधी जी ने उनसे पूछा, आज तूने ऐसी बेवकूफी क्यों की? पहले तो ऐसा नहीं करता था। त्यागी जी तुरंत कोई उत्तर न दे सके। कुछ देर चुप रहने के बाद हाथ जोड़कर बोले, इस मानस गात को पुनित चरण छूने का कभी साहस ही न हो सका। गांधी जी ने पूछा, तो आज कैसे हुआ? त्यागी जी ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि झूठ नहीं बोलूंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, साला कहने की आदत छोड़ दूंगा, दैनिक व्यायाम करूंगा और चरखा कातूंगा, लेकिन आत्मबल की कमी के कारण आज भी झूठ बोलता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, गुस्सा करता हूँ, साला कहने की आदत भी नहीं छूटी, न व्यायाम करता हूँ और न ही चरखा चलाता हूँ, लेकिन आज एक छोटी सी प्रतिज्ञा की है कि जिन हाथों से

चरण छुए हैं उनसे किसी का अहित नहीं करूंगा। शायद शुभ चरणों के प्रताप से इस प्रतिज्ञा को निभाने में मैं सफल हो जाऊं। यह सुनकर लोगों के मन का एक्सरे करने वाली आंखों से गांधी जी ने त्यागी जी की आत्मा का एक्सरे किया और बोले, अच्छी प्रतिज्ञा की। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर कहा, इस प्रतिज्ञा के बाद तो किसी अन्य प्रतिज्ञा की आवश्यकता ही नहीं। एक के साधे सब सध जाता है। तुम्हारी इस प्रतिज्ञा के सफल होने पर संपूर्ण आत्मा को बल मिलेगा, सिगरेट भी छूट जाएगी। ऐसी प्रतिज्ञा करने के लिए तो प्रतिदिन चरण छू सकते हो। ये था गांधी जी का संस्मरण। और अब आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा भजन।

गांधी चर्चा का प्रसारण अभी हम कर रहे थे, कर्म का महत्व। इस विषय पर गांधी चर्चा आपने सुनी हरिश्चंद्र वाधिकार की स्वर में। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की झरोखे से। आज के कार्यक्रम में राखी गीत हम आपको सुनवाएंगे, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाजों में ये गीत।

रक्षाबंधन का ये सबसे मशहूर गीत रेशम की डोरी फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में आपने सुना, जिसे लिखा था इंदिवर ने और संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। आत्माराम की फिल्म थी रेशम की डोरी। और आइए अब सुनते हैं 1969 में आई फिल्म छोटी बहन का राखी का गीत, जिसे लिखा शैलेंद्र ने, शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया और स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

0: press the bell.
1: जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
2: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
3: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
4: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
3: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
5: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
0: प्रेस द बेल आइकन।
6: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की झरोखे से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं रक्षाबंधन के गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत, अनजान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाया है। ये फिल्म आई थी 1956 में और M. सादिक इसके निर्देशक थे।

0: to enjoy
1: evergreen melodious songs from over the years to the latest ones.
2: ये आप गाना सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अनजान से, और आइए आप सुनते हैं राखी फिल्म का वो गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत के बोल लिखे हैं, रवि ने संगीत से।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
2: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
3: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
4: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
3: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
5: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
6: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम यादों के झरोखे से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ राखी गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अनपढ़ फिल्म से लता मंगेशकर के स्वर में, राजा मेहदी अली के संगीत निर्देशन में ये गीत आप सुनेंगे,

लीजिए कार्यक्रम के अंत में सुनिए सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गीत फिल्म दिल एक मंदिर से, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन ने, धुन बनाई है।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: जी हाँ, आकाशवाणी आइए, विज्ञापन दीजिए और अपनों को बधाइयां दीजिए त्योहारों की और पर्वों की। बहरहाल, यादों के झरोखे से कार्यक्रम आज हम यही समाप्त कर रहे हैं। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात के लिए। अब हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
3: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
4: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहां से 10 टन

0: करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। धन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
4: शंकरा 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक

0: पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
2: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
3: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती है कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
5: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
4: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम 4थे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित, नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 100

0: 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हमारे भारत की जो साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार होते हैं उसमें अभी हाल ही में 2026 में 2025 के लिए साहित्य अकादमी के पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें हमारे उत्तर भारत के प्रयागराज से ममता कालिया जी, इनका एक काफ़ी प्रसिद्ध जीते जी नाम से इनका एक कृति है, वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया और जिसने भी पढ़ा वो अभिभूत हो गया। इसके लिए इन्हें 2025 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार देने की घोषणा की गई और इस साल 2026 में इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आज हमारे साथ फोन लाइन में ममता कालिया जी हैं, हम इनसे जानेंगे इनके बारे में और इनके साहित्यिक सफर के बारे में। तो ममता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो ममता जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका साहित्यिक सफर कब से शुरू हुआ।
1: अरे मुझे तो लिखते हुए इतने साल हो गए, देखिए पुरस्कार तो अब जाकर मिला है और इसके पहले और कई बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं
0: जी,
1: लेकिन मैं तो 1957 से लिख रही हूँ, है ना
0: जी।
1: आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने लिखना छोड़ा हो कभी आज तक। जब मैं पढ़ती थी तभी मैं लिखती थी
0: जी,
1: और जब पढ़ाती थी तब भी लिखती थी, तो मैंने कभी भी लिखने का काम छोड़ा नहीं आज तक।
0: जी जी जी,
1: तो मैं अपने को फुल टाइम राइटर मानती हूँ।
0: जी, जी जी जी। तो ममता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो सबसे पहली आपकी लेखनी जो कलम से होते हुए पन्ने पर आई हो, जिसे लिखने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ अब मैं साहित्य के क्षेत्र में कदम रख सकती हूँ।
1: जी देखिए, मेरा तो ये साहित्य का अन्य प्राशन बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि मेरे पिता श्री विद्याभूषण अग्रवाल हिंदी और इंग्लिश साहित्य के बहुत विद्वान थे
0: जी जी,
1: और वो उस जमाने के ऑल इंडिया रेडियो और आजकल जो कहते हैं आकाशवाणी
0: जी,
1: आकाशवाणी में वो काम करते थे
0: जी,
1: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे वो
0: जी जी।
1: तो हमारे घर में बड़े लोगों का आना जाना लगातार रहता था, क्योंकि उस जमाने में रेडियो एक बहुत सम्मानजनक माध्यम था जिससे बड़े बड़े लेखक जुड़े रहते थे, वे आते थे अपने प्रसारित करते थे। मैं छोटी सी थी उस समय, तो मेरी बहन तो नाचने और संगीत सीखने में आगे रहती थी और मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं खाली बैठक में बैठ के और साहित्यकारों की बातें सुनती थी। उस समय ये दिल्ली की बात है, पुरानी दिल्ली में हम लोग रहते थे उस समय, और उस समय इतने बड़े बड़े लेखकों को मैंने देखा जिनकी बातें भी मुझे समझ में नहीं आती थी, जैसे जैनेन्द्र कुमार तो क्या बोलते थे वही जानते थे, उतनी धीमी आवाज में बोलते थे और उनकी जो कहानी होती थी वो इतनी दार्शनिक होती थी कि मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी। और मेरी उम्र जो क्या थी, 8-9 साल की थी उस समय, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता था क्योंकि लेखकों को हमारे घर में बहुत आदर दिया जाता था। विष्णु प्रभाकर तो रोज ही आते थे हमारे घर, क्योंकि हम

0: पुराने दिन गए रहते थे, उसी के पास उनका मोहल्ला था कुंडे वालान। हम लोग चूड़ी वालान में रहते थे और वो कुंडे वालान में रहते थे, तो रोज का ही उनका आना जाना रहता था सुबह शाम। बाद में शायद वो आकाशवाणी में करने लगे थे, तो मेरा देखा जाए तो लालन पालन ही साहित्य के दरवाजे पर हुआ है।
1: जी जी जी।
0: और भी तमाम जितने भी लेखक उस समय के होते थे बड़े बड़े, वो सब हमारे घर आते थे, क्योंकि पापा बड़े प्रेम से सबको कहते थे कि आइए चाय पीजिए, शिकल जी पीजिए, मेरे घर आइए। और उस जमाने में लोग इतने प्रेमी होते थे कि वो एक बुलावे पे आ भी जाते थे।
1: जी जी जी।
0: कोई फोन नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, लेकिन एक बार बुलाया तो वो जरूर आते थे।
1: जी जी।
0: सभी लेखकों को अपने लड़कपन में ही देख लिया, जैसे गजानन माधव मुक्ति बोध, इतने कठिन लेखक और इतने सीनियर लेखक थे, बड़े लंबे थे वो, नागपुर में वो हमारे घर आए करते थे।
1: जी जी।
0: तो सभी लेखकों के ये प्रभाव मेरे पर पड़ा कि लेखक बनना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब आपकी इज्जत करते हैं और सब आपका लिखा हुआ पढ़ते हैं।
1: जी जी।
0: ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऐसा भी कोई है कि जिसको लोग ढूंढ ढूंढ कर पढ़ते हैं उसकी किताबें। इसलिए मैंने बहुत पहले तय कर लिया, जब मैं समझती भी नहीं थी कि लेखन क्या होता है, मैंने तय किया मैं तो लेखक बनूं।
1: जी। तो ममता जी, हम आपके शैक्षणिक सफर के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा, फिर मिडिल स्तर की, हायर स्तर की शिक्षा कहाँ कहाँ हुई, किन किन शहरों में
0: हुई। पढ़ाई तो मेरी दिल्ली में ही हुई, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए मेरे पास किया, मैं योग्यता सूची में मेरा स्थान था
1: जी।
0: और दिल्ली में ही एक कॉलेज में, दौलत राम कॉलेज में मेरी नियुक्ति हो गई। पहले ही इंटरव्यू में मैं ले ली गई।
1: जी जी।
0: क्योंकि मैं मेरिट लिस्ट की विद्यार्थी थी और उस जमाने में लोग बहुत कदर करते थे विद्वता की और प्रतिभा की।
1: जी जी।
0: तो मुझे पहले ही इंटरव्यू में मुझे दौलत राम कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई।
1: जी जी।
0: तो मेरा जीवन बड़ा अच्छा गुजरा था। पापा आकाशवाणी में थे, मम्मी घर में रहती थी, हम तीन लोग थे बस। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी
1: जी।
0: तो बहुत अच्छा जीवन बीत रहा था हमारा, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाने में मुझे बहुत मजा भी आता था। और जो मेरे से पढ़ने वाली लड़कियां होती थी, कई बार तो वो मुझसे बस मुश्किल से दो तीन साल छोटी होती थी।
1: जी जी जी।
0: मैंने बहुत जल्दी एमए कर लिया और बहुत जल्दी मुझे नौकरी मिल गई।
1: जी जी।
0: इसी तरह मेरे पिता का था कि वो भी बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने एमए किया और बड़ी जल्दी उन्हें नौकरी मिली थी। तो ये हमारे घर की परंपरा रही है कि पढ़ाई में कभी से मुड़के ना देखो
1: जी।
0: और लिखने का काम साथ साथ करते रहो, तभी आप एक संपूर्ण मनुष्य हो।
1: जी जी।
0: तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, मैं जब बहुत छोटी थी तभी मेरी रचनाएं धर्मयुग में छपने लगी थी। उस समय धर्मयुग के संपादक होते थे सत्यकाम विद्यालंकार
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा, अग्रवाल साहब अपनी लड़की से कहिए कि कुछ बच्चों के लिए लिखे कहानियां। तो मैंने बच्चों के लिए तीन कहानियां लिखी थी तब, और तीनों की तीनों छाप दी उन्होंने। उन कहानियों को मुझे मानदेय भी मिला था।
1: जी जी।
0: मुझे बहुत अच्छा लगा और तभी से मेरे मन में ये हो गया कि मुझे लेखक बनना है।
1: जी जी जी।
0: आगे तो चल के ठीक है, नौकरी मिल गई, नौकरी तो करनी ही थी क्योंकि लेखन से किसी का घर नहीं चलता ना, तो नौकरी तो करनी है हमने, क्योंकि बहुत आसानी से मिलती थी।
1: जी जी। तो ममता जी, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपसे चाहेंगे कि आपकी पसंद का कोई एक हिंदी फिल्म के गीत हम सुने, तो आपकी वो पसंद का गीत कौन सा होगा?
0: पसंद का गीत? अरे
1: जी जी,
0: मुझे वो गीत बहुत पसंद है, तुम पुकार लो खामोशी का।
1: जी, खामोशी का
0: इंतजार है।
1: अच्छा जी जी जी।
0: तुम्हारा इंतजार है, खामोशी का है, वही जरा मान के ऊपर नहीं, आवाज तो पुरुष की है।
1: अच्छा अच्छा जी जी।
0: वही जरा मान खाली दिखती है।
1: जी जी।
0: खुशी में
1: जी जी।
0: हाल अपना मिल गया उनके हाल से।
1: जी जी। तो आइए सुनते हैं ममता जी की पसंद का ये गीत।

0: ममता जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ममता जी, कार्यक्रम में अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2017 में दुखम सुखम, इसके लिए आपको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था, तो इसके बारे में बताएं कि ये जो कृति थी इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत थी और इसमें किन चीजों की बात की गई।
1: दुखम सुखम तो मैंने 2009 में लिखा था
0: जी,
1: तभी वो छप गया था
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: और इसमें देखा जाए जिस तरह से अपने पिता के संघर्षों के बारे में लिखा था मैंने
0: जी,
1: और परिवार की ही बातें थी ज्यादा उसमें, लेकिन ये जरूर है कि उसमें एक परंपरा है। वो तो परंपरा ये है कि भाई कैसे अपनी सीमाओं को तोड़कर आदमी आगे बढ़ता है, ये हर चलती है
0: जी।
1: कि जो पैतृक पेशे है बच्चे उनसे मौलिक करना चाहते हैं। दुखम सुखम में यही है, मेरी दादी तो सिर्फ गाया करती थी गाना, एक गाना क्या था छोटी सी दो लाइनें थी
0: जी,
1: कट्टी जिंदगानी कभी दुखम कभी सुखम, ये कहा करती थी
0: जी जी।
1: तो उसी पर मैंने बेस करके ये बनाया, और कभी जब बाद में पता चला कि जैन धर्म में
0: जी
1: दुखमा और सुखमा नाम की दो स्थितियां
0: जी
1: बताई गई है
0: जी। ममता जी, तो ममता जी हम ये तो हुई व्यास सम्मान की बात, इसके बाद आपको और भी कई सम्मानों से नवाजा गया है, तो हम जानना चाहेंगे
1: 2018 में प्रदान हुआ, 2017 का था
0: जी जी जी। तो इस व्यास सम्मान के अलावा आपको अभी हाल ही में जो साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया उसके बारे में बताएं कि जब वो प्रदान किया गया तो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा ऐसा सुनकर आपको कैसा लगा, और जो उसकी जिस कृति पर आपको जीते जी के लिए प्रदान किया गया।
1: देखिए ऐसा की जब कोई लंबी साधना के बाद लिखते हुए आज 70-72 साल हो गए है ना, तो लंबी साधना के बाद अगर छोटी सी कोई उपलब्धि होती है, कोई इनाम मिलता है तो अच्छा लगता है
0: जी जी,
1: क्योंकि लोग कभी किताब पढ़ते हैं जब वो चर्चा में आ जाते हैं।

0: हिंदी में किताबें खरीदने की बहुत परंपरा नहीं है
1: जी जी
0: मैं देखती हूँ कि मराठी और बंगाली में कहीं ज्यादा लेखक की किताबों को लोग प्यार करते हैं और खरीदते हैं। हिंदी में थोड़ी थोड़ी ये कमजोर होती जा रही कड़ी, तो जब किताब को इनाम मिला तो दुखम सुखम की भी प्रतियां ज्यादा दिखने लगी और लोगों को ये अच्छा लगा पहली बार पढ़ के कि अरे ये तो ऐसा हमारी कहानी है। जो हर व्यक्ति जो उठता है कहीं से तो उसके घर का वातावरण बिल्कुल अलग किस्म का होता है और वो बिल्कुल एक नई राह पे चलना चाहता है। तो दुखम सुखम सारी समस्या यही है कि व्यापारी वर्ग का पिता माता है और वो लड़का जो है वो जानना चाहता है कि किसी अच्छे काम में ऐसे में जाए जिसमें दिमाग का इस्तेमाल हो।
1: जी जी
0: तो ये दुखम सुखम की थी रही और ये बहुत पसंद की गई है। जबकि मैं डर रही थी कि इतनी पुरानी कहानी को कौन पढ़ेगा।
1: जी जी जी
0: क्योंकि मैंने देखा कि ऐसी नजर में कितने कितने असंख्य घर है जहाँ पर बच्चों को उनकी मर्जी का पेशा नहीं लेने दिया जाता है।
1: जी जी
0: तो ये बच्चे तो ये दोनों भाई तो अपने घर से बगावत करके चले गए आगरा पढ़ने के लिए। तो उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया और अब जाकर उनका संघर्ष खत्म होता है क्योंकि वो अकाल मृत्यु होगी सबकी एक एक करके।
1: जी जी जी श्रोताओ कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम लेते हैं और सुनते हैं ममता जी की पसंद का एक और गीत।

0: ममता जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ममता जी, हम जैसा जानते हैं कि भारतीय भाषा परिषद के साथ में भी आपने काम किया है, तो उसके बारे में बताएं कि वहाँ जो हिंदी साहित्य को प्रचार करने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं।
1: भारतीय भाषा परिषद से 3 साल की है,
0: जी
1: 2003 में गई थी और 2006 में आ गई मैं वहाँ पे।
0: जी
1: और भारतीय भाषा परिषद एक अच्छे उद्देश्यों को लेकर बनी हुई संस्था है।
0: तो ममता जी, जैसे कहा जाता है कि साहित्य जो है समाज का आईना होता है, दर्पण होता है, वो समाज के उन पहलुओं को छूता है जहाँ पे आमतौर पर लोग नहीं जाना चाहते या जिसको लोग बहुत कम जिस तक पहुँच पाते हैं। तो आप इसे वर्तमान समय में देखती हैं कि आधुनिक युग में साहित्य को आप कहाँ देखती हैं?
1: क्योंकि वर्तमान स्थिति अभी भी बड़ी पेचीदा है
0: जी
1: देखा जाए तो,
0: जी
1: क्योंकि एक तरफ तो हम लोगों ने इतनी प्रगति कर ली है लेकिन स्त्री आज भी जलाई जाती है, ससुराल में मारी जाती है, जहर दे दिया जाता है। नहीं मानती कि स्त्रियों के लिए संसार आज भी बहुत कठिन है।
0: जी जी जी
1: ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। और साथ ही साथ ये कि समाज में समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही है और वो भी क्या है कि बाहरी समस्याएं बहुत बढ़ रही है। हम लोग इतना पढ़ लिख गए हैं, इतने बड़े तरक्की कर गए हैं, आधुनिक जीवन भी जीना जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ एकदम बर्बर किस्म की एक्टिविटीज होती रहती है। ये बहुत खराब बात है। उनसे हमारी आज तक समझ छुट्टी नहीं हुई।
0: जी जी
1: वो अपने आप चलती रहती है। एक तरफ समाज आगे बढ़ रहा है, एक तरफ समस्याएं भी आगे बढ़ रही है।
0: जी जी जी
1: ऐसा मुझे लगता है।
0: जी जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ एक छोटा सा विराम और लेंगे, यहाँ हम ममता जी की पसंद का एक और गीत सुनेंगे।

0: तो ममता जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने नाटकों में भी कभी ना कभी आपकी रुचि रही है जी, तो वो कौन से नाटक, जैसे हम जानते हैं कि यहाँ रहना मना है, आप ना बदलेंगे, ऐसे नाटकों प्लेस में आपकी रुचि रही है, तो इसके बारे में बताएं कि ये आपका नाटकों की तरफ रुचि कैसे आई?
1: नाटक का विकास थोड़ा सा अवरुद्ध है इसमें, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि नाटक की विधा इसमें थोड़ी अवरुद्ध है, क्योंकि जो बड़े बड़े अच्छे निर्देशक थे वो दिवंगत हो गए,
0: जी
1: और नए निर्देशक उस पाए से नहीं आए हैं अभी तक। तो प्रयोग तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन उन प्रयोगों को व्यापक स्वीकृति नहीं मिल रही है। मैंने इलाहाबाद में भी देखा रंगकर्म, और मैंने दिल्ली में भी देखा जा जाकर।
0: जी
1: मुझे ये लगता है कि इतनी प्रगति, क्योंकि हमारा तो कल्पना प्रधान देश है भाई, तो उन सब से बचाव के लिए या उन सब का सामना करने के लिए हमें जो रुतवे चाहिए, हमें वो रुतवे कम पड़ रही है। शत ऋतु की बात करते हैं हम, शत ऋतु में तो असल की मुश्किल से तीन वो आते हैं सपोर्ट, तीन खंभे आते हैं केवल। तो बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना है कि इस समय नाटक में क्या स्थिति है जिसे लेकर।
0: जी। और ममता जी, हम जानते हैं कि कविता लेखन में भी आपकी रुचि रही है, जैसे खाटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं, ट्रिब्यूट टू पापा एंड अदर पोएम्स, इस तरह की कविताएं आपने लिखी हैं, तो कविताओं में आपकी रुचि कैसे आई?
1: मुझे लगता है निर्मल जी की कविताओं के क्षेत्र में नए नए लड़के लड़कियां बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आदिवासी कविताएं मैं पढ़ रही थी, बिल्कुल एक नई संवेदना लेकर वो आ रहे हैं, और एक नई भाषा भी लेकर आ रहे हैं।
0: जी
1: इसी तरह कुछ नए कवि हैं जो नीलेश गोवंशी हैं, श्रुति कुशवाहा है, राजदा खान है, अनामिका अमीन है, ये सब बहुत अच्छी तरह से और बड़े अलग तरीके लिख रहे हैं। निर्मला पुतुल है, जसिंता केरकट्टा है, ये सब बहुत अच्छा लिख रही है, और इन्होंने कथ्य तो बदला है, और कहानी केवल अपने भावलोक की कहानी नहीं होती है, कविता केवल अपने भावलोक की, वो पूरे एक प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। विकास का एक कार्यक्रम में अगर उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है तो वो उसको तो व्यक्त करती है। अभी पिछले दिनों हंस का अंत आया है आदिवासी लेखन पर, तो मुझे लगा कि उसमें कई बातें बहुत अच्छी भी है, क्योंकि हम हर समय ये नहीं कह सकते हैं कि प्रकृति की ये गीत तो गाते रहे, साथ ही साथ पेड़ भी कटवाते रहे, साथ ही साथ हम सोचते कि वन्य पशुओं को मारते भी रहे, एक साथ ही ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है कि ये स्थिति बदलनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अभयारण्य बनाने चाहिए जहाँ हम अपने पशु पक्षियों को सुरक्षित रख सकें।
0: जी। ममता जी, जैसे कि हम जान पा रहे हैं कि 2017 में आपको प्रतिष्ठित व्यास सम्मान उपन्यास दुखम सुखम के लिए दिया गया, अभिनव भारती सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, यशपाल स्मृति सम्मान, महादेवी स्मृति सम्मान, कमलेश्वर स्मृति सम्मान, सावित्रीबाई फुले स्मृति सम्मान, अमृत सम्मान, लम्हे सम्मान, जनवाणी सम्मान, सीता पुरस्कार, और अभी हाल ही 2025 में आपको जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो कार्यक्रम में हम चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि साहित्य से जुड़ा रहना आपके लिए कितना लाभप्रद रहा?
1: मैं सोचती हूँ कि साहित्य की प्रगति में धचके आते रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
0: जी।
1: जो पुस्तक है या कृति जो है उसी के ऊपर उसको अवॉर्ड करें।
0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे ममता कालिया जी से, जिन्हें अभी 2025 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ममता जी, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को

0: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे व्यास सम्मान 2017 और साहित्य अकादमी सम्मान 2025 से सम्मानित साहित्यकार श्रीमती ममता कालिया से बातचीत। प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
1: आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित इनसे मिलिए कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। 9 बजे है। आइए अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं बता दें आपको कि आज के फनकार ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले हैं और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज सुबह 9:30 पर और पुनः रात को 9:30 पर। और आज है नारियली पूर्णिमा। महाराष्ट्र में विशेष रूप से समुद्र तट से जुड़े समुदायों का महत्वपूर्ण पर्व है नारियली पूर्णिमा। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन समुद्र और भगवान वरुण की पूजा कर नारियल अर्पित किया जाता है तथा सुरक्षित समुद्री यात्रा और अच्छी आजीविका की प्रार्थना की जाती है। लक्की फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और अदनान सामी के स्वरों में। समीर के बोल, अदनान सामी का संगीत।

0: लिए एक खुशखबरी, कहिए ना, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
4: कबीर सिंह इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने। इशाद कामिल के बोल सचेत परंपरा की बनाई धुन।

0: श्रोताओं, बलभद्र पूजा मुख्य रूप से भगवान बलभद्र यानी बलराम की आराधना का पर्व है। बलराम जी को भगवान कृष्ण के बड़े भाई और शक्ति, पराक्रम, कृषि तथा धरती से जुड़े जीवन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त बलभद्र जी की पूजा करके परिवार की सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना करते हैं। बलराम जी का हल उनका प्रमुख प्रतीक है, इसलिए यह पर्व कृषि, श्रम और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त एक अंतराल का।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अब आपको सुनवा रहे हैं ड्रीम गर्ल, इस फिल्म का गीत मीट ब्रदर्स और अल्तमश फरीदी की आवाजों में। शब्बीर अहमद के बोल हैं और धुन बनाई है मीट ब्रदर्स ने।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं पीकू फिल्म से गीत। इस गीत के संगीतकार, गीतकार और गायक कलाकार अनुपम रॉय हैं।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं, जुग जुग जियो, इस फिल्म से। तनिष्क बागची और जहरा एस खान की आवाजें हैं, गीतकार और संगीतकार तनिष्क बागची।

जुग जुग जियो इस फिल्म का गीत आप अभी सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को और एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बधाइयां और आप सुनते रहिए विविध भारती के कार्यक्रम। नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को।

0: इस नए दर्शकों के लिए ऋषिकेश मुखर्जी का मतलब है साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में, जिनमें हास्य भी होता है, मनोरंजन भी और कोई सार्थक संदेश भी।
1: मैंने

सब आम लोगों के लिए फिल्में सपनों का एक संसार होती हैं, और इस स्वप्न संसार को अलग अलग रंगों से रंगना, कुछ नया करके दर्शकों के सामने पेश करना, यही सपना देखा था तब के कलकत्ता और आज के कोलकाता में जन्मे ऋषिकेश मुखोपाध्याय ने। साइंस ग्रेजुएट ऋषिदा ने अपने शुरुआती दिनों में गणित और विज्ञान विषय में अध्यापन भी किया, जिन्हें ऋषिदा के नाम से पुकारा जाता रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स के साथ, जबकि वो पहले कैमरामैन और बाद में फिल्म एडिटर बने। ये बात है लेट 40s की। उसके बाद वो मुंबई आ गए और यहां आकर निर्देशक बिमल रॉय के साथ बतौर सहायक निर्देशक और एडिटर जुड़ गए। हम बात कर रहे हैं अब 1951 की। उस दौरान उन्होंने बिमल रॉय की माइलस्टोन फिल्म्स दो बीघा जमीन और देवदास के लिए भी काम किया।

1957 में ऋषिदा को स्वतंत्र निर्देशन का मौका मिला। फिल्म थी मुसाफिर। ये फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन ऋषिदा की किस्मत में तो सफलता लिखी ही थी। तो वो समय भी आ गया जबकि 1959 में उनके निर्देशन में राज कपूर और नूतन अभिनीत फिल्म अनाड़ी ने अपार सफलता अर्जित की।

साथियों, ऋषिदा ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 42 फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषिदा को फिल्म फेयर ने 7 बार अपने अवार्ड से सम्मानित किया। 1956 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड नौकरी, 1959 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मधुमती।

1970 बेस्ट स्क्रीन प्ले अनोखी रात, 1972 बेस्ट एडिटिंग आनंद, 1972 बेस्ट स्टोरी आनंद, 1981 बेस्ट मूवी अवार्ड खूबसूरत, 1972 बेस्ट फिल्म आनंद।

0: कभी तो हंसाए।
1: ऋषिदा ने अपनी फिल्मों में हमेशा कहानी को और पात्रों को महत्व दिया। यही नहीं, उन्होंने हमेशा ही नए नए कलाकारों को अपनी फिल्मों में मौका दिया। जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, इन जैसे कलाकारों ने उनके साथ काम करके अपनी उत्कृष्ट कला पेश की।

0: रिशिदा की फिल्मों में से कौन सी फिल्म छोड़ दी जाए, किसका जिक्र किया जाए, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। हिंदी सिने संसार में रिशिदा का जो योगदान रहा है, उसके लिए सन 2001 में भारत सरकार ने रिशिदा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1960 में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला फिल्म अनाड़ी को। 1961 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म अनुराधा। 1961 में ही गोल्डन बियर अवार्ड के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई फिल्म अनुराधा। और 1999 में रिशिदा सम्मानित हुए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से।
1: मैंने फिर

0: ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब रायपुर से सुनेंगे।
1: मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए 31 अगस्त को नवा रायपुर में रोड शो आयोजित किया जाएगा। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए 31 अगस्त को नवा रायपुर में रोड शो आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने नीलामी की 8वीं किश्त में 20 खनिज ब्लॉक्स शामिल किए हैं। इनमें ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्व, वेनेडियम, टाइटेनियम और टंगस्टन जैसे खनिज शामिल हैं। रोड शो में निवेश और नीलामी प्रक्रिया पर चर्चा होगी। 1 सितंबर को नीलाम किए गए खनिज ब्लॉक्स के संचालन की समीक्षा और माइन विजिट भी प्रस्तावित है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के बीच लापता रायपुर की मोनिका यादव के सकुशल होने की सूचना है। प्रशासन के अनुसार महादेवघाट निवासी 22 अगस्त को मोनिका नेपाल में थी और बाढ़ के बाद से उनका परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। राज्य सरकार ने सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1070 और कंट्रोल रूम नंबर 0771223471 जारी किया है। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और उसे मिठाई खिलाती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेकर उपहार देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। रक्षाबंधन के मौके पर रायपुर के केंद्रीय जेल में आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक केवल बहनों को ही बंदियों से मिलने और उन्हें राखी बांधने के लिए जेल के भीतर प्रवेश की अनुमति दी गई है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर कल रायपुर स्थित कोपलवाड़ी के श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चों और मिनी मार्वल्स स्कूल के बच्चों ने लोकभवन में राज्यपाल रमन डेका को अपने हाथों से बनाई गई राखियां बांधी। वहीं भिलाई के रिसाली स्थित सामरिक मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक और महिला संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। जशपुर जिले के ग्राम केसरई में आयोजित रक्षाबंधन और बहनों से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को क्षेत्र की महिलाओं ने राखी बांधी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के स्नेह का पर्व नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और सुरक्षा के संकल्प का पर्व है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घासीमुंडा में नया शाला भवन और सामुदायिक भवन बनाने, केरसई के में मिनी स्टेडियम और ग्राम ऊपर कछार में महतारी सदन बनाने की घोषणा की। वहीं केरसई में 84 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जशपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने बगिया में जशपुर एक्सप्रेस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले की 50 महिलाओं को ई रिक्शा प्रदान किया। इस अवसर पर स्व सहायता समूहों की दीदियों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें साड़ी और मिठाई का उपहार दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में फिर से वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा तट पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। महासमुंद पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी ट्रक से 170 किलो से अधिक का गांजा जब्त किया है। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 85 लाख रुपए बताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए 31 अगस्त को नवा रायपुर में रोड शो आयोजित किया जाएगा। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक

रक्षाबंधन का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। 10 बजे हैं, प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। आइए सबसे पहले सुनते हैं पारंपरिक भोजली गीत। स्वर है सुशीला ध्रुव, गायत्री निषाद और

0: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
1: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
0: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
1: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
2: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गूंज स्वर गांव के। आइए अब सुनते हैं श्रवण कुमार का चरित्र बाल मुकुंद पटेल और साथियों के स्वर में।

0: हाँ।
1: माता पिता के परम भक्त श्रवण कुमार की कथा।
0: हाँ, सुना भैया।
1: माता पिता की बड़ा सेवा करने वाला श्रवण कुमार
0: हाँ।
1: जन्म से माता पिता हिला
0: हाँ।
1: अपन देवता समझे। माता पिता के सेवा करत रहे
0: हाँ।
1: एक दिन माता पिता कथे श्रवण
0: हाँ।
1: सुन बेटा,
0: सुनागा।
1: गुरु के घर में जाके विद्या पढ़ ले बेटा। श्रवण कथे माँ
0: हाँ।
1: मोर विद्या तो तही अरज
0: हाँ।
1: नहीं बेटा
0: हाँ।
1: गुरु करा ज्ञान लेना जरूरी है,
0: जरूरी है।
1: श्रवण कुमार गुरु के घर में जाके
0: हाँ भैया
1: विद्या अध्ययन करे लगी। रागी भैया
0: हाँ
1: कुछ दिन बाद में माता पिता के थे श्रवण
0: हाँ।
1: हमन अंधी अंधा

0: बेटा घर में बहू आ जही हमर सेवा करही बेटा हे सरवन माता पिता के बात ल मत काट बेटा
1: हरी हरी
0: शादी कर ले माता पिता के बात ल मान के सरवन कुमार हा एक बड़ा सुंदरी लड़की भैया
1: हाँ भैया
0: खोज करके
1: हाँ
0: आज माता पिता के कहे माँ
1: हाँ
0: सरवन कुमार विवाह करी इतना सुंदरी नारी
1: हाँ भैया
0: आज शादी होए माँ अंधी अंधा कहे
1: हाँ
0: धन्य भाग ला बेटा
1: हाँ
0: घर में बहू आ गए।

0: सर्वन के नारी हा
1: हाँ।
0: एक दिन सेवा करी, दो दिन सेवा करी,
1: जी
0: तीसरा दिन में
1: का करत है भैया?
0: कहे हे भगवान, ये
1: हाँ।
0: अंधी अंधा के मारे मोर जीवन में सुखी नहीं है दाई।
1: या कैसा जी,
0: रात दिन इकरे सेवा मोर समय बिता थे
1: हाँ।
0: न तो मोला पति के सुख
1: हाँ।
0: न कोई जगह घूमे के सुख
1: हाँ, नहीं मिला थे।
0: न खाए के सुख
1: कुछ नहीं गा।
0: ये मन मर जाती तो मैं सुखी हो जाते
1: हो।
0: सर्वल्ला पता नहीं है
1: या।
0: एक कुम्हार के घर में चल दीजगा।
1: अच्छा
0: कुम्हारी लगते दाई
1: हाँ भाई।
0: मोर बा
1: हाँ।
0: दू खोल के हंडी बना दे
1: या।
0: कुम्हार करा बनवा लीजगा
1: हाँ।
0: पैसा दे दी चोला
1: हाँ।
0: सर्वन कुमार ला ये सब चीज पता नहीं है।
1: नहीं है जी।
0: एक ठन मा
1: हाँ।
0: खीर पकावा है
1: या।
0: एक खोल मा
1: हाँ।
0: एक खोल मा खट्टा महिरू बनावा है।
1: बनावा थे
0: पति पत्नी अपन मन
1: हाँ।
0: भैया खीर ला खावा है
1: हाँ जी।
0: अंधी अंधाला
1: हाँ।
0: वो महिरू पेज ल देवे का करे अंधी अंधा
1: हाँ,
0: आसुला बहा बहा की बिचारी मन खावा है
1: हाँ। भैया
0: बेटा करा शिकायत नहीं करेगा
1: हाँ।
0: एक दिन सर्वन कुमार कथे मैया
1: हाँ भैया

0: नहीं बेटा
1: हाँ।
0: नहीं पिता मैं तोर जूठा प्रसाद पहु
1: हाजी हाजी आशा है मोर
0: उही मके
1: हाँ।
0: खीर पे जे के
1: हाँ।
0: खा के देखी तो खट्टा मेहरू रहे अपन लखावे सरवन तो खीर
1: हाँ।
0: नारी ल कहे
1: हाँ।
0: अरे कुलक्षिणी नारी
1: हाँ।
0: ते माता पिता करा कपट करे हत
1: हाँ। कोटी चाल चले हत जी
0: ये कले तुला मर जाना चाहिए
1: हाँ।
0: आज ले

0: सर्वंतु खीर
1: हाँ।
0: नारी ल कहे
1: हाँ।
0: अरे कुलक्षिणी नारी
1: हाँ।
0: तय माता पिता करा कपट करे हत
1: हाँ। कुटी चाल चले है जी
0: ये कले तुला मर जाना चाहिए
1: हाँ।
0: आज ले मैं तुला त्याग करत हूँ
1: हाँ भैया।
0: माता पिता कहे सर्वान ऐसा
1: हाँ।
0: मत कर बेटा
1: हाँ।
0: नहीं माँ
1: हाँ।
0: जे नारी हा
1: हाँ।
0: माता पिता के सेवा नहीं करी सास ससुर के सेवा नहीं करी वो नारी नो है माँ
1: हाँ।
0: अपन नारी ला त्याग दी सर्वन कुमार माता पिता ला भैया
1: हाँ।
0: कांवर बना लीजगा
1: अच्छा।
0: एक बार माता ला
1: हाँ।
0: एक बार पिता ला बैठा के कही पिताजी
1: हाँ।
0: मैं आप ला
1: हाँ।
0: चारों तीर्थ ला घुमाऊ ये मोर पाप ला काटो पिता
1: हाँ।
0: ऐसे कह के सर्वन कुमार
1: का करत हेगा
0: चारों धाम घुमाए पर

0: गंगा धाम
1: हाँ,
0: बद्री धाम
1: हाँ,
0: घुमावत रहेगा
1: हाजी हाजी।
0: ऐसे करते करते
1: हाँ,
0: जगन्नाथपुरी धाम
1: या
0: पिताजी
1: हाँ,
0: ये जगन्नाथपुरी धाम में अंधी अंधा बेटा
1: हाँ,
0: काला देखू
1: नहीं
0: मुला गंगा स्नान करवा दे बेटा, सकल तीरथ के दर्शन कराते कराते
1: हाजी हाजी।
0: सरजू किनारे में आईजगा
1: आहे,
0: माता पिता कथे सर्वान
1: हाँ,
0: मुला प्यास लगत है बेटा
1: या।

0: ठीक है पिताजी के हित।
1: हाँ।
0: एक पेड़ के नीचे माँ कांवर ला उतार दीजिएगा।
1: हाँ भैया,
0: तुमड़ी ला लेकर के।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: सरजू नदी में सर्वनहा पानी ला भरत रहे भैया, बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ टुमड़ी बाजत रहे।
1: हाँ।
0: अयोध्या के राजा दशरथ
1: हाँ।
0: शिकार खेले बाहर रहे।
1: हाँ भैया,
0: तुमड़ी का आवाज ला सुनिच
1: या ताजी,
0: कहे कोई मृगा जल पिया थे।
1: हाँ।
0: राजा दशरथ
1: हाँ
0: मृगा समझ करके
1: का करे थे।

0: शब्द भेदीवान
1: हौ
0: सर्वन के छाती में झाले लगी राम राम कहे
1: हाँ
0: धरती में गिर गए।
1: अच्छा
0: राजा दशरथ कहे अरे
1: हाँ
0: काय राम राम का आवाज होते
1: होते
0: मैं तो मृगाल मारे रहे
1: मारे हरी
0: दौड़ते दौड़ते आई
1: हाँ भैया
0: सर्वन कुमार धरती में पड़े छटपटावत रहे
1: हाँ
0: हाय मैं का कर रहे हो
1: हरी हरी
0: एक मुरी भेषधारी के हत्या कर रहे हो
1: हाँ
0: राजा दौड़ करके
1: हाँ
0: छाती में लगा के पूछे
1: हाँ
0: तै कौन महाराज
1: हाँ कहाँ ले आए हैं जी
0: मैं तुला मार डरे हुए तपस्वी
1: हाँ
0: मिर्गा समझ के बांध चला दे
1: चला दे
0: सर्वन कुमार कहित
1: हाँ
0: हे राजन तै कौन
1: हाँ
0: मैं राजा दशरथ हूँ
1: हाँ
0: मोर से गलती हो गए
1: क्षमा कर
0: हे महाराज
1: हाँ
0: मोर माता पिता

0: अंधी अंधा है
1: हाँ।
0: बोला चारों धाम घुमाए लाए रहे हो
1: लाए रहे
0: प्यास मरीज महाराज
1: अच्छा।
0: तो पानी भरे आए रहे हो
1: हाँ भैया
0: तय मोला बान में मार दे महाराज मोर दाई दामन प्यासा है
1: हाँ।
0: हे महाराज

0: चंडाल दशरथ
1: हाँ
0: मोर अंधा के लाठी के सहारारी से
1: हाँ तेला जी
0: तेला ते
1: मार दरे
0: हाय बेटा सरवन
1: हाँ
0: तोर बिना कैसे जिया बेटा
1: हाँ
0: तोर बिना ये अंधी अंधा ये प्राण ल कैसे रखो बेटा मैं कैसे रखो
1: हाँ जी हम
2: बाल मुकुंद पटेल और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे श्रवण कुमार चरित्र। इसी गीत के साथ आज का गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। FM 103.2 MHz पर या आकाशवाणी का

बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं का और रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे पास कुछ चिट्ठियां भी ऐसी आई हैं जिनमें बहुत सुंदर सुंदर राखियां बनी हुई हैं और उन्होंने शुभकामनाओं के साथ साथ फरमाइशी गीत भी लिखकर भेजे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला हमारे श्रोताओं के भेजे हुए फरमाइशी पत्रों का, उनके गीतों का, और आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हो सकता है अगली चिट्ठी आपके नाम की हो या फिर अगला गीत आपको बेहद पसंद हो। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं काजल फिल्म का गीत, आशा भोसले की आवाज़ में साहिर का लिखा हुआ ये गाना है और रवि का संगीत निर्देशन है। इसे सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता साथी महावीर पाठ भाटापारा से श्रीमती अमृता यादव, श्रीमती पार्वती यादव, श्रीमती ईश्वरी, लक्ष्मी कुमारी, प्रेरणा, डिम्पी और आपके साथ हथबंध नेवधा से श्रीमती दुलारी यादव, श्रीमती प्रियंका, कुमारी प्रीति, कुमारी सुनती, श्रीमती सुनती और उमेश्वरी यादव। तेलीपारा बिलासपुर से बहुत सुंदर सी चिट्ठी बनाकर भेजी है रज्जन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनिता श्रीवास। इनकी राखियां बड़ी सुंदर सुंदर सी हैं और इन्होंने फरमाइश भी इसी गीत की है। ग्राम बसीबार से शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, राम प्रसाद, कुमारी आंचल, कुमारी चंचल, कुमारी चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, डॉक्टर मनोज कंवर और शांति नगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, श्रीमती संतोषी कोरम, कुमारी आरती, पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और उनका पूरा कोरम परिवार भी इस गीत को सुनना चाहता है। ये चिट्ठी आई है नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, लूतरा खमरिया से और इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या, डिकेश कुमार, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये कार्यक्रम का पहला गीत जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है काजल।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म आप तो ऐसे ना थे से। मनहर उदास की आवाज में यह गीत है। सुनना चाहते हैं मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झीरिया, कल्पना झीरिया, बिट्टू कुमार, चिंटू, युग कुमार भाटापारा से ही, राम कुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश, कार्तिक और युवराज। बीटनगर महाराष्ट्र से चिट्ठी भेजी है प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल ने। असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबैर भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, भाई कमल कांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिज कांत सारथी बेमित्रा से हमें इस गीत की फरमाइश लिखकर भेज रहे हैं। और भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भिकु, विनय ठाकुर, चौवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू, मारवाड़ी कुआं से सियाराम, अश्वनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा और रायपुर से नीलू मेघ भी इस गीत को पसंद करते हैं।

0: रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
1: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
1: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
6: राखी बनाए रिश्ता और शानदार। इस संदेश के बाद एक राखी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आपकी पसंद का ही गीत है, आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाज़ों में, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन। फिल्म का नाम है अंधा कानून। और सुनना चाहते हैं कतियापारा जुना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, शनि और रियांश कान्हा, आदित्य देवांगन के साथ, बमर चाटी डी से गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की, बेबी मनी, मीनाक्षी, निधि देवांगन और उनका पूरा

परिवार, श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल से चिट्ठी आई है। बेलर गांव की मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित और उनका परिवार सुनना चाहता है ये गीत। उड़नताल दगौरी से शांता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता जागृति, सरला, समीर भी इस गीत को पसंद करते हैं। राम ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता प्रजापति सुनना चाहते हैं यही गीत। बाग बहरा भदरसी से पन्ना लाल सेन, तारा सेन, कौशल, खुशबू। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़ से विनोद खड़ से, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय, बेबी अनिष्का, राधिका और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन भी इस गीत को पसंद करते हैं।

0: अंधा कानून फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और अब कार्यक्रम आपकी पसंद का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे। पहले सुन लेते हैं आज की ट्रैफिक अपडेट्स जो हमें प्राप्त हुए हैं यातायात पुलिस बिलासपुर से।
1: नमस्कार मित्रों, अब आप सुनेंगे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर अर्थात अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था उमाशंकर पांडे से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज भाई बहनों का अमर प्रेम पर्व रक्षाबंधन है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे शहर ही नहीं पूरे जिले में बड़ी संख्या में रंग बिरंगी राखी की दुकानें सजी हैं, जहां राखी के पुराने गाने भी बज रहे हैं। इन दुकानों में बहनों की बड़ी संख्या राखी खरीदते दिखाई दे रही है। यही स्थिति मिठाई दुकानों की भी है, जिससे पूरे शहर की सड़कों में यातायात की अधिकता है। सभी वाहन चालकों से अनुरोध है, ऐसी स्थिति में अपने वाहनों की गति कम से कम रखें, धीरे चलें, सुरक्षित चलें। साथियों, आज रक्षाबंधन के पर्व पर सभी भाई अपनी बहनों के पास राखी बंधाने जाएंगे तथा राखी बंधाकर शाम से देर रात तक वापस भी आएंगे। ऐसे सभी भाइयों से अनुरोध है, रक्षाबंधन के उत्साह में अपनी सुरक्षा ना भूलें। ध्यान रहे, दो पहिया वाहन में तीन सवारी ना जाएं और दो पहिया वाहन में सहयात्री सहित जीवन रक्षक उपकरण हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने। जल्दी के चक्कर में वाहन तेज गति में न चलाएं। यदि वाहन चलाते बहन का फोन आ जाए तो भी मोबाइल न उठाइए, अर्थात वाहन चलाते मोबाइल से बातें बिल्कुल न करें। सड़क में जिस दिशा में मुड़ना हो हाथ या इंडिकेटर लाइट से संकेत जरूर करें। वर्षा से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, अतः पूरी सावधानी के साथ धीरे चलें। सड़कों में मवेशी भी है, इसका भी ध्यान रखें। यातायात संकेतों का पूरी तरह पालन करें, गलत दिशा में वाहन कभी न चलाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आप सभी भली भांति जानते हैं कि नशा सर्वनाश का कारण है, इसे कभी भी हाथ न लगाएं, अर्थात नशे की हालत में भूल कर भी वाहन न चलाएं। मित्रों, अपनी बहनों के पास राखी बंधाने आपको हर वर्ष आना है, इसलिए सड़क सुरक्षा के इन नियमों का पालन करें तथा इस वर्ष अपनी बहनों को उपहार में उपरोक्त बातों को अक्षरशः पालन करने का वचन देते जाइए। तब आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई माने जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी बहनों को इस वर्ष सबसे कीमती उपहार जो दिया है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये थे आज के ट्रैफिक अपडेट्स और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। सुनना चाहते हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, घनक्ष आरू साहू और मेहमतपुर भक्तिन बाजार से रमेश केवर्त, राजकुमारी केवर्त और आरती केवर्त, देवरी भाटापारा से गनुला रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मयाराम रजक, फुनेश्वर फानेश्वर और मुकेश के साथ कुमारी हाविया टानिया, जांजगीर महिंदा से राम नारायण कश्यप, कविता देवी कश्यप, कुसुमलता, खुशबू कुमारी और आपका पूरा परिवार। इसी गीत को सुनना चाहता है नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। चलिए आप सबकी पसंद पर सुन लेते हैं हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत, जिसे साहिर ने लिखा है और लता मंगेशकर बहुत सारी आवाजों में समूह स्वरों में ये गीत है। आनंद भिक्षु का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत निर्देशन है।

0: हरे रामा हरे कृष्णा इस गीत के साथ ही आज का आपकी पसंद कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। जो हमारे नए श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, वो अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड पर अपने नाम और पते के साथ अपने गांव का नाम लिखिए, अपनी पसंद का गीत लिखिए, उस गीत के फिल्म का नाम लिख दीजिए और हम कोशिश करेंगे आपकी पसंद पूरी करने के लिए। हमारा पता बता देते हैं आपको, कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी बिलासपुर, छत्तीसगढ़, नूतन कॉलोनी सरकंडा, पिन कोड है 495006।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 11 बजे है, प्रस्तुत है

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
0: और अजीत का भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मुश्किल से ज्यादा मेहनत पर ध्यान देने लगते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतने खूबसूरत विचार को भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लिखते हैं,
2: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं। विमलेश मैडम जी और अजीत साहिब जी जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16वां लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मित व्ययता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे। दिल से धन्यवाद साहेब।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हों? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
2: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
0: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन जी का।
2: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: जी,
0: तो विमलेश जी शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
2: जी,
0: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
2: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
0: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
2: आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की जहाँ गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है।
0: जी हाँ श्रोताओ, कल्पना कीजिए, आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज सिर के ठीक ऊपर है, हवा चल रही है लेकिन वह ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है।
2: जी,
0: धरती इतनी तप रही है कि दोपहर में बाहर निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है।
2: हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके की, जहां फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
0: जी हाँ श्रोताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता होगा। श्रोताओ, यहाँ की सुबह हमारी सुबह से बहुत अलग होती है।
2: जी हाँ श्रोताओ, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
0: इसे श्रोताओ, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
2: जी,
0: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
2: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
0: जी हाँ, तो विमलेश जी जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
2: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है, इसलिए गांव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं,
0: जैसे मोटे दीवारों वाले घर,
2: जी,
0: छायादार आंगन, हवादार कमरे,
2: जी,
0: और खिड़कियों पर पर्दे।
2: हुँ.
0: वे कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए,
2: जी,
0: क्योंकि रेगिस्तान

0: स्थान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
1: श्रोताओ, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ बारिश कम हो और गर्मी बहुत अधिक हो, वहाँ पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
0: जी हाँ श्रोताओ, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
1: जी,
0: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
1: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना, बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें?
0: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है।
1: जी,
0: वैसे विमलेश जी क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
1: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियां राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
1: लेकिन अजीत जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
0: यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता,
1: जी,
0: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
1: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए।
0: जी
1: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है।
0: जी हाँ श्रोताओ, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए।
1: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और शायद यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है।
0: क्या सीख विमलेश जी?
1: यही कि जीवन हमेशा हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलता।
0: जी
1: जीवन में भी तो मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी आएगी तो कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी रास्ते कठिन होंगे। लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढालता है।
0: तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
0: तीन बुद्धिमान।
2: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम, प्रताप और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
3: मेरे पुत्रों।
4: जी पिताजी।
3: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
4: पिताजी,
3: क्या पता कब लोग सुधार जाऊं।
4: पिताजी, ऐसा ना कहिए, अभी आपका जीवन बहुत लंबा है।
3: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ना धन है और ना सोना चांदी। तुम लोगों को कुछ और ही करना होगा।
5: लेकिन पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? ना खेत हैं और ना कोई दूसरा काम।
4: जी
3: पुत्र, तुम लोगों को दूसरे तरीके से धन अर्जित करना होगा।
4: लेकिन कैसा तरीका पिताजी?
3: बेटा धीरेंद्र, देखो, धन दौलत जैसी चीजें स्थाई नहीं हैं। आज हैं तो कल नहीं।
4: जी।
3: लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे बढ़कर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता, और वो है बुद्धिमत्ता।
4: जी पिताजी।
3: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो।
4: जी पिताजी, हम प्रयास करेंगे।
2: समय बीता और कुछ

0: समय बाद पिता चल बसे। सभी बेटे एक दिन मिलकर बैठे और विचार किया।
1: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
2: हाँ, तुम ठीक कहते हो भैया, तो क्यों ना हम एक काम करें।
3: भला वो क्या?
1: चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
2: हाँ, ये ठीक रहेगा भैया।
0: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,
1: भाई प्रताप, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
2: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है, क्यों भाई धीरेंद्र?
3: जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं।
1: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
0: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
1: महाशय, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
2: हाँ, आपका ऊंट खो गया है ना?
3: हाँ, मेरा ऊंट खो गया है। हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता है ना?
4: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
1: महाशय, हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
4: है?
1: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
4: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
2: नहीं नहीं,
4: अरे,
2: नहीं।
4: उसे कहाँ छिपा के रखा है?
2: अरे महाशय, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
4: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
1: नहीं।
4: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
1: वो
4: देखो, मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
1: लेकिन
4: अरे, अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
1: क्या?
4: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।
1: क्या कह?
0: भाइयों ने बहुत समझाया लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
4: मुझे कुछ नहीं सुनना।
2: लेकिन महाशय, हमारी बात सुन ले महाशय।
4: ये निकाली मैंने अपनी तलवार, अब चलो मेरे आगे। चलो चलो चलो।
0: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने के लिए भेज दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
4: अब तुम सब राजा के पास चलो।
1: महाशय,
4: चलो, नहीं तो काट के रख दूंगा। चलो।
5: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
1: राजन, हम चोर नहीं हैं, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
6: तुम्हें कैसे पता कि ऊंट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
5: महाराज, यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं, तो ऊंट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
6: तुम लोगों को कुछ कहना है?
7: राजन, हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
6: अच्छा, तो ये बात है।
7: जी,
6: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। द्वारपाल।
8: जी महाराज।
0: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
6: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा?

0: रहा है।
1: महाराज, इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
2: और महाराज, वो अनार कच्चा है।
3: जब पेटी खोली गई तो उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
4: खाइए खाइए, लीजिए।
0: जी महाराज, धन्यवाद।
3: फिर पूछा,
5: तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि पेटी में अनार है?
4: महाराज, जब वे पेटी रख रहे थे तो अंदर से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई। हम समझ गए कि ये कोई गोल वस्तु है।
2: और महाराज, हमने ध्यान दिया कि द्वारपाल किधर जा रहे हैं। वे आपके राज उद्यान की ओर जा रहे थे, जहां अनार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।
1: और महाराज, अभी अनार पकने का समय ही नहीं आया तो हमने जान लिया कि अनार कच्चा है।
5: वाह, बहुत खूब।
3: राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा,
5: तो अब ये बताओ कि तुमने ऊंट के बारे में बिना देखे कैसे जान लिया?
2: महाराज, वहां पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊंट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊंट बड़ा है।
5: क्या बात
4: है? महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
5: अच्छा,
4: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
5: जी बहुत खूब। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है?
1: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाई ओर की घास जो कि त्यों थी।
5: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
2: धन्यवाद महाराज।
4: जी महाराज, शुक्रिया महाराज।
5: मैं सचमुच चकित हूँ।
4: जी महाराज।
3: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।
7: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
8: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
7: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्यनिष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गई।
8: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
7: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हाँ, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं।

0: अल्लाह के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
1: सरला सरला बेटी।

0: सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा। एक बात कहूं
0: जी।
1: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की उड़ान की पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
0: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
1: तो फिर देर किस बात की। लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
0: अच्छा,
1: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
0: पर
1: मुझे लगता है तुम्हें वहां से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
0: लेकिन बाबूजी मैं धन्यवाद बाबूजी।
1: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस।
2: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
3: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
4: धन्यवाद सर।
3: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
5: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
3: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
6: सर, मैं बताऊँ सर।
3: हाँ हाँ, कहो कहो।
6: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
3: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
6: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
3: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
7: हाँ, जी सही बात।
3: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियाँ एक पायलट में होनी चाहिए।
0: सर, मैं बताऊँ?
3: हाँ हाँ सरला, तुम बताओ।
0: सर, मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
3: बहुत अच्छे सरला।
0: धन्यवाद सर।
3: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियाँ यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
0: थैंक यू सर।
2: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
8: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
2: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
9: 1000 घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता।
0: I'm so excited.
9: पहली महिला पायलट बनना हम देखेंगे अपनी आँखों से।

0: लैंडिंग कमाल,
1: थैंक यू,
2: बहुत अच्छा लगा,
1: थैंक यू, धन्यवाद,
2: आप कितने अच्छे तरीके से चले गए, अमेजिंग।
3: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
4: दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थी।
3: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
4: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी।
3: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं। अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया।
4: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया।
3: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
5: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए। जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को यह डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
3: अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को छूने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
6: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 103.2 MHz पर या आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 11:30 हुए हैं। आइए अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।
10: बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया, एक निर्देशक और एक प्राध्यापक। तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
11: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
10: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है।

0: कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दलेर मेहंदी की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं एल्बम तुनक तुनक तुमसे ये गीत, जिसे तैयार की, इसकी धुन तैयार की है रवि पवार और दलेर मेहंदी ने, और शब्द रचना भी दलेर मेहंदी की है।

चंदन दास के स्वर में अभी आपने एक गजल सुनी और अब आपको सुनवा रहे हैं मेड इन इंडिया इस एल्बम से आलिशा चिनॉय की आवाज में एक बहुत खूबसूरत सा गीत। गीत के बोल आलिशा चिनॉय और श्याम अनुरागी के हैं। संगीत की धुन तैयार की है बिद्दू ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं गजल जिसे हमने लिया है जिगर से जिगर तक इस एल्बम से। स्वर हैं महेश चंदर और कविता कृष्णमूर्ति के, शब्द रचना जिगर मुरादाबादी की और संगीत से धुन तैयार की है महेश चंदर ने।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM 103.2 MHz पर या आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से, इसके बाद 12 बजे से शाम 5 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे। आइए पहले जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे, अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है और श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। 12 वर्षों में इस योजना ने विशेष रूप से वंचित समुदायों के लिए औपचारिक बैंकिंग, ऋण, बीमा, पेंशन और डिजिटल भुगतान तक पहुंच का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 19 अगस्त 2026 तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 32 करोड़ 92 लाख महिला

भर्ती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अलग अलग निगम बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक कुल 18 पदाधिकारियों को मंत्री का दर्जा दिया गया है। इनमें 3 को कैबिनेट मंत्री और 15 को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी को पहले 29 अक्टूबर 2025 के आदेश में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। अब इस आदेश में बदलाव करते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के अवसर पर सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन की पवित्र परंपरा प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का अभिन्न अंग रही है। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि खुशियों का त्यौहार प्यार, स्नेह और एकजुटता के बंधन को मजबूत करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रक्षाबंधन पर देशवासियों को सोशल मीडिया पर बधाई दी। श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि रक्षाबंधन का त्यौहार सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। वहीं रक्षाबंधन के मौके पर रायपुर के केंद्रीय जेल में आज सुबह 8 बजे से बहनों को बंदियों से मिलने और उन्हें राखी बांधने की अनुमति दी गई। राखी बांधने के लिए 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बीएससी कृषि प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स परीक्षा को निरस्त कर दिया है। यह परीक्षा 19 अगस्त 2026 को आयोजित हुई थी। अब यह परीक्षा सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में दोबारा आयोजित की जाएगी। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली यह यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होता है। इस वर्ष पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यह यात्रा की। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड के ओखर गौधाम में पिछले 3 दिनों में 6 पशुओं की मृत्यु हुई है। पशु चिकित्सा विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार इनमें 4 पशुओं की मौत वृद्धावस्था और 2 की अन्य कारणों से हुई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने गौधाम का निरीक्षण कर मृत पशुओं का पोस्टमार्टम किया। जांच में हाल की अत्यधिक बारिश के कारण गौधाम परिसर में जलभराव की स्थिति सामने आई। गौधाम में करीब 300 पशु मौजूद हैं। पशुओं की सुरक्षा के लिए सभी पशुओं को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र में आज हुए सड़क हादसे में रेत से भरे ट्रैक्टर ने एक बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और ट्रैक्टर में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे, अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है और श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने

0: राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 141 अंक बढ़कर 77,075 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है यादों की महफिल।

अभी आप सुन रहे थे शिरडी के साईं बाबा फिल्म का गीत, जिसमें स्वर थे मोहम्मद रफी, जानी बाबू, अनूप जरोटा, अनुराधा पौडवाल और साथियों के। शब्द रचना मनोज कुमार की और स्वर रचना पांडुरंग दीक्षित की।

रिश्ता कागज का। इस फिल्म का गीत अभी आप लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत राजेश रोशन का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत सबसे बड़ा रुपया फिल्म से। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में पिरोया था बासु मनोहारी ने। अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में रंगीला रतन फिल्म का गीत, जिसे लिखा गुलशन बावरा ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
1: अरे भाई मोहन, ये कौन है भाई?
2: नहीं, मैं नहीं जानता ये कौन है।
1: कौन है
3: ये? कौन है?
1: कौन ये?
4: मैं हूँ रंगीला रतन।

0: आनस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है स्वामी फिल्म से। इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने और अमित खन्ना के बोलों को सुरों में पिरोया है राजेश रोशन ने।

अगला फिल्म अगला गीत हमने लिया है बड़े दिल वाला फिल्म से। आर डी बर्मन के संगीत में इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, और किशोर कुमार ने गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है विजेता पंडित और किशोर कुमार के स्वर में जॉनी और जीनी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है चितचोर फिल्म से, यशुदास के स्वर में। ये है गीत और संगीत रचना रविंद्र जैन की।

अब आपको हम सुनवा रहे हैं जिंदा दिल फिल्म का गीत, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र की आवाजों में, वर्मा मलिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जंजीर फिल्म के इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, गुलशन बावरा के बोल और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

चरस फिल्म का एक गीत था जिसे गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में लेकर हम आ रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सफर में आपके साथ है पूजा नारानिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, इस सफर की सबसे खास बात यही है कि गीतों का चयन तो हम ही करते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने का खूबसूरत सा काम आप सभी करते हैं। फेसबुक पर हम कुछ छोटे छोटे शब्दों और संकेतों यानी इबारत के जरिए कार्यक्रम के गीतों की झलक साझा करते हैं और फिर आपकी टिप्पणियां इस सफर को और भी दिलचस्प बना देती है। कोई बिल्कुल सही गीत पहचान लेता है तो कोई अपने अंदाज से यादों का नया पन्ना खोल देता है। तो आइए आज भी देखते हैं कि हमारे श्रोताओं ने इन संकेतों यानी इबारत से किन किन गीतों का अंदाजा लगाया है। पढ़ेंगे साथ ही आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, करेंगे उनसे जुड़ी बातें और सुनाएंगे मधुर सुरीले गीत जो हर सफर को सचमुच सुरीला बना देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको सुना देते हैं आज की इबारत जो आपने फेसबुक पेज पर पढ़ ली है, लेकिन कुछ श्रोताओं के लिए इसे पढ़ना हमारा फर्ज बनता है। रूह और सरगोशी, एक अनकहा संवाद, आज ये हमारी इबारत में शामिल है। रूह कहती है कि क्यों आज फिर इतना दीवाना सौदाई सा मन है, कितनी वर्षों की तन्हाई लेकर बैठा है यह दिल, काश कोई राह ही मिल जाए, कोई आहट आ जाए तो शायद मन थोड़ा बहल जाए। सरगोशी कहती है, देखो सामने कालीघटा के साए उतर आए हैं, शायद इन्हीं पर लिखना है कोई अफसाना अधूरा सा, जिसमें छुपा हो मेरी आहों का धुआं और उन आहों में किसी के लौट आने की उम्मीद। तो रूह कहती है कि कभी सोचा था मोहब्बत में इतना कुछ मिलेगा, पर जो मिला उसके बदले में प्यार के प्यार दिया है। अब बताओ किसी टूटे हुए मन का सहारा कैसे बनूं, जब खुद ही किसी सहारे की तलाश में हूं। सरगोशी कहती है, आंखें बंद करो, शायद दूर कहीं सूरत मीरा मोहन की सी कोई छवि ठहरी हो, उस एक पल की रोशनी से तकदीर रोशन हो जाए तो फिर किस बात की शिकायत। रूह कहती है, लेकिन ये मन भी अजीब है ना, कभी पुरवैया बाण चलाए, कभी मन को अपनी दिल पसंद पनाहों में छुपा ले और कभी पलकों की पखियां बनकर किसी अनकहे सपने को सहलाने लगे। सरगोशी कहने लगी, शायद इंतजार की यही तो सजा है, जब आंखें तरस गई हैं तो हर आहट किसी अपने की लगती है, हर स्पर्श में एक सवाल उठता है और उंगलियां किसके प्यार की है छूती और दिल चुपचाप उस जवाब को सुनने लगता है।

जी हाँ श्रोताओं, अंधा कानून फिल्म का ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया। रक्षाबंधन पर्व है, इसलिए इस गीत से इस सफर की शुरुआत होना तो बनता ही है। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत था। सभी श्रोता हमसे जुड़ गए हैं और उनके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। गीत के बाद पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। श्रोतागण हमें कह रहे हैं कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमने भी हमारी तरफ से विविध भारती के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को विविध भारती पर कह दिया है कि रक्षाबंधन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका दिल बहुत मंगलमय हो। साथ ही सुरीला सफर में हमारे श्रोता कह रहे हैं कि कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। ये इबारत से जुड़ी बात इन्होंने इस कमेंट में लिखी है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है और इंतजार की हर आहट दिल में एक नई उम्मीद जगा जाती है। तन्हाई में बैठी रूह किसी अपने की तलाश करती है तो सरगोशी उसे मोहब्बत और लौट आने की आस दिलाती है। काली घटाओं से लेकर पुरवैया तक हर मौसम जैसे उसी अनकहे प्यार का पैगाम लेकर आता है। आंखें किसी की सूरत देखने को तरसती है और दिल किसी एक कदम की आहट सुनने को बेकरार है। यही तो मोहब्बत है, जहां दूरी में भी अपनापन और खामोशी में भी एक मीठा सा संवाद सुनाई देता है। फिलीपींस से हमारे श्रोता जुड़े हैं और

ही सूरत गुजरात से भी श्रोता जुड़े हैं। श्रोताओं का कहना है कि यह संवाद रूह की गहरी तन्हाई और सरगोशी की सांत्वनामयी धीरज के बीच बुना गया एक अत्यंत संवेदनशील और मर्म स्पर्शी आत्म संवाद है। इसमें विरह की टीस, अधूरे अफसाने का दर्द और प्रिय के लौट आने की व्याकुल प्रतीक्षा को बहुत ही खूबसूरत और रूहानी अंदाज में पिरोया गया है। जहां रूह अपने टूटे हुए मन और अंतहीन बेचैनी से जूझ रही है, वहीं सरगोशी मीरा मोहन जैसी निश्चल भक्ति और प्रेम का संबल देकर उस अंतहीन इंतजार को भी एक पवित्र सार्थकता दे देती है। यह इबारत खूबसूरती से बयां करती है कि सच्चा प्रेम दूरी और खामोशी में भी जीवंत रहता है। जहां दो बेकरार दिल भले ही जुदा हो, पर एक अनकहे अदृश्य रास्ते पर एक दूसरे की आहटों में धड़कते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे श्रोता कह रही हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि इस दुनिया में हर इंसान का मन अलग अलग, सोच अलग अलग है। प्रेम से भरा एक स्पर्श न जाने कितनी कल्पना, कितनी भावनाओं को जगा देते हैं। मन की सरगोशियां कमाल है, यह रूह को छूकर रूह तक पहुंचती है। बिल्कुल सही। फिर ये मन बेचैन क्यों रहता है? जीवन की सुंदरता छोटे पलों में है। वे पल जब हम ट्यून करते हैं सुरीला सफर और चले जाते हैं एक अनजान सफर पर, जहां है मन को लुभाने वाले गीत आज। जी, ये हमारी श्रोता कह रही। हमारे अगली श्रोता कह रही हैं कि रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और तन्हाई में दिल हमेशा ही सोचता रहता है कि कुछ ऐसा हो कि उदास मन को सुकून मिल जाए। हराहट खामोशी के टूटने का इंतजार करती है और यही इंतजार कभी अकेला नहीं छोड़ता। लगता है कि कुछ तो साथ साथ चल रहा है जो मन अपनापन और मिठास भर देता है। और उन्होंने कुछ गीत भी लिख भेजे हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। इस गीत को किसने लिखा है ये बताइए।

0: पाकीज़ा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत को लिखा किसने है। जी हाँ, इसका जवाब आप दे रहे हैं कमाल अमरोही। और जी हाँ, बिल्कुल सही है ये जवाब। और संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद। विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। अब लेते हैं एक संदेश।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारी एक श्रोता कहती है कि रूह यानी आत्मा एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति जिससे जीवन चलता है, जिसका चुपके चुपके धीरे से कुछ कहना आज की इबारत में लिखा गया है। बिल्कुल, जब जुबान खामोश होती है तब रूह दिल के कोने में बैठकर सरगोशियां करती हैं, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। आज के संभाषण में अकेलापन, प्रेम, प्रतीक्षा और व्याकुलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही पहचाना है।

हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि इस आलेख की सबसे बड़ी रचनात्मक विशेषता है हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीतों के बोलों को बिना किसी झटके के गद्य में पिरोना। कालीघटा के साए, प्यार के बदले प्यार दिया, सूरत मीरा मोहन की पुरवैया बांझ

हिलाए और उंगलियां किसके प्यार की जैसे काव्यात्मक वाक्यांश सिर्फ गानों के संकेत नहीं लगते बल्कि ये संवाद की स्वाभाविक भाषा बन जाते हैं। बिल्कुल, हमने गीतों से इन वाक्यांशों को उठाकर हमारी इबारत में शामिल कर लिया है ताकि आप पहचान सके कि कौन सा गीत है। हमारी अगली श्रोता कह रही हैं कि रूह और सरगोशी की आपसी संवाद है, मन में उठते विचार प्यार

हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि कार्यक्रम सुरीला सफर है सुपर हिट। साथ ही दूसरे हमारे अगले जो श्रोता हैं वो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ एक साधारण धागा नहीं बल्कि यह भाई बहन के बीच अटूट विश्वास, अगाध स्नेह और जीवन भर एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प और साथ निभाने का पवित्र बंधन है। राखी का भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और एक दूसरे पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की भी कामना करती हैं और भाई उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है। बिल्कुल सही।

हमारी इबारत के बारे में ये बात कर रहे हैं और कहते हैं कि उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। तन्हाई की तड़प भी इम्तिहान लेती है, हुस्नो इश्क की रूहानियत और खूबसूरती की बेजोड़ कानाफुसी, फुसफुसाहट में सिमटी इबारत। संगीत में सफर का इंतजार इन्हें रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा, जो कि अभी चल रहा है। बिल्कुल, इस इबारत में हम इसी तरह से हमने वाक्यांशों को पिरोया है, जो लगता है कि जैसे कोई प्रेम में त्रस्त व्यक्ति है जो बात कर रहा है, सरगोशी कर रहा है हवा के साथ, रूह के साथ। आपने बखूबी पहचाना है। हमारी एक श्रोता कहती है कि आज की इबारत तन्हाई, मोहब्बत, इंतजार और किसी अपने की आहट की उम्मीद के इर्द गिर्द घूमने का भाव है। रूह और सरगोशी के संवाद के माध्यम से उस मन की बेचैनी दिखाई गई है जो प्रेम की तलाश में है और हर आहट को किसी अपने के लौट आने का संकेत समझता है। एक और श्रोता कहते हैं कि सरगोशी ने जब भी हवाओं के रुख पर अपना नाम लिखना चाहा, रूह की खामोशी ने उसे एक अनकही गूंज की तरह थाम लिया। यह कैसा विरह है जहां दूरियां सिर्फ कदमों की हैं पर धड़कनें एक दूसरे में ही सांस लेती हैं। सदियों लंबा यह इंतजार अब कोई दर्द नहीं बल्कि एक मुकद्दर बन चुका है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलते हुए मंजिल की चाहत भी फीकी पड़ जाती है जब रात के सन्नाटे में यादों की कोई मध्यम लहर छूकर गुजरती है। तो ऐसा लगता है जैसे जिस्म की कोई हैसियत ही ना हो, बस दो अनंत वजूद हैं जो एक दूसरे में विलीन होने के लिए तड़प रहे हैं। यह मिलन की आस नहीं बल्कि उस अधूरी दास्तान की रूहानी मुकम्मलियत है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती, इसीलिए तो सरगोशी की जा रही है। हमारे अगली श्रोता कहते हैं कि इस जिंदगी के दूसरे मायने ही हैं इंतजार। यहाँ सबको मन मुताबिक कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है उसी से समझौता करना होता है और फिर रह जाता है एक लंबा इंतजार। तुम खास ही नहीं, हर सांस में हो, रूबरू नहीं हर एहसास में हो, मिलोगे पता नहीं मगर हर तलाश में हो, तलाश पूरी हो ना हो मगर हर आस में हो। क्या बात है, आपने तो शायरी भी कर दी है। और फिर बहुत सारी जिंदगियां इंतजार में यूं ही बीत जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रेम में इंतजार तो होता ही है। अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज की रूह और सरगोशी की इस अनकहे संवाद ने मन के तारों को छू लिया है। इस भावुक और गहरी इबारत को पढ़कर जो मुख्य शब्द और उन आधारित जादुई गाने जहन में आए, उन्होंने वो गाने भी हमें बहुत सारे लिखकर भेजे हैं। क्या बात है, बहुत सारा काम आपने किया। अगले श्रोता कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के प्रति कोमल नहीं होता, वह हमारे स्पर्श को ही करुणा में बदल देता है। प्रेम में जीने वाला स्पर्श कर सकता है, जकड़ता नहीं। वो आपको छू लेगा पर चोट नहीं पहुंचाएगा, आपको अपने पास रखेगा पर स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। प्रेम की असली कसौटी यह नहीं कि हम अपने प्रियतम के प्रति कितने कोमल हैं, बल्कि यह कि हमारी कोमलता उससे आगे समूचे अस्तित्व तक पहुंचती है या नहीं। साथ ही हमारे श्रोता राखी के पर्व के लिए भी हमें बधाइयां दे रहे हैं और विशेष संदेश भेज रहे हैं। राखी पर्व एक त्योहार भाई बहन का बहुत ही पवित्र रिश्ता है, ये हमारे एक श्रोता कह रहे हैं, जो कि रेशम के धागे से बड़े ही प्यार से भाई की कलाई पर बांधती हैं और मिठाई खिलाकर ईश्वर से भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं, इसलिए भाई बहन की हमेशा रक्षा करता है। जी,

जी हाँ श्रोताओं, ये तेरे घर के सामने फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी की आवाज थी। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि इश्क की मर्ज से त्रस्त और तरस बयां करती दो दिलों की इस पंडित तड़प को रूहानी सरगोशी में दर्शाया गया है।

जी हाँ, इस गीत के माध्यम से भी हम सुन पा रहे हैं कि कितना दर्द है, इंतजार है और तन्हाई है। जोशीला फिल्म का गीत था, आवाज थी किशोर कुमार की, साहिल लुधियानवी के बोल और आरजी बर्मन का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि पर्दे पर किसने गाया है इस गीत को, तो इसका जवाब भी बिल्कुल सही दे रहे हैं आप, देवानंद ने। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि इस तन्हा रात के सन्नाटे में जब चांदनी चुपके से आकर जमी को गले लगाती है, तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सरगोशी हवा के झोंके बनकर मेरे कानों में कुछ कह रही हो। विरह की इस खामोशी में यादों का एक हंसी कारवा चलता है, जहां आंखों में इंतजार के अश्क तो हैं, पर दिल में एक रूहानी सुकून भी है। ऐसे ही हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि सरगोशी, क्योंकि शायद दूर कोई और भी तुम्हारी तरह आप ही बेकरार है और दोनों के बीच बस एक खामोश रास्ता है, जिस पर किसी एक कदम की आहट का इंतजार है। ये जो पंक्तियों के बारे में इन्होंने बात की है, ये भाव इन सुंदर लाइनों से मिलता जुलता इन्होंने कुछ गीत हमें लिखकर भेजा है कि खामोशी फिल्म का गीत है शायद, कि तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है। आप अंदाजा तो लगा रहे हैं कम

बेगम, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज इतने लंबे संवाद आलेख को कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है, शायद इस भाव को समझ सके। तन्हाई की दीवार पर उम्मीद की तस्वीर बनाते हैं, एक तेरी आहट के लिए हम खुद को सजाते हैं। इस खामोशी में छुपा है सदियों का इंतजार, हम आज भी हर सांस में सिर्फ प्यार जगाते हैं। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि प्रेम में जब किसी एक के साथ गहराई से जुड़ता है, तब उसके लिए संसार केवल एक बाहरी भीड़ नहीं रह जाता, वह कोमल अनुभूति के साथ आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है। यहाँ उसकी चेतना और संवेदनाएं विस्तार से नहीं, गहराई से जीने लगती है। प्रेम दो में पूर्ण हो जाता है, या दो केवल शरीर का मिलन नहीं बल्कि दो अस्तित्वों के बीच सेतु है, जहाँ व्यक्ति पहली बार स्वयं को किसी और में प्रतिध्वनित होता हुआ अनुभव करता है। यह अनुभव होने लगता है कि जो रिक्तता संसार भर से नहीं भरी, वह किसी एक उपस्थिति से भर जाएगी शायद।

हमारे पूछे सारे सवालों के जवाब भी आपने बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए हैं, सभी जवाब हमें मिल गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन संदेशों के लिए। एक श्रोता कह रही है कि रूह के किसी खामोश कोने में आज भी तुम्हारी सरगोशी की वह धीमी सी आहट गूंजती है जो हवाओं में घुल मिलकर मेरे पूरे वजूद को भिगो जाती है। यह विरह और इंतजार का सफर अब थकाता नहीं है बल्कि हर सांस के साथ तुम्हारा एहसास और गहरा कर देता है। दूरियों के इस धुंधलके में भी सुकून का एक दिया जलता रहता है क्योंकि फासले सिर्फ जिस्मों के बीच होते हैं, रूहों के दरमियान नहीं।

एक श्रोता हैं जो अपनी बहन को याद कर रहे हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व उनकी बहन का स्वर्गवास हो गया था, तो आज का त्योहार वो कुछ उदासी में ही मना रहे हैं, ऐसा वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और रक्षाबंधन का त्यौहार है। एक श्रोता कह रही है कि मैं दूर देश में बैठी हूँ, मेरे 3 भाई लोग लखनऊ में हैं, 2 बहनें हैं, वे सब आज मिलेंगे और राखी भी बांधी जाएगी त्यौहार पर, सब भाई बहन होंगे, मैं आज तन्हाई में इतनी दूर बैठी हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। फ़ोन पर तो विश कर दिया है पर वो बात नहीं, बिल्कुल दूरी है तो त्यौहार की वो बात कैसे महसूस हो सकती है। हम समझ सकते हैं कि आपको कैसा महसूस होता होगा। फिलहाल लेकर चल रहे हैं आपको अगले गीत की ओर। ऐसा लगता है कि तन्हाई भरा सफर हो रहा है, कहीं दूर ही निकल जाएं तो कैसा रहेगा।

दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, मजू सुल्तानपुरी के बोल और राजेश रोशन का संगीत। इस गीत के साथ हमने कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा था, लेकिन क्या कोई जरूरी है कि हर गीत के साथ कोई प्रश्न पूछा जाए? क्यों ना उस गीत का ही आनंद उठाया जाए, क्योंकि प्रोग्राम का नाम भी तो है सुरीला सफर। संदेश हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अगले श्रोता का, जो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त भी आपके सुरीले सफर के साथ चल रहा है। आपके हाथों की राखी पोती से बंधवा लिए, क्या बात है, और आपको बहुत बहुत बधाई। कई श्रोताओं ने कई गाने भी लिखकर भेजे हैं, तेरे घर के सामने, तू कहाँ, ये बता इस नशीली रात में, और कई सारे जवाब हमें लिखकर भेजे हैं, क्या बात है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की शुरुआत में आपने रक्षाबंधन का भाई बहन का गीत सुनवाया, हमें बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई। आज छुट्टी का दिन और घर पर बच्चों ने भी सुना, आपका धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोहब्बत का सबसे गहरा रंग शायद इंतजार ही है, वह इंतजार जो आंखों को नम करता है मगर उम्मीद को जिंदा रखता है, और तब एहसास होता है कि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं जाता, वह खामोशियों में सुनाई देता है और यादों में महकता है, दिल को यह यकीन दिलाता रहता है कि कहीं ना कहीं कोई और भी उसी मोहब्बत, उसी बेचैनी और उसी इंतजार को अपने सीने में संजोए बैठा है।

इतने गीत तो संप्रति याद आ रहे हैं, और भी हो सकते हैं, यानी उन्होंने बहुत सारे गीतों की लिस्ट हमें बनाकर भेजी और इसीलिए वो हमें याद दिला रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इनमें से कौन कौन से गीत इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, आप सुनते जाइए। तो अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम पत्थर के सनम फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और संगीतबद्ध किया है इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और साथ ही संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बताइए कि इस गीत में कौन है अभिनेत्री।

ये गीत भी था इंतजार के लिए। और एक श्रोता हमारी कह रही है कि आज तो थीम रक्षाबंधन पर होनी चाहिए थी, क्योंकि आज बेहद खुशी का माहौल है। पर कोई बात नहीं, सुरीला सफर में सुरीले गाने बजेंगी तो वह भी माहौल खुशनुमा हो जाएगा। भाई बहनों की थीम रहती तो भाई बहन वाली बात, आज रक्षाबंधन की मिठाइयाँ मिलने वाले नेक उपहार की बात होती। आप बात तो बहुत अच्छी कह रही हैं, लेकिन ये प्रोग्राम थीम बेस्ड नहीं है, तो गाने तो सुरीले हमने आपके लिए शामिल किए ही हैं, उन्हीं का आनंद लीजिए। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गीत लिखकर भेजे हैं, हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा लिखे गए उन गीतों में से कुछ गीत तो यहाँ हमारी इबारत के जरिए और हमारे गीतों में जरूर शामिल हुए होंगे। जी हाँ, आप हमारे प्रश्न का जवाब भी दे रहे हैं कि

क्या था इसका उत्तर कि हमने पूछा था आपसे प्रश्न कि कौन है अभिनेत्री, जो भी गीत आपने सुना। जी हाँ, उसका जवाब आप दे रहे हैं, वहीदा रहमान, बिल्कुल सही जवाब है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि फूलों की तरह महकता रहे तेरा जीवन, खुशियों से भरा रहे हर एक पल तेरा दिन। ठीक है, वो हमें दुआ दे रहे हैं और क्या बात है, बहुत अच्छी आपने लिखा है, धन्यवाद। रक्षाबंधन, अगले हमारे जो श्रोता कह रहे हैं कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं है बल्कि प्रेम, सम्मान, सुरक्षा, जिम्मेदारी का संकल्प है, इसकी हार्दिक बधाइयां भी वो दे रहे हैं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और एक श्रोता कह रहे हैं कि जब मोहब्बत रूह में उतर जाती है तो वक्त, दूरियां और दूरियों की तन्हाई सब बेमानी हो जाते हैं। रूह की सरगोशी हमें सिखाती है कि सच्चा इश्क जिस्म की चाहत नहीं बल्कि दो आत्माओं का वह पाकीजा मिलाप है जहां शब्द खत्म होते हैं और सिर्फ बेपनाह एहसास बाकी रह जाता है। क्या बात है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की इबारत अध्यात्म, प्रेम, मौसम, विरह, इंतजार को लिए हुए है। इसी तरह हमारी अगली श्रोता कह रही हैं कि सरगोशियां रूह और खामोशियां मन की गहरी अवस्था, आत्मा रूह आपका वह हिस्सा है जो दिखावे से दूर बिल्कुल सच्चा और पवित्र होता है। खामोशियां बंद जुबान की आवाज होती है, जब मन और रूह की आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। अंतरात्मा, कई बार जब आप कोई फैसला लेते हैं तो अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है कि क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल। अगला गीत, इबारत में जो वाक्यांश हमने लिया है, मीरा मोहन सी सूरत, वो इसी गीत से है।

समय बस समाप्त ही हो रहा है और इसी को देखते हुए हम ये गीत आपको पूरा नहीं सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम था हीरा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, इंदिवर की बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो आज का सुरीला सफर आपने तय किया है पूजा नारायणिया के साथ, आपके खूबसूरत संदेशों के लिए और हर प्रश्न के उत्तर के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी यादों को आपने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर संपन्न होता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। वंदे मातरम इस रचना की 150वें वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 43वीं कड़ी।

0: अक्टूबर 1937 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों संगठनों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई और उनमें वंदे मातरम पर हुई चर्चा तूफानी रही। लखनऊ में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बैरिस्टर जिन्ना ने कहा था कि वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत, हिंदी ये राष्ट्रभाषा, वर्धा प्रणित विद्या मंदिर शिक्षा योजना, तिरंगा झंडा, ये सभी कांग्रेस के हिंदू राज्य की विशेषताएं हैं जो इस्लाम विरोधी हैं। जिन्ना के इस विवादास्पद बयान के कारण अक्टूबर के अंत में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा हुई और कांग्रेस की महासमिति ने कविश्रेष्ठ रविंद्रनाथ ठाकुर से ही सलाह लेने का निश्चय किया।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर बंकिम चंद्र के साहित्य के प्रशंसक थे। वंदे मातरम के प्रति भी उन

0: का अत्यधिक प्रेम था। बंग भंग विरोधी आंदोलन के बाद कांग्रेस की राजनीति से अर्थात स्वतंत्रता संग्राम से भी रविंद्रनाथ कुछ दूर चले गए थे, फिर भी उनके जैसे विचारक देशभक्त व्यक्ति की राय निश्चित रूप से संतुलन बनाए रखने वाली होगी, ऐसा कांग्रेस के सभी गुटों के नेताओं को विश्वास था। जब रविंद्रनाथ ने वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को मान्यता देने का विचार रखा, तब रविंद्रनाथ के प्रशंसकों सहित अनेक लोगों को ये आघातजनक लगा था। परंतु इसके लिए रविंद्रनाथ के उस पत्र के सभी विचारों को जानना आवश्यक है। दिनांक 2 नवंबर 1937 को रविंद्रनाथ ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा,
1: वंदे मातरम ये गीत हमारे देश के लिए राष्ट्रीय गीत हो सकेगा या नहीं, इस पर अब तक बहुत विवाद हुआ है। यह अत्यंत खेद की बात है। इस विषय में विचार करते हुए मुझे एक बात याद आती है कि इस गीत के कवि के जीवन काल में इसे सबसे पहले संगीतबद्ध करने का सौभाग्य मुझे मिला था और कलकत्ता में कांग्रेस के एक अधिवेशन में यह गीत मैंने स्वयं गाया था। इस गीत के पूर्वार्ध में अत्यंत कोमल भावना और श्रद्धा का संगम है, साथ ही हमारी मातृभूमि के सौंदर्य का प्रभाव है। इस कारण इसने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया था। इसीलिए ये काव्य जिस पुस्तक आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था उससे इस गीत को अलग करने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मेरे पिताजी के एकेश्वरवादी आदर्शों में समरस होकर भी मुझे इस संपूर्ण गीत के प्रति अत्यंत आदर है। शासकों ने जब हमारी इच्छा के विरुद्ध बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया, तब उस संग्राम की संकटपूर्ण परिस्थिति में इस गीत का रूपांतरण राष्ट्रीय गीत में हो गया। उसके बाद की जिन घटनाओं में वंदे मातरम विजय घोष के रूप में स्वयं स्फूर्त रूप से प्रकट हुआ, उसके पीछे हमारे अनेक युवकों का त्याग है। आज इन सभी घटनाओं का उल्लेख करने का समय आ गया है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है।
0: आनंद मठ के अतिरिक्त वंदे मातरम का स्वतंत्र अस्तित्व है, अपना एक स्थान है। इसकी स्पष्ट कल्पना रविंद्रनाथ ने इस पत्र के माध्यम से दी थी। उनके अनुसार वंदे मातरम के पहले अंतरे का आनंद मठ की कथा वस्तु से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इस विवादास्पद पृष्ठभूमि में वंदे मातरम इस संपूर्ण गीत पर आपत्ति न लेते हुए उसकी पहली दो कड़ियों को बिना शर्त मान्य करना चाहिए, ऐसा रविंद्रनाथ ने सुझाव दिया था। इस पत्र के प्रभाव से तुरंत हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को तुरंत मान्यता दे दी गई। इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसका मसौदा स्वयं पंडित नेहरू ने तैयार किया था। पंडित नेहरू लिखते हैं,
2: सभी बातों पर विचार करके कार्यकारिणी ने ये तय किया है कि जब कुछ राष्ट्रीय स्तर की सभाएं और कांग्रेस के अधिवेशन होंगे तब वंदे मातरम इस गीत की पहली दो कड़ियां ही गाई जाएंगी या अन्य कोई आपत्ति रहित गीत यदि सभा के आयोजकों को स्वीकार हो तो वो भी गाया जाए।
0: इस प्रकार आगे से कांग्रेस के अधिवेशनों, सभाओं या बैठकों के समय वंदे मातरम की केवल दो ही कड़ियां गाने की अनुमति दी गई। वंदे मातरम के अतिरिक्त अन्य देशभक्तिपूर्ण गीतों का चयन कैसे किया जाए इसके लिए एक और उपसमिति नियुक्त की गई। उसमें आचार्य नरेंद्र देव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस का समावेश था। आवश्यक लगे तो इस समिति ने रविंद्रनाथ की सलाह लेनी चाहिए, ऐसा भी तय हुआ।
2: फिर भी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों में इन सिफारिशों के कारण फूट पड़ गई। प्रफुल्ल चंद्र घोष और राजकुमार चक्रवर्ती ने इसके विरोध में एक प्रस्ताव रखा, वो 20 के मुकाबले 60 मतों से खारिज कर दिया गया। उस पर चर्चा तो हो ही नहीं सकी।
3: कांग्रेस कार्यकारिणी के इस प्रस्ताव पर चारों ओर से आलोचना होने के कारण पंडित नेहरू और अन्य सदस्यों को इस आलोचना

0: का उत्तर देते हुए कठिनाई हो रही थी। कांग्रेस यानी मुस्लिम लीग की अनुनय विनय करने वाली संस्था है, ऐसी धारणा लोगों के मन में पक्की होने का डर तो था ही, परंतु इससे मुस्लिम लीग का भी समाधान कितना होगा इसका संदेह था, और यह संदेह सही भी साबित हुआ। मार्च 1938 में जिन्ना ने नेहरू को लिखे एक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय सभा द्वारा मंजूर किया गया भाग भी राष्ट्रगीत के रूप में मुस्लिम धर्मावलंबियों को मान्य नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय से गीत का विरोध करने वाली मुस्लिम लीग का तो समाधान हुआ ही नहीं, परंतु आम लोगों के मन में वंदे मातरम के प्रति जो आदर भाव है उसे कांग्रेस द्वारा जरा भी महत्व नहीं दिया जाता, ऐसी आलोचना होने लगी। अब तो मुस्लिम लीग ने पूरे गीत को ही हटाने की मांग की थी।
1: इसी दौरान अप्रैल 1938 में महात्मा गांधी ने जिन्ना से 3 घंटे तक चर्चा की थी। पिछले वर्ष की 14 मांगों के अलावा जिन्ना ने जो 6 और मांगे रखी उनमें से 4 मांगे हिंदुओं की दृष्टि से तो भड़काऊ ही थी। मुसलमानों को गोमांस खाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उर्दू को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तिरंगे झंडे को बदला जाए या मुस्लिम लीग के झंडे को तिरंगे झंडे के बराबर मान्यता दी जाए, इन 3 मांगों के साथ वंदे मातरम को जो राष्ट्रगीत का स्थान प्राप्त है उसे समाप्त किया जाए, ये 4थी मांग थी। ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम समाज के कुछ विचारक वंदे मातरम के विषय में सकारात्मक भूमिका लेकर जिन्ना के विरोध में अपने विचार रख रहे थे।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 43वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग समृद्धि नाइक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर, और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और

0: सीमा के दोनों तरफ 1,545 लोग लापता हैं। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
1: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5,00,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10,00,000 अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटे कोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
4: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
5: अपनी दो दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में

0: पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर

0: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की

0: सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज रक्षाबंधन के इस पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी बहनों की ओर से सभी भाइयों के लिए सदाबहार नगमे प्रोग्राम का ये पहला गीत। फिल्म छोटी बहन, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र का लिखा ये गाना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फिल्म थी छोटी बहन। आइए अब सुने चंबल की कसम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के ही स्वर में। सायल उद्यानवी के बोल खयाम का संगीत है।

0: चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार खयाम।
1: कुछ दिल ने कहा
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन के हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के,
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: झुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फूल बने अंगारे इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली। गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बांह और की अटखेली। भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा। भोली परिहारी बोली।

0: नवरंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में। भारत व्यास के बोलते सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती से यह कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

बहुत मुश्किल है दोस्तों ये समझ पाना। कई बार लोगों का मिलना सुहाना लगता है और उन्हीं से मिलते हुए आंखें चुराई जाती हैं। दरअसल ये मोहब्बत का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है, जब हम मिलना भी चाहते हैं और नहीं भी मिलना चाहते। ये अजीब सा दो राहा होता है। बहरहाल आपको हम बता दें, ही राजा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। और दोस्तों ये वो नगमे हैं जो हमारी सांसों में बसे हैं, जो हमारी जिंदगी के रास्तों पर हर वक्त साथ निभाते हैं। सदाबहार नगमे प्रोग्राम का सफर सुरीला हो, इसका विविध भारती बाकायदा ख्याल रखती है। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इसमें भी कुछ ऐसी बात है जहां पर साथ निभाने की बात है, तो सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। भरत व्यास ने इसे बेहद खूबसूरती से लिखा है और धुन बनाई है सरदार मलिक ने। और गाना सुनते हुए जरा याद कीजिएगा कि सरदार मलिक के सुपुत्र हैं जो आज भी फिल्मी दुनिया में खूबसूरत संगीत दे रहे हैं। फिलहाल सुनिए ये गाना, फिल्म सारंगा।

सारंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में भरत व्यास के बोलते सरदार मलिक का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। इसी के साथ अपने रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

सखियों, आपको मालूम है हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ किसी बहुत बड़े बदलाव से आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई छोटे छोटे से क्रियाकलाप जो हमारे आसपास ही होते हैं वो भी हमें खुश कर देते हैं। अब जैसे सावन का महीना है तो रिमझिम बरसती फुहारें ये हमें खुश कर देती हैं, और आ रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। इसी दौरान बहुत सारी बचपन की यादों में हम खो जाते हैं, और इन्हीं यादों में हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तो हमारी सखियों की खुशी के कारण क्या हैं, जानते हैं उन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में हमारी सभी सखियों का।

0: सभी सहेलियों का। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए आज का पहला कॉल, सुनते हैं किन सखी ने हमें किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सखी, बताइए आपका नाम बताइए और ये बताइए कि आप कहाँ से जुड़ी हैं हमारे साथ।
1: मैम जी, मेरा नाम दर्शना कुमारी है, हम पंजाब से डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर हरसे मानसर से बोल रहे हैं।
0: अच्छा जी, तो पंजाब का मौसम इस समय कैसा है?
1: गर्मी बहुत है मैडम जी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है।
0: क्यों, बारिश नहीं है वहाँ पर?
1: नाम ही नहीं ले रही।
0: तो बारिश ना होने से जो उमस है और गर्मी है वो बहुत ज्यादा है।
1: बहुत ज्यादा मैडम जी।
0: अच्छा दक्षिणा जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मैडम जी, मैं घर का काम भी करती हूँ और दुकान पे भी काम करती हूँ।
0: तो दुकान पर जो काम करती हैं वो किस तरह का काम होता है आपका?
1: मैडम जी, दुकान पे हम शूज बेचते हैं।
0: शूज बेचते हैं।
1: हाँ जी
0: आपके अलावा कोई और भी होता है दुकान पर मदद के लिए, जैसे आपके बच्चे
1: हाँ
0: हैं या
1: जी,
0: पति हैं?
1: हाँ जी, पति हमारा दो भी साथ ही रहता है।
0: अच्छा, और ये बताइए कि आज आपने फोन किया है तो अपनी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं मैडम जी, मेरा साया फिल्म का।
0: मेरा साया फिल्म का कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का मेरा साया फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते जी।
0: नमस्ते सखी, अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं सरिता कुमारी हरियाणा से बोल रही हूँ।
0: हरियाणा में कौन से शहर में रहती हैं आप?
1: जिला हिसार, उकलाना मंडी।
0: अच्छा, बताइए आप
1: जी
0: क्या
1: मैम।
0: करती हैं?
1: जी मैम, हाउसवाइफ हूँ।

0: जी, तो दिन भर में कौन से काम है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं करने में?
1: तो मुझे रेडियो सुनना अच्छा लगता है जी।
0: अच्छा, ये तो हुआ रेडियो सुनने वाला आपकी पसंद का काम, जो आपको सुकून देता है, आपको खुशी देता है और आपको ऊर्जा से भरपूर रखता है दिन भर के काम के लिए। लेकिन घर के कुछ काम होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आते हैं।
1: सफाई और फिर खाना पीना, पकवान बनाना, गुजिया, गुलगुला, पकोड़े, यही सब।
0: ये सब सर बारिश के पकवान है जो आपने बताया ना, गुलगुले, पकौड़े, ये बारिश के मौसम में ज्यादा पसंद किए जाते हैं।
1: जी मैम, पसंद तो किए जाते बारिश के मैम, लेकिन त्योहार भी तो चल रहा है। नागपंचमी नहीं थी, नागपंचमी 17 तारीख को तो हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं ना नागपंचमी। उसके बाद फिर रक्षाबंधन।
0: और कौन से त्योहार हैं जो आपके शहर में या आपके घर परिवार में ज्यादा मनाए जाते हैं?
1: जी मैम, दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गए, और वो करवा चौथ तो बहुत शौक से मनाते हैं।
0: तो सरिता जी, आप जब कॉल करती हैं तो अपनी पसंद के गीत भी सुनते हैं। आज आपने कौन सा गीत चुना है?
1: जी भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, जो है रक्षाबंधन के लिए।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। आप बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं दिया माँ मुन्ना बात कर रही हूँ मैडम, कर्नाटका से। मैं
0: कर्नाटका की कौन सी सिटी में आप रहती हैं?
1: बेलगाम की सिटी में रहती हूँ मैम।

0: अच्छा, बेलगाम आपके शहर की कुछ खासियत बताएंगी हमें?
1: हमारे शहर में तो बहुत अच्छा है मैडम, बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें हैं मैडम,
0: जी,
1: और बहुत देखने को भी बहुत अच्छा है मैडम जी।
0: और अगर वहां घूमने जाएं तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है?
1: मैडम बारिश का,
0: बारिश का, यानी कि अभी जो मौसम है ये सबसे अच्छा है
1: हाँ
0: बेलगाम घूमने के लिए।
1: जी मैडम सबसे अच्छा है।
0: और आप क्या करती हैं?
1: मैं मैडम घर पे रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ।
0: और आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं रंग पिक्चर का सुनना चाहती हूँ मैडम, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं।
0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत जो है रंग फिल्म से।
2: तुझे ना

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं फिर से लेकर अपना कार्यक्रम हेलो सहेली और शुरू करते हैं सखियों से फोन कॉल्स का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कि आप कौन बात कर रही हैं और किस शहर से आप हमारे साथ जुड़ी हैं?
1: मैम, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: जयपुर से?
1: और मेरा नाम कृष्णा सिंह। मैम
0: कृष्णा सिंह। कृष्णा जी, आप क्या करती हैं?

0: मैम मैं हाउस वाइफ हूँ।
1: जी
0: मैम सुबह सुबह तो बस सबका घर वालों का नाश्ता करना, फिर दोपहर को बच्चों को स्कूल चलाना, और बस यही सारे रूटीन में दिन निकल जाता है। बट मैं आपका शो जरूर सुनती हूँ मैम।
1: अच्छा ये बताइए कि रूटीन लाइफ हम जी रहे होते हैं तो कभी लगता है कि कुछ थोड़ा सा बदल लिया जाए जो हमें खुशी दे, या वो बदलाव हमें थोड़ी सी एनर्जी दे देता है, तो उस बदलाव के लिए आप क्या करती हैं?
0: मैम उस बदलाव के लिए कभी कभी खुद के लिए डांस प्रैक्टिस में मुझे बहुत शौक है मैम,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: मैं वो करना पसंद करती हूँ।
1: वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अपने को जो काम खुशी दे वो थोड़ा सा बदलाव लाके जिंदगी में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। और नृत्य तो वैसे भी एक ऐसी विधा है जो सबके चेहरे पर खुशी ले आती है। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: खूबसूरत है वो इतना।
1: रोग फिल्म का खूबसूरत है वो इतना,
0: जी मैम।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का रोग फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ जी बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं पुणे से वंदना पाटिल बोल रही हूँ मैम।
0: जी वंदना पाटिल जी हमसे बात कर रही हैं, और वंदना जी
1: जी
0: हम जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैम।
0: जो एक दिनचर्या रहती है वो कई बार हमें बोर करती है, तो उससे हटने के लिए आप क्या करती हैं? कुछ बदलाव लाती हैं अपनी जिंदगी में जो हटके करते हैं?
1: हाँ मैम, थोड़ा घर का काम भी कर लेती हूँ। बहू जॉब करती है तो घर में काम करती हूँ, बेटी भी जॉब पे जाती है, बेटा जाता है तो घर में काम भी करके गाना भी सुनती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपकी बहू और बेटी दोनों ही कामकाजी हैं, लेकिन आप घर संभाल लेती हैं, इससे उन्हें बड़ा सहयोग मिलता है।
1: जी मैम,
0: तो ये बहुत अच्छा काम है, और इस तरह से परिवार में तालमेल और संतुलन भी बना रहता है कि अगर
1: जी
0: एक स्त्री घर की काम के लिए बाहर गई है तो दूसरी स्त्री ने घर संभाल लिया है।
1: जी मैम,
0: वंदना जी आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जिस तरह से अपनी बहू बेटी दोनों को सहयोग कर रही हैं।
1: जी मैम, मेरी बहू बहुत अच्छी है मैम, बेटी भी अच्छी है, मेरा जो बेटा है वो भी अच्छा है।
0: देखिए, अगर हम खुद अच्छे होंगे तो सारे लोग हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं, और आप अपनी बहू और बेटी को बिल्कुल समान नजरिए से देख रही हैं। बहू अगर काम कर रही है तो बेटी भी कर रही है, दोनों में कोई तुलना नहीं है कि आपने कोई भी बड़ा छोटा अच्छा बुरा, ये जब हम नहीं करते हैं ना तो घर में खुशियां अपने आप बनी रहती हैं।
1: जी मैम, और
0: अच्छा,
1: मैं सिंगल मदर हूँ, बच्चे मेरे छोटे थे तब से मेरे हस्बैंड गुजर गए हैं मैम।
0: तो ये बहुत बड़ी ताकत है आप उनकी कि आपने अकेले उनको संभाला है, बड़ा किया है, और आज इस काबिल बनाया है कि वो घर से बाहर जाकर काम भी कर पा रही हैं आपकी बिटिया।
1: जी मैम,
0: तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं हम?
1: मैम रिमझिम बसे सावन, मंजिल जो फिल्म है ना उसका।
0: मंजिल फिल्म का गाना है रिमझिम गिरे सावन।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली। हाँ जी
0: हाँ जी नमस्ते सखी, बताइए आप कौन बात कर रही हैं?
1: जी, मैं उत्तर प्रदेश से मीनू जायसवाल बात कर रही हूँ। मैम
0: तो उत्तर प्रदेश में आपने अपने शहर का नाम नहीं बताया।
1: जी, मैम मैं यूपी सुल्तानपुर से बात कर रही हूँ। मैम
0: हाँ जी सुल्तानपुर से
1: मेरा,
0: बात कर रही हैं।
1: हाँ जी मैम, मेरा छोटा सा शहर है। मैम मैं ब्लाइंड हूँ मैम,
0: जी
1: जी मैम, और मैं बैचलर हूँ मैम, मैं
0: अच्छा
1: बैचलर हो चुकी हूँ जी मैम। मतलब आपके सारे प्रोग्राम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैम, और आपका प्रोग्राम एक सुरसंगम आता था इलाहाबाद से, आकाशवाणी इलाहाबाद से,
0: जी
1: तो मैम मैंने उसमें दो तीन रिकॉर्डिंग की भी थी, बट मेरा हो नहीं पाया मैम।
0: अच्छा, आपने जब आई थी रिकॉर्डिंग के लिए तो आपने क्या किया था? मतलब कोई कविता पाठ किया था, गाना गाया था?
1: मैंने अवधी लोक गीत गाए थे मैम
0: तो आज हमें सुनाइए अवधी लोकगीत।
1: जी मैम।

0: मैंने यही गाया था
1: ये कजरी है, बहुत सुंदर गाई आपने।
0: जी।
1: मुझे बताइए मीनू जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैंने लैला मजनू का आसमां वाले तेरी दुनिया से भी घबरा गया।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ जाते हैं अपनी सखियों के साथ और सुनते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी बात कर रही हैं?
1: मैं मालती बोल रही हूँ दीदी, झांसी से।
0: झांसी एक ऐतिहासिक शहर है, वहां से आप बात कर रही हैं।
1: हाँ दीदी,
0: बताइए आप क्या करती हैं मालती?
1: हाउस वाइफ हूँ दीदी
0: जी।
1: और छोटी सी दुकान खोली हूँ घर में, तो दुकान चलाती रहती हूँ परचूनी की।
0: तो आप तो एक वर्किंग महिला भी हो गई ना, कामकाजी महिला भी हो गई, घर के काम के साथ साथ आप ये दुकान भी संभालती हैं।
1: जी।
0: तो दुकान पर कितना वक्त आप दे पाती हैं?
1: दुकान पर वो घर में है दीदी, तो दुकान भी करती रहती हूँ, घर का भी करती रहती हूँ।
0: अच्छा, घर में ही दुकान कर रखी है इसलिए परेशानी ज्यादा होती नहीं घर को संभालने और दुकान संभालने में।
1: दीदी
0: अच्छा, बाकी का दिन आप जब रेडियो सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम है जो आपको पसंद आते हैं?
1: मुझे तो विविध भारती के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर सेहतनामा बहुत अच्छा लगता है।
0: सेहतनामा अच्छा लगता है।
1: जी।
0: इसमें सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती हैं।
1: जी।
0: फिलहाल गानों की जो झनकार है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे दीदी तिरंगा मूवी का गाना सुनना है, आप कहें तो थोड़ा गुनगुना के सुना दो।
0: बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से। आप अगर गुनगुना कर बताएंगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी।
1: इसे समझो ना रेशम की डोर मैया, मेरी राखी मतलब है प्यार भैया।
0: आपको सुनवाते हैं तिरंगा फिल्म का गीत जिसे आपने अभी हमें गुनगुना कर सुनाया।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं धनेश्वरी मठरिया बोल रही हूँ।
0: कहाँ से बात कर रही हैं धानेश्वरी
1: मैं
0: जी?
1: भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ।
0: जी
1: मुझे प्यासा शाम का गाना सुनना है, पर अचानक आप लोगों का आवाज इतना प्यारा लगता है सुन के। चंचल जी बोल रही आप ना?
0: हाँ, मैं चंचल बात कर रही हूँ आपसे। और
1: मैं
0: आपने शुरुआत में ही गाने की फरमाइश तो हमें कर दी, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया हमसे, और बातें तो की नहीं। अपने बारे में बताइए
1: हाँ,
0: हमें।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ,
0: हाँ
1: घर में
0: जी
1: रहती हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, रिटायर हुए हैं।
0: जी
1: मैं घर ही में रहती हूँ, बस इधर उधर घूमी हूँ बस।
0: हाँ,
1: हाँ, अब
0: आर्मी
1: मुझे
0: से जो जुड़े लोग होते हैं, जो सेना में काम करते हैं, उनका तबादला बहुत जल्दी होता है, तो बहुत सारे
1: जी,
0: शहरों में आप रही होंगी।
1: हाँ जी, मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, मेरठ में रही हूँ और दानापुर में रही हूँ। अभी मैं छत्तीसगढ़ में भिलाई में हूँ अपने घर पे।
0: तो अब रिटायरमेंट के बाद आप एक जगह पर स्थिर हो गई हैं।
1: जी, फिर रिटायर होके मेरे हस्बैंड अभी रेलवे पुलिस में लग गए हैं।
0: अच्छा, और इतने सारे शहर जब आपके पति देव का तबादला होता रहा, तो कौन से शहर में रहना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था?
1: अच्छा, तो मैडम मुझे चंडीगढ़ लगा था। चंडीगढ़ बहुत प्लानिंग सिटी है, बहुत साफ सुथरा सिटी है,
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगा था।
0: और आपके क्या-क्या शौक हैं?
1: मुझे तो खाना बनाने का शौक है और गार्डनिंग करने का शौक है। मेरे घर में पूरे घर में पूरा गार्डनिंग करती हूँ मैं, अच्छे से फूल उल लगाती हूँ बहुत अच्छे से। पूरे छत के बालकनी में आजकल वो गोल्डन टाइप का फूल लटकता है ना, पीला पीला दिखता है,
0: हाँ,
1: पूरा घर ढक गया है मेरा घर फूल से। सब कोई मेरे को पहचानते हैं, वो फूल वाली घर जाना है करके।
0: अरे वाह, ये तो आपने आपकी जो पहचान बना ली है अपनी बागवानी के शौक से, ये बहुत अच्छी है।
1: जी, मैं आर्मी में हस्बैंड के साथ थी ना, तो मुझे वहाँ हम लोग का प्रोग्राम होता है, वेलफेयर से भी होता है ना,
0: जी
1: तो उसमें मैं कुकिंग करी थी, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था दानापुर में भी और चंडीगढ़ में भी।
0: जब आपको फर्स्ट प्राइज मिला है।

0: कि पहला पुरस्कार आपको मिला खाना बनाने के लिए, उस वक्त आपने कौन सा व्यंजन बनाया था?
1: ए, मावा का आता है, चंद्रकला बोलते हैं।
0: जी, आपने हमारे कार्यक्रम में आज मिठास घोल दी है चंद्रकला के जरिए, तो अभी हम भी चाहते हैं कि संगीत की मिठास घुल जाए, तो कौन सा गीत सुनवाएं
1: हाँ,
0: आपको?
1: प्यासा सावन का मेघारे मेघारे का जाना है ना, उसको कर दे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा।
0: आपको सुनवा रहे हैं प्यासा सावन फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली। हाँ
0: सखी अपना नाम बताइए, कौन बात कर रही हैं?
1: फातिमा मनियार,
0: फातिमा जी, कहाँ से कॉल लगाया
1: नासिक
0: है आपने?
1: महाराष्ट्र।
0: नासिक में आप रहती हैं?
1: हाँ
0: हाँ, तो बताइए आप क्या करती हैं फातिमा जी?
1: मैं टेलर का काम करती हूँ, कपड़े सिलती हूँ।
0: आजकल साड़ियों से बहुत तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, इसमें
1: जी
0: प्लाजो भी
1: भाई
0: होते
1: जी,
0: हैं, कुर्ते होते हैं, गाउन होते हैं, और भी कई
1: जी
0: तरह
1: मैम,
0: की पोशाकें बनाई जाती हैं। क्या आपने वैसी कभी पोशाकें बनाई हैं?
1: जी मैम जी। सिर्फ
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तुम मूवी का पहली पहली बार वो गाना सुनना है।
0: पहली पहली बार मोहब्बत की है,
1: हाँ
0: आपको सुनवा रहे हैं। पहली पहली बार मोहब्बत की है, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते जी, मेरा नाम है भगवती सोलंकी और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ।
0: दिल्ली हमारे देश की राजधानी, वहां से आपने कॉल लगाया है।
1: हाँ जी,
0: तो बताइए भगवती जी, आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ और
0: जी
1: मेरे शौक तो बहुत है, बागवानी करना, म्यूजिक सुनना और थोड़ा भजन वगैरह गाना, मतलब हमेशा अपने आप को बिजी रखना।
0: बिल्कुल, अपने आप को जब हम व्यस्त रखते हैं तो बहुत सारी फिजूल की बातों से हम बचे रहते हैं, और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो
1: हाँ
0: चीज़
1: जी,
0: कभी नहीं हो पाती है। अपनी जो
1: हाँ जी,
0: व्यस्तताएं हैं ये हमें कई बार खुश भी रखती हैं, जैसे आपका शौक है संगीत सुनना। विविध भारती के कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको पसंद आते हैं? गीतों के बहुत सारे प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं।
1: हाँ जी। मेरे को तो जैसे सुबह से मेरा प्रोग्राम सुबह चालू हो जाता है, जैसे संगीत सरिता, महा रामायण आती है, फिर संगीत सरिता आती है, फिर भूले बिछड़े गीत आते हैं, तो सुबह से प्रोग्राम रसोई में चला लेती हूँ, प्रोग्राम अपना और काम करती रहती हूँ। और 10 बजे के बाद फिर वो जो प्रोग्राम आने लगते हैं, 12 बजे आता है, फिर
0: जी
1: 1 बजे जो आजकल सुरीला चला दिया कर, वो प्रोग्राम भी बहुत ही बहुत अच्छा लगता है। मतलब सबको अपने अपने पसंद करना है कि आज कौन सा प्रोग्राम आना है, किस पे आधारित है।
0: और बहुत सारे
1: ये
0: श्रोता अपने संदेश हमें लिखकर भेजते हैं। आपने कभी संदेश लिखकर भेजे हैं?
1: हाँ, मैं तो लिखती हूँ, जैसे कई बार आप लोग क्वेश्चन करती है ना, तो
0: जी
1: क्वेश्चन का के आंसर भी लिख के भेजती हूँ, और जो अपने मन की जो भावना थोड़ी तो उसको भी लिख देती हूँ कभी कभी, कभी तो शामिल हो जाता, कभी मिस हो जाता, तो कोई नहीं।
0: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? थोड़ा सा गुनगुना कर बताएंगी तो हमें और भी अच्छा लगेगा।
1: हाँ, जैसा कि मैं अपने पीहर से काफी दूर हूँ, मेरा पीहर जबलपुर में है और मैं दिल्ली में बैठी हूँ, तो
0: तो जब राखी का त्योहार आता है तब खास तौर पर मायके की बड़ी याद आती है।
1: बहुत बहुत मतलब सावन आते ही से समझो याद आ जाता पीहर तो, और
0: और
1: रक्षाबंधन तो बहुत मिस करती हूँ वहां पर जाना। तो मैं चंबल की कसम मूवी का है, तो जैसे कि मैं अपने वहां से दूर हूँ तो मैं ये गाना सुनना चाहूंगी, मैं गुनगुना देती हूँ। चंदा रे भैया सिंह के ना, भैया सिंह के ना, बहना याद करे ओ चंदा रे।
0: भगवती जी, आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जो अभी इंतजार कर रही हैं कि उनका कॉल लग जाए हेलो सहेली कार्यक्रम में, वे निराश ना हो, अगली बार आपका कॉल जरूर हमसे जुड़ जाएगा। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक वो हमें कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। पूर्व श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। हमारे सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 400-24662, अन्य नंबर है 28670288, मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का STD कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: दर्शकों के दिलों में बसते हैं। गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अनुपमा श्रीवास्तव की लिखी कहानी 11वां सेकंड। क्या आप बता सकते हैं कि 7वां आसमान क्या होता है? नहीं ना, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, यानी मैं भी नहीं बता सकती। लेकिन कई बार होता है ना, जब आप चीजों को जाने बगैर भी उन्हें बहुत गहराई से महसूस कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि पिछले 30 मिनट से मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। लग रहा है जैसे मैं यमुना के किनारे पर नहीं, उसी 7वें आसमान पर बैठी हूं। मतलब हद होती है भाई, पता है? एक तो मैं यहां पूरे आधे घंटे से सड़ रही हूं, ऊपर से मेरा फोन भी डिस्चार्ज हो गया है, यानी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए समय काटने का भी सहारा नहीं है। उस पर सितम ये कि इन बंदरों के डर से पिछले 30 मिनट में 36 जगह बदल चुकी हूं। मुझे मालूम था यहां का हाल, इसीलिए मैंने कहा भी था कि यमुना की क्या पड़ी है, कॉफी हाउस में मिलते हैं ना। पर नहीं, जनाब तो जिद करने लगे, नहीं नहीं प्लीज, बहुत अच्छा लगता है बहती नदी के किनारे बैठना, बहते पानी की आवाज सुनना। सोचो कहां कॉफी हाउस की किचकिच और कहां नदी की कलकल। तुम ही बताओ कहां सुकून मिलेगा।

वाह, क्या सुकून मिल रहा है। आओ आकर देखो जरा इस रोमांटिक और पीसफुल माहौल को। उफ, एक तो हवा के संग ये बाल मुंह पर आ रहे हैं, ऊपर से इतनी चींटियां हैं यहां, पैर में काट लिया है वो अलग। और ये जो सामने पानी बह रहा है ना, इसे देख देख कर लग रहा है जैसे पानी नहीं, मेरा सब्र सुकून ही बहकर सीधे बंगाल की खाड़ी में समाता जा रहा है। ये सब सब उस महाशय की मेहरबानी है। अगली बार जब मासूम सी शक्ल बनाकर कहेगा ना, अरे प्लीज नदी किनारे मिलते हैं, तो मैं सीधे बोल दूंगी कि इतने ही मरे जा रहे हो तो नदी का वॉलपेपर लगा लो, पर मेरा दिमाग चाटने की सोचना भी मत। अब बहुत हुआ, बहुत सुन ली पानी की ये कल कल। अब अगर अगली 2 मिनट में इसके दर्शन नहीं हुए तो मैं सीधे ऑटो पकड़ लूंगी। और अगर कसम से आगे ये महाशय अभी आ जाएं, तो बोल दूंगी लो भाई ये रहा तुम्हारा रोमानी किनारा, अब बैठो यहां और देखते रहो। चलो कोई नहीं, मैं मान गई, पर गलती मेरी ही है ना, मैं आखिर मान क्यों गई। अरे कॉफी हाउस में बैठी होती तो कम से कम एक कॉफी ही पी लेती, यहां तो मुंह सिए बैठी हूं। ठेले वाले से मूंगफली ली थी, वो भी वो शैतान बंदर छीन ले गया। भाई साहब उस वक्त मेरी ऐसी चीख निकली कि आसपास के 2-4 कौवे भी डर कर उड़ गए। अभी तक सांसें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं, डर के मारे मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो। पर इन महोदय का कहीं कोई अता पता नहीं है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे लग रहा है कि मेरी सब्र का फल तो कब का पक कर सड़ चुका है। और तो और अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज अंतहीन है तो वो है इन महाशय का 2 मिनट।

हाँ भाई, मैं ही दुनिया की सबसे वेली इंसान हूं जिसके पास बस यही एक काम बचा है कि नदी किनारे इंतजार में कुढ़ते हुए सुकून नाम के तत्व की तलाश करूं। इस सुकून के चक्कर में बंदर मूंगफली ले गया, बाल मुंह में घुसे जा रहे हैं, चींटियां काट रही हैं और खून खौल रहा है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो मेरी खींच इस वक्त खतरनाक एसिड बन चुकी है, और जैसे ही वो आएगा ना तो न्यूट्रलाइज यानी खत्म होने के बजाय सीधे ब्लास्ट होगा। कोई है जो उसे समझाए कि सुकून नदी के किनारे नहीं, टाइम पर आने से मिलता है। एक तो ये जो कंधे पर बैग के नाम पर किताबों का पिटारा लादकर चलता है ना, उसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, कॉलेज में तो समझ में आता है, पर यहां यमुना किनारे अपनी दोस्त से मिलने आते समय तो उस बेताल को छोड़कर आया जा सकता है ना। और मत छोड़ो, कम से कम जल्दी से उठाकर चल तो दो। कोई एक किताब कम रह जाएगी तो कंधा उठाने से मना नहीं कर देगा। पर नहीं, मुझे मालूम है यही आदत है उसकी, तभी तो मैं सुकृत की बजाय सुकरात कहती हूं उसको। रवैया ही ऐसा है उसका, ज्ञान तो ऐसे बांटेगा जैसे सीधे यूनान से चला आ रहा हो, पर टाइम पर आने की अक्ल एक पैसे की नहीं है। सच बोल रही हूं, फोन में अगर एक कॉल लायक भी चार्जिंग होती ना तो अभी सुनाती। अरे तुम बस ये बताओ कि मैं ही फालतू हूं क्या? कहा था कि भाई आज नहीं संडे को मिल लेते हैं, आज मुझे जरूरी काम है, अपना लैपटॉप ठीक करवाना है। पर नहीं, लैपटॉप का क्या है, संडे को करा लेना ना प्लीज। उफ, जब ये सुकरात प्लीज कहता है ना तो न जाने क्या मंत्र फिरता है कि मैं मना नहीं कर पाती। पर लो, लूटो नरम दिल होने का मजा, करो इंतजार। सच पूछो तो इस हां कहने की आदत ने ही तो मेरी जिंदगी का रायता बना दिया है। मेरी ही मती मारी जाती है जो पिघल जाती हूं, पर अब और नहीं। मैं यहां जमीन की रजिस्ट्री कराने आई हूं क्या, जो हिलूंगी नहीं? और ये सूरज देवता तो जैसे सीधे मेरे माथे पर ही अपना तवा रखकर बैठ गए हैं। अब कसम खाकर कह रही हूं, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो वापस चली जाऊंगी सच में।

ये देखो, यहां मारे इंतजार में कुढ़ कुढ़ कर पूरे फेस की शाइनिंग चौपट हो गई, और ये महाशय बड़े टूरिस्ट बने मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। बड़ी स्टाइल में आंखों पर काला चश्मा और कंधे पर बैग की जगह कैमरा टांगे। सुन रहे हैं आप लोग? दूर से ही उनका

वो मंद्र सुर वाला प्लीज हवा में तैरता हुआ चला आ रहा है। पर इस बार मैं अपनी अक्ल पर ताला और कानों में उंगली डालने वाली हूं। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर भाई साहब खुद को हॉलीवुड का कोई स्टार समझ रहे हैं। और यहां नदी किनारे मेरी हालत तो देखो, इन बिखरे बालों में किसी हॉरर फिल्म के हीरोइन लग रही हूं। मेरा मन कर रहा है कि उसके इस हॉलीवुड वाले स्वैग को इसी नदी के पानी में डुबो दूं। कैमरे का लेंस मुझ पर टिकाए अपनी सुकराती आवाज में सुर तो ऐसे लगा रहा है जैसे संगीत में पीएचडी कर रखी हो। देखो बताई दे रही हूं, मेरा फोटो मत लो। मैंने अपने गुस्से का पूरा आसमान इस एक वाक्य में उड़ेल देना चाहा, पर लगा कि ठीक से उड़ेल नहीं पाई। ये सुकरात ऐसी बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था कि मेरा सातवां आसमान ठीक उसी तरह से सिर के ऊपर से खिसक गया जैसे मुहावरों में पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। उसका गाना सुर पकड़ चुका था।

आई एम सॉरी सिया, वो दरअसल मुझे ये कैमरा खरीदने की वजह से देर हो गई। जानती हो कितनी दुकानों पर मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर मिला है ये मेरा ड्रीम पीस। ये कहते कहते उसने मुझे देखा, लेकिन तुमको इंतजार करना पड़ गया। आई एम रियली सॉरी, अचानक ही प्रोग्राम बन गया ना कैमरा खरीदने का। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। क्यों, संडे को नहीं खरीद सकते थे ये? मुझसे तो बड़ी जल्दी कहा था कि संडे को बनवा लेना अपना लैपटॉप। वो मुस्कुरा दिया। हाँ कहा था, पर ये जरूरी था ना, और मेरा लैपटॉप फालतू था, क्यों है ना? नहीं तो किसने कहा फालतू था? देखो सिया, जिंदगी में ना कुछ भी फालतू नहीं होता, बस वक्त के किसी लम्हे में कुछ चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। उनके जरूरी हो जाने से बाकी चीजों का महत्व घटता थोड़े ही है। किसी को ऐसा लग जरूर सकता है, लेकिन ये बस देखने का फर्क है और कुछ भी नहीं। प्लीज, मैंने भिनभिनाते हुए हाथ जोड़े, भगवान के वास्ते अब तुम अपनी फिलॉसफी की क्लास मत शुरू करो। अच्छा बाबा सॉरी, फिलॉसफी बंद, उसने ऐसे कहा जैसे वक्त की सारी हड़बड़ी वहीं ठहर गई हो। जेब से रुमाल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, पहले चेहरा पोंछो, पसीने से

भीगा हुआ है। फिर बच्चों जैसी मासूमियत से शिकायत करते हुए लहजा बदला, अरे वो दुकानदार भी ना बस अपनी ही धुन में था। एक के बाद एक लेंस बदल बदल कर मेरी तसल्ली परख रहा था और मेरी जिद बस इतनी सी थी कि आज जब हम इस नदी के किनारे बैठे तो हमारे पास इन गुजरते हुए लम्हों को हमेशा के लिए संजो लेने का कोई मुकम्मल जरिया हो। उसने पूरी

वे लम्हों को हमेशा के लिए संजो लेने का कोई मुकम्मल जरिया हो। उसने पूरी सोहबत के साथ कैमरे का रुख मेरी तरफ किया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज दरिया के सन्नाटे में गूंज गई, जिसे वक्त ने ठहर कर हमारी गवाही दे दी हो। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना वो ड्रीम कैमरा धीरे से बगल के पत्थर पर रख दिया, जैसे कह रहा हो कि फिलहाल इस ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। वो मेरे ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से वो काला चश्मा हटाया और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की वो जानी पहचानी नरमी और वो मध्यम सा सुकराती अंदाज फिर से अपना असर दिखाने लगा था।

बीच मेरे मना करने के बावजूद वो मेरी कई तस्वीरें ले चुका था। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? कोई मूड होता है फोटो वोटो का? अरे बाद में खिंचाऊंगी किसी दिन। उसने कैमरे का स्क्रीन मेरी तरफ किया। ये देखो कैसा मुंह बना रखा है तुमने। मैंने उसे घूरा। सब तुम्हारी ही कृपा है। आधा घंटे इन बंदरों के बीच वेट करवाओगे तो मुंह नहीं बनेगा तो क्या होगा? बस यही गलत सूत्र तो हमने रट लिया है। इस बार उसने चश्मा हटाकर अपनी बुद्ध मुस्कान फेंकी। ये जरूरी नहीं कि मुंह ही बने, पर क्या करें, हमने इंतजार के पलों को ऐसे ही कुड़कुड़ कर जीना सीखा है। मैं उसी के अंदाज में बोली, यथार्थ महानुभाव, किंतु आप हम सांसारिक जीवों से और क्या अपेक्षा करते हैं? जीने की। ये दो शब्द उसने ऐसे कहे जैसे किसी गीत की लाइन दोहराई हो। तो क्या मैं यहां मर रही थी? दिल पर हाथ रखकर बोलो, जिंदा थी? मैं हंस पड़ी। नहीं, बाय गॉड नहीं थी। अच्छा सुनो, कॉफी हाउस चले थोड़ी देर के लिए? उसने कहा, हाँ श्योर। मैं स्कूटी मोड़ने लगी तो उसने कहा, सुनो सिया। हाँ। पीछे देखो जरा। पीछे क्यों? क्योंकि आगे जाते हुए कभी कभी मुड़कर देख लेना चाहिए पीछे। जब उसने ये वाक्य कहा तब मेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं थी, पर मुझे पता था कि उसकी बुद्ध मुस्कान अब पूरे चेहरे पर एक शांत भाव बनकर फैल गई होगी। मैंने हेलमेट

यमुना की सांवली लहरों पर ढेरों रंगीन नावों के बीच हंसनी जैसी एक सफेद नाव तैर रही थी। उस छोर के मंदिर में कोई गा रहा था। लग रहा था जैसे वो आवाज भजन के वो सुर लहरों में घुलते जा रहे हों, या इन नावों की गति बनकर पानी की सतह पर हौले हौले सरक रहे हों। मैं हैरान रह गई। सुकरात, अब से बस कुछ पल पहले भी मैं यही थी, इसी जगह पर, लेकिन तब नदी के पास बिखरा ये सारा जादू मुझे छू भी नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि तब तुम जी कहां रही थी? मैं हंसने लगी। नहीं महाशय, जी तो रही थी, पर इस जादू को नहीं, अपने गुस्से को। हाँ, उसने कहा, और मैंने स्कूटी स्टार्ट कर ली। वैसे एक बात कहूं सुकरात, इंतजार करना बड़ी चुभने वाली सजा है। ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो और सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो, वो बोला। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हम जिंदगी को जी नहीं रहे होते, बस उसे किसी के आने तक खर्च कर रहे होते हैं। हमारी नजर सिर्फ घड़ी की सुइयों पर होती है। अगर वो नजर सुइयों से हट जाए तो शायद इंतजार भी एक हिस्सा बन जाए जीने का। हवा अब मेरे बालों को पीछे की तरफ ढकेल रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या कर रहे हैं हम? वक्त खर्च कर रहे हैं या फिर जी रहे हैं? अब हम वक्त को साथ लेकर चल रहे हैं सिया, बिना किसी सुई की फिक्र किए। उसने अपना नया कैमरा सहेज कर कंधे पर टांगा और स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो मेरे बालों को उलझा नहीं रही थी, बल्कि ढलती हुई धूप की नमी को छूकर गुजर रही थी। स्कूटी आगे बढ़ गई, मगर पीछे दरिया के किनारे उस पथरीली बेंच पर धूप और गुस्से की वो दोपहर वहीं छूट गई थी। हम दोनों उस बहते हुए पानी से दूर जा रहे थे, लेकिन मेरे भीतर उस क्लिक की गूंज और उसकी आंखों का वो मध्यम सा ठहराव अभी तक साथ साथ चल रहा था, जैसे वक्त की किसी मुकम्मल किताब में हमारा ये लम्हा हमेशा के लिए दर्ज हो गया हो।

सूर्यास्त से पहले के सिंदूरी रंग में लिपटा वो पूरा आलम पीछे छूटने लगा। एक दूसरे के पास पास खड़े सटकर बतियाते से लगते उन पुराने मंदिरों के रंगीन झुंड, घाट पर आंख बंद किए बैठे वो लोग, उंगलियों में फिरती हुई वो सुमरनिया, वो हंस गति से थिरकती हुई नावें, वो सांवला पानी, सब कुछ। जैसे ही स्कूटी मुड़ी, यमुना का नजारा नजरों से ओझल होने लगा, मानो उसी नम रुईदार सिंदूरी रंग ने उसे अपने भीतर समेट लिया हो। हम दोनों चुप थे और हमारी उस गुनगुनी खामोशी में केवल स्कूटी के पहियों का संगीत बज रहा था। उसने पूछा, पर हम कॉफी हाउस क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की कॉफी बहुत बढ़िया होती है और वहाँ एक अदद डिस्चार्ज फोन को चार्ज भी किया जा सकता है। मालूम है तुमने ऐसे अर्जेंट नोटिस पर बुलाया कि लगा पता नहीं क्या मसला है, तो देखो फोन तक चार्ज नहीं कर पाई। हाँ तो उसमें क्या, कोस तो लिया ना मुझे पूरे आधे घंटे। तुमको कैसे पता मैंने तुम्हें कोसा? जवाब में वो मुस्कुरा दिया। कुछ ही पलों बाद कॉफी हाउस में हम कॉर्नर की टेबल पर जा बैठे। मैं जैसे ही बैग से अपना चार्जर निकालने लगी, उसने झट से छीन कर अपने बैग के हवाले कर दिया। अरे ये क्या, फोन डिस्चार्ज है मेरा, वो हंस दिया। मालूम है तो दो ना, उसने कहा। नहीं। अरे क्यों नहीं, जवाब में उसने मेरी कुर्सी के पीछे खड़े होकर एक और फोटो खींची और बोला, बस नहीं दूंगा अभी तो, कम से कम नहीं। मैं सोचने लगी कि ये बंदा भी ना मुझे कभी समझ में नहीं आने वाला, कभी एकदम से सुकरात टाइप व्यवहार करता है और कभी एकदम सलमान टाइप।

साल भर से जानती हूँ इसे। कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त हैं हम, पर कभी कभी लगता है कि मैं इस बंदे को कभी नहीं जान पाऊंगी। खैर, चार्जर हासिल करने के लिए मैंने एक और कोशिश की, इस बार रिक्वेस्ट वाले मोड में। दे दो भाई प्लीज। क्यों, मैंने झुंझलाकर कहा, क्या बचपना है ये, अब ये भी कोई सवाल हुआ क्यों? अरे कोई जरूरी मैसेज हुआ तो? क्या जरूरी मैसेज हुआ तो? अरे अगर कुछ घंटे गैजेट से दूर रहोगी तो पिछड़ी हुई नहीं कहलाओगी। इंटरनेट नाम का ये समंदर क्या हाथ लग गया, हम सही गलत, झूठ सच, असली नकली, सब कुछ डाइजेस्ट करने लग गए हैं। जानती हो मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? मैंने पलट कर पूछा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग गैजेट्स को गैजेट्स की तरह नहीं, इंसानों की तरह ट्रीट करने लगे हैं। असहज हो जाते हैं हम उनके बिना, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, पर जब कोई पास में हो तो उसके होने को, उसके साथ के उन गुनगुने पलों को हम महसूस ही

नहीं कर पाते और जिंदगी के जादू से भरे कितने ही पलों को यूं ही बीत जाने देते हैं। यूं ही माने अनदेखा मैंने ठोड़ी पर हाथ रखकर उसे घूरा। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि मुझे गैजेट्स का एडिक्शन है, मुझे लत है इनकी, मैं इनके बिना जी ही नहीं सकती, है ना? नहीं, वो मुस्कुराया, फिर वही बुद्ध मुस्कान। मुझे बस ये लगता है कि ये कुछ पल तुम इन गैजेट्स के साथ नहीं, मेरे साथ जियो। मैंने चिढ़कर लापरवाही से कहा, क्यों, कुछ पलों बाद तुम मरने वाले हो क्या? नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता कि मरने से बड़ा सवाल ये है कि हम जी रहे हैं या नहीं? जानती हो सिया, मैं कई बार सच में ये सोचता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े, तुम्हारा तो पता नहीं, पर इस वक्त तुम ना तो मुझे आगे बढ़ने दे रहे हो और ना ही पीछे। वो हंस दिया, धीमी सहज हंसी। अच्छा अच्छा, छोड़ो, ये बताओ तुमने इस प्याला भर कॉफी को जिया या नहीं? बिल्कुल जिया, घूंट घूंट जिया, मैंने कहा और कॉफी हाउस में बज रहे गीत को संग संग गुनगुनाने लगी।

मैं हैरान थी। पता नहीं क्या हो गया था इस सुकरात को आज, कैसी पहेलियां सी बुझा रहा था। एक तो वहां बंदरों के बीच बैठकर गुस्से में उबलने से पहले ही मेरा दिमाग सेंटर से थोड़ा सरक गया था। उस पर ये दार्शनिक उसे पूरी तरह अपनी जगह से बेदखल करने पर उतारू था। मैं बोली, देखो वैसे भी तुम अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाते हो, पर आज तो विशेष तौर पर पल्ले नहीं पड़ रहे हो। वो हंस पड़ा, तो जरूरत क्या है, मत समझो तुम ना, बस कुछ पल के लिए अपनी ये सारी समझदारियां किसी पोटली में बांधकर कहीं दूर पटक दो और अभी बस जियो। और सुनो, एक एक पल को जीना। फिर बोला, अच्छा जरा

उधर तो देखो, अरे पीछे नहीं आगे देखो। हम जहाँ बैठे थे वहाँ सामने एक बड़ा सा आईना था। उस आईने में हम थे, माने हमारे प्रतिबिंब। उसने कहा, देख रही हो, ये वर्तमान है, वो पल जिसमें हम तुम हैं। ये पल हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा सिया, लेकिन जानती हो, डूब कर जिया हुआ हर लम्हा कहीं नहीं जाता, वो हमारे अंदर ही कहीं छूट जाता है, कहीं बस जाता है।

उसकी इन बातों से जाने क्यों मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने कहा, हे सुकरात, हो क्या गया है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? उसने मेरा सवाल मुझ पर ही थोप दिया, ऐसे जैसे मैंने कोई बड़ा भारी इल्जाम लगा दिया हो, वो भी झूठा। वो बोला, फोन की वजह से परेशान तुम हो और पूछ मुझसे रही हो कि हो क्या गया है मुझे। मैंने भी कहा, मेरा चार्जर छीनकर खुद जाने क्या जिद लगाए पड़े हो और कह मुझसे रहे हो कि क्या हो गया है मुझे। इस बीच उसने लगातार कई क्लिक कर डाले। ये क्या किए जा रहे हो? गॉड पार्टिकल का परीक्षण कर रहा हूं। अरे यार, कैमरे से फोटो ही खींचूंगा ना। ऐसे नासमझ सवालों की तुमसे उम्मीद नहीं करता मैं। मैंने भी कहा, लेकिन मैं तो तुमसे ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतों की उम्मीद करती हूं। क्या करूं, और कोई रास्ता नहीं है ना मेरे पास। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट वाले मोड में आई। अरे यार, क्यों सता रहे हो? लौटा भी दो मेरा चार्जर। अच्छा बाबा, ये लो। उसने चार्जर निकालकर मेरी ओर बढ़ाया, लेकिन मैं जैसे ही लेने को बढ़ी, झट से वापस बैग में ठूंस लिया। नहीं, अभी नहीं। वो लगातार बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था। मेरी घूरती हुई आंखों में देखते हुए धीमे से बोला, प्लीज लो। फिर वही मारक मंत्र। चिड़ को साइड में रखकर मैं मुस्कुरा दी। ये क्या सस्पेंस लगा रखा है सुकरात? उसने पूछा। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा ये सस्पेंस? उसने स्कूटी स्टार्ट कर दी। बोला, चलो बैठो। बैठोगी ना? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? मैंने कहा। अच्छा भाई, इतना तो बता दो कि हम जा कहां रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सच कहूं तो मुझे भी नहीं मालूम। मैंने कहा, क्या? पर क्यों? वो बोला, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिंदगी को हर बार प्लान बनाकर दौड़ाया जाए। सिया, कई बार जिंदगी के सबसे

अच्छे पल वो होते हैं जिनकी आहट हम सुन नहीं पाते, जो दिखाई ना दें। कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं महसूस करने के लिए। उसने एक गहरी सांस ली। महसूस करो सिया, सांसों में घुलती ये हवा, आंखों में ठहरी ये शाम, और मेरे पास बैठी हुई ये तुम। मैंने कहा, तुम तो सच में बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। उसने चहक कर कहा, मैं चाहता हूँ कुछ पल के लिए तुम भी बच्ची बन जाओ। नहीं भाई, मुझे तो माफी करो तुम, पहले ही इतनी मुश्किल से तो बड़ी हुई हूँ डांट खा खा कर, अब इतिहास नहीं दोहराना चाहती। इस बात पर दोनों

शहर की परिधि से दूर उस हरे जंगल में धंसते हुए हम वहां चले जा रहे थे जहां ढलती शाम के बावजूद धरती का धानी रंग गहराया नहीं था। उसने कदम के घने पेड़ों के बीच ले जाकर स्कूटी रोक दी, जहां और भी बहुत सारे पर्यटकों ने अपनी स्कूटी अपनी गाड़ियां पार्क की हुई थी और ढेर सारी फोटो ली और बोला, इन पेड़ों को गौर से देखो सिया, जिनके बीच से होकर हम गुजर रहे हैं। पहियों के इस संगीत को सुनो जो हमारी रफ्तार के संग लय बदलते हुए बज रहा है। इन लोगों को, इन नजारों को, इन आंखों को, इन मुस्कानों को, इन उदासियों को, हर चीज को जी लो, जी लो, क्योंकि हर लम्हा बीत रहा है, कभी ना लौटने के लिए बीत रहा है। मिट्टी, खेत, धुआं और मूंगे जैसे रंग में खोया हुआ ये पूरा आलम, हम दोनों वहीं बैठ गए। लग रहा था जैसे धरती हरे रंग में घुल गई हो। कहने को आसपास और भी बहुत सारे लोग थे, पर उस ढलती शाम में साथ की धूप को इस तरह जीने वाले शायद हम ही थे। सुकरात धीमे से बोला, तो कैसा लगा? मैंने सामने देखा, जैसे न नीचे धरती हो न ऊपर आकाश, जैसे मैं, जैसे हम उस सांवलाती हुई सूरज की नारंगी रेखा में समा गए थे। मैंने कहा, जो दिखाई ना दे, कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है महसूस करने के लिए। वो मुस्कुराया, तो ये लो अपना चार्जर। साथ में स्कूटी की चाबी भी थी और उसका वो ड्रीम पीस, वो नया चमकता हुआ कैमरा, जिसके लिए कुछ ही घंटे पहले उसने शहर की कितनी ही दुकानें छानी थी, वो अब उसके गले में नहीं बल्कि सामने पड़ी एक लकड़ी की बेंच पर रखा था। एक मिनट, तुम होश में तो हो? हे सुकरात, अपना नया कैमरा तुम यहाँ छोड़कर जा रहे हो? मुझे

गाढ़ी हैरत में डाल वो दो घड़ी बस मुस्कुराता रहा। फिर बहुत हौले से बोला, यहाँ नहीं सिया, तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। जिंदगी का असली जादू मुट्ठी से फिसल कर जा रहे इस लम्हे में है सिया। मैं तो बस उसी लम्हे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। ये कैमरा अब तुम्हारा हुआ। ये तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि जिंदगी के अदृश्य लेंस में हमारी हर सांस कैद हो रही है, इसलिए मुस्कुराती रहना सिया। और कभी कभी अपने लिए इस भागती दुनिया से ऐसे ठहरे हुए लम्हों को चुराती रहना। वो मुड़ा और धीमे कदमों से चलता हुआ लोगों की भीड़ में आंखों से ओझल होता गया। सिया के सामने कैमरा रखा था, हाथ में चार्जर और स्कूटी की चाबी। उसकी आंखों में नमी थी और होठों पर एक लंबी गहरी मुस्कान। वो हौले से बुदबुदाई, कैमरे की जरूरत उसे थी। दुनिया को कैद करने के लिए लेंस वो ढूंढ रहा था, पर सच पूछो तो वो मेरी आंखों में हमेशा के लिए जिंदगी का मुकम्मल फ्रेम उतार गया। सुना है लोग वक्त को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करते हैं, पर आज समझ आया कि जब हम टिक टिक करती घड़ियों के शोर से दूर बस इसी पल में आकर ठहर जाते हैं तो हम वक्त के कैदी नहीं, खुद वक्त बन जाते हैं। थैंक यू सुकरात, मुझे वक्त के पीछे भागना नहीं, उसके संग जीना सिखाने के लिए।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनुपमा श्रीवास्तव की कहानी 11वां सेकंड। वाचक स्वर आरती श्रीवास्तव का था, संपादन सहयोग सौरभ धारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र नेगी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल

0: का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का विचरण हमारे आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। नर दंतैल हाथियों से विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अर्चो का बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये टुकुडाण, सिलफिली, कनकनगर, करसी, बूढ़ाडाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, सिंघरा, दलदली, भरदा, गौरा, धर्मपुर, सरहरी, केवरा, करंजवार, सेमई, दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर, धमनी, वाड्रफ नगर, रघुनाथ नगर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये दुप्पी, चौरा, मरकाडांड, लोधीडांड, आबादी, बिशुनपुर, सिलाजू, पेंडारी, कोटराही, पोखरा, गुरमुटी, सोनहत, नवगई, गैना, चिनिया, महावीरगंज, कनक रामपुर, बगरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये उदारी, अस्कला, दोरना, जरहाडी, चकेरी, बासेन, परोगिया, घाटबर्रा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये मयूर चूंदी, कुंजारा, पाकर टोली, श्री टोली, उपका पानी, बंदर चुआ, लोढ़ा आंबा, डोडा पानी, साजा पानी, सोनार पहरी, बहमा, शाही डांड, गजरा, नंदो, ओली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारूमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 109 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कुड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये कांसी पानी, जाम पानी, साजा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान, जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 57 है। ये बंगूरसिया, बरकछार, चक्रधरपुर, धुमा

0: बहाल नागदरहा गया कमतरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी देवपुर और बार में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये हरदी गुड़ागढ़ अचानकपुर तेंदुचुआ पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा नारीपानी कोनारी बुड़ार जिडार पायलीखंड बेसराझर कोदोमाली तौरेंगा कुकरार ताराझर खोलापारा छिंदौला लूठापारा फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे। दोस्तों, हाथियों की सूचनाओं पर रात में खेतों के आसपास या घर के बाहर ना सोएं, हाथियों से सामना हो सकता है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं और अब आइए लेते हैं आनंद चित्रपट संगीत का।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, राजीव कृष्ण के लिखे बोल और रवि का संगीत।
1: Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Filmy Gaane.

0: to enjoy evergreen melodious songs from over the years.
1: अनजाना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के लिखे बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

फिल्म चंबल की कसम का ये गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़, साहिर के लिखे बोल और खयाम का संगीत।

फिल्म बंदिनी का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र के लिखे बोल और एस डी बर्मन का संगीत। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए।

फिल्म दिल एक मंदिर का ये गीत आपने सुना, सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ में, शैलेंद्र के लिखे बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। और इस गीत के साथ

चित्रपट संगीत का ये क्रम समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:35 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवा जगत।

0: नमस्कार दोस्तों दोस्तों, बचपन की कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाते। याद है वो समय जब भाई बहन एक ही कमरे में बैठकर छोटी सी बात पर झगड़ लिया करते थे। कभी टीवी की रिमोट के किसके हाथ में रहेगी इस बात पर, कभी मिठाई का आखिरी टुकड़ा किसे मिलेगा इस बात पर, और कभी एक दूसरे की शिकायत लेकर सीधे माँ के पास पहुंच जाना। उस समय लगता था कि भाई बहन से ज्यादा परेशान करने वाला इंसान शायद ही दुनिया में कोई होगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, जिंदगी बदल गई, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज आया, फिर नौकरी, करियर और अपनी अपनी जिम्मेदारियां। कभी भाई किसी दूसरे शहर चला गया तो कभी बहन अपनी नई दुनिया में व्यस्त हो गई। बातचीत जो पूरे दिन चला करती थी, अब कई बार सिर्फ एक छोटे से फोन कॉल तक सिमट जाती है। जैसे कि कैसे हो, ठीक हूँ, तुम बताओ सब ठीक है, और फिर अपने अपने काम में व्यस्त। लेकिन दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें रोज बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई दिनों तक बात ना हो, फिर भी दिल के किसी न किसी कोने में उनका अपना एक खास स्थान बना रहता है, और भाई बहन का रिश्ता शायद ऐसा ही होता है। इसी रिश्ते की उन अनगिनत यादों, उस बचपन की शरारत, छोटी छोटी नोक झोंक और सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए बिना कहे मौजूद रहने की भावना को समर्पित आज का यह दिन, जिसे रक्षाबंधन कहते हैं। राखी का यह छोटा सा धागा जब भाई की कलाई पर बंधता है तो उसके साथ सिर्फ एक परंपरा नहीं बंधती, बल्कि उसमें बंधी होती है बचपन की यादें, माँ की डांट, साथ बिताए अनगिनत पल, एक दूसरे की खिंचाई, मुश्किल समय में दिया गया साथ और वह विश्वास कि चाहे जिंदगी में कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं, जरूरत पड़ने पर तुम मुझे अपने पास ही पाओगे, ये वाली भावना। तो दोस्तों, आज रक्षाबंधन के इस खूबसूरत अवसर पर थोड़ी देर के लिए ही सही, पर अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी को रोकते हुए बचपन की उन गलियों पर लौटें और लौट कर याद करें कि उस रिश्ते को हमने कैसे निभाया था। कभी लड़कर निभाया तो कभी हंस कर निभाया, लेकिन मुश्किल वक्त में सबसे पहले हमारे साथ खड़े भी वही होते थे, क्योंकि राखी की कलाई पर बंधती जरूर है लेकिन उसका असली रिश्ता दिल से जुड़ा होता है। आपके रिश्तों की यह डोर हमेशा मजबूत बनी रहे, आपके घर में खुशियां बनी रहे और भाई बहन के बीच यह स्नेह जीवन भर यूं ही कायम रहे। इसी कामना के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
5: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।

0: दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम के पहले गीत का। फिल्म पराया धन से किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी द्वारा लिखा हुआ और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने। लीजिए सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।
1: नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।

0: दोस्तों, अब बारी है हमारे आज के क्रम मेरा शहर की, जिसमें बात हुई है श्रीमती सुशीला शर्मा जी से। लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा क्रम मेरा शहर, और कहते हैं कि किसी भी शहर की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों, सड़कों और बाजारों से नहीं होती, बल्कि उस शहर की पहचान होती है वहाँ के ज्ञान, संस्कृति और पढ़ने की परंपरा से। और जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले जो जगह आती है वह है पुस्तकालय, यानी कि लाइब्रेरी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहाँ एक ही छत के नीचे इतिहास भी मौजूद है, विज्ञान भी है, साहित्य भी है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी है और दुनिया को समझने का अवसर भी, जहाँ एक किताब किसी विद्यार्थी की लिए परीक्षाओं के लिए परीक्षा में सफलता का रास्ता खोल सकती है, तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वह किताब जीवन को देखने का एक नया नजरिया दे सकती। आज मोबाइल और इंटरनेट के दौर में हमारे पास जानकारी पाने के कई साधन मौजूद हैं। इसके बावजूद पुस्तकालय की अपनी एक अलग महत्ता है। खासकर विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए पुस्तकालय आज भी एकाग्र होकर पढ़ने, सही और प्रामाणिक सामग्री प्राप्त करने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की महत्वपूर्ण जगह है। और जब हम बात करते हैं अपने शहर बिलासपुर की, तो यहाँ का जिला पुस्तकालय भी लंबे समय से विद्यार्थियों और पाठकों के लिए ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। तो आज मेरा शहर के इसी क्रम में हम किताबों की इस दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि बिलासपुर के जिला पुस्तकालय में विद्यार्थियों और पाठकों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, यहाँ पढ़ने का माहौल कैसा है, बदलते डिजिटल दौर में पुस्तकालयों की भूमिका किस तरह से बदल रही है और युवाओं को पुस्तकालय से किस प्रकार से अधिक लाभ उठाना चाहिए। इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलासपुर जिला पुस्तकालय की लाइब्रेरियन श्रीमती श्रद्धा शर्मा जी। मैम, सबसे पहले आपका हमारे युवा जगत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: आप हमारे श्रोता साथियों को सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताइए।
1: मेरा नाम है श्रीमती श्रद्धा शर्मा और मैं जिला ग्रंथालय बिलासपुर में, जो कि तिलक नगर में है, वहाँ पे ग्रंथपाल की पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। और मैं इससे पहले भी दिल्ली में NCERT ऐसे 2-3 इंस्टीट्यूट है वहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए, वहाँ पे मैंने आर्मी एज ए रक्षा मंत्रालय के अंदर काम किया है ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। उसके अरे मेरी जब यहाँ आई तो यहाँ आने के बाद मैंने जी गवर्नमेंट में जॉब लग गया, तो जॉब लगने के बाद फिर मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं यहाँ पे 2011।
0: मैम, आप हमारे श्रोता साथियों को ये बताइए कि जिला बिलासपुर पुस्तकालय कब बना, कैसे बना, उसकी शुरुआत कैसे हुई और शहर के विद्यार्थियों और पाठकों के लिए जब पुस्तकालय किस तरह से तब भी महत्वपूर्ण था और आज भी महत्वपूर्ण है, अगर इसके बारे में आप कुछ हमारे श्रोताओं को जानकारी दे पाए।
1: बिलासपुर जो जिला ग्रंथालय है वो शहर में जो है एक विद्यार्थियों प्रतियोगी परीक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं, युवा जो हैं और जो बुजुर्ग पाठक हैं, उनके लिए एक ऐसी संस्था है, मतलब महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पे वो आकर के न्यूज़पेपर से लेकर के सारी चीजें अपनी ले सकते हैं। रही बात इसकी स्थापना की, तो कई कुछ पेपरों में 1952 बताया जा रहा है, 1954 बताते हैं, तो अभी इसकी स्थापना कब हुई इसके बारे में अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, पर यह है कि 1950 के बाद इसकी स्थापना हुई है और इसकी जगह कई जगह बदलती रही है, तो अब जाके यहाँ इसकी खुद की बिल्डिंग बनी है, तभी तो यहाँ पे है। और दूसरी बात यह है कि विद्यार्थियों के लिए जो आप बोल रहे हैं, तो विद्यार्थियों और युवाओं के लिए जो उपयोगिता के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे इनको बहुत ही अच्छा माहौल, शांत माहौल और युवा वर्ग के लिए अनुशासित रहने के लिए जो वातावरण और शांत माहौल है यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे कुछ पुस्तकें जैसे संदर्भ पुस्तकें हैं, ये सभी पुस्तकें यहाँ पे मिल जाती है उन लोग अपने कंपटीशन के लिए, अगर वे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी पुस्तकालय जो है वो उनको हर तरह से फैसिलिटी यहाँ पे देता है। साथ ही मेरे हिसाब से एक पुस्तकालय एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आकर आप कोई भी व्यक्ति जो है ज्ञान ले सकता है, अनुशासन ले सकता है और साथ ही उसमें एक चीज वो होती है आत्मविश्वास की है, आत्मविश्वास भी उसके में डेवलप।
0: तो जैसा कि आपने बताया कि एक विद्यार्थी यहाँ पर आकर आत्मविश्वास और अपना जो शोध कार्य है वो बहुत अच्छे से कर सकता है, तो मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

0: के लिए पुस्तकालयों पर ही निर्भर और वहीं का ही रुख अपनाते हैं, जबकि आज हमारे पास कंप्यूटर है, एआई सिस्टम है और बहुत सी ऐसी तकनीकी है जिससे हम घर बैठकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जिला पुस्तकालय में विद्यार्थियों के लिए किस तरह की किताबें हैं, अध्ययन सामग्री हैं, सुविधाएं उपलब्ध करा रही है जिला लाइब्रेरी, अगर इस बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
1: यहाँ जिला ग्रंथालय में सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके किताबें रखी गई है। इसमें सभी विषयों की पुस्तकें हैं, जैसे कि जीके की है, सामाजिक अध्ययन की है, साइंस से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है, हिस्ट्री, भूगोल और इकोनॉमिक्स कॉमर्स से रिलेटेड। साथ ही जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम है, गेट एग्जाम, टेट एग्जाम है, नीट के एग्जाम की है और जेई की है। साथ ही हमारे यहाँ पे है जैसे कि दृष्टि से रिलेटेड जितने भी है नोट्स हैं, और हमारे यहाँ इसके अलावा एनसीईआरटी की बुकें हैं। साथ में हमारे यहाँ पे आपको इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन की सारी बुकें मिलेंगी। ये बुक तो मिलेंगी, साथ ही पत्रिकाओं में आपको प्रतियोगिता दर्पण और जैसे विकास परक होता है, घटना चक्र है, ये सारी किताबें, योजना, कुरुक्षेत्र, ये भी यहाँ पे जिला ग्रंथालय में अवेलेबल है। साथ ही इनसे क्या होता है कि ये सारी बुक्स मिल जाती हैं बच्चों को, तो कंपटीशन की साथ ही हम लोग यहाँ से बुकें इशू भी करते हैं बच्चों को, तो बच्चे दो दो बुकें जैसे हैं अपने हिसाब से लेके जाते हैं घर में जाकर के नोट्स बना करके ले आते हैं। तो ये सभी किताबें जो है यहाँ पे उपलब्ध है। साथ ही आपको अगर संविधान के बारे में भी जानकारी लेनी है तो संविधान से रिलेटेड बुकें और जैसे हमारे सुविधा बुक्स है, मनोरमा की ईयर बुक होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल।
0: जी, जैसे मैंने आपको कहा मैम कि आज युवा जो है इतनी संसाधनों के बाद भी उसके पास फोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इस दौर में विद्यार्थी के पास जानकारी के बहुत से साधन हैं, तो ऐसे समय में क्या आप महसूस करते हैं कि पुस्तकालय आने वाले पाठकों की संख्या और उनकी पढ़ने की आदत में कोई बदलाव आया है? आपके इस पर क्या विचार है?
1: नहीं, जो पुस्तक प्रेमी है वो तो पुस्तक प्रेमी है ही है, बदलाव के लिए नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो इंटरनेट जो है एक ऐसा है जो है साधन मिला है कि जिससे तुरंत के तुरंत हमको जानकारी मिल जाए, परंतु किताबें एक ऐसी चीजें हैं कि जिसके बारे में आप इंटरनेट है उसकी तुलना नहीं कर सकते। इंटरनेट अपनी जगह है और पुस्तकें अपनी जगह है। साथ ही क्या होता है कि आज जैसे बच्चे जो पुस्तकें पढ़ते हैं तो नियमित आते हैं, नियमित आने के बाद पुस्तकों से उनको क्या होता है कि नोट्स बनाने में सुविधा मिल जाती है। साथ ही उससे पढ़ने से उनको एक वो होता है कि शांत वातावरण में उससे बैठ करके नोट्स बना सकते हैं। और इसके अलावा पुस्तकालय में आके अगर आप पुस्तकों से पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, आप एकाग्र चित्र होकर आप एक एक चीज को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, और नेट से क्या होता है आपको सिर्फ उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। और दूसरे दूसरे बड़े बड़े जो रचयिताएं हैं, जो साहित्यिक है, जो जिन्होंने लेखक है लिखी है, उनकी किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो वो बात अलग हो जाती है। नेट जरूरी है, परंतु नेट और पुस्तकों की तुलना आप करेंगे तो उसमें पुस्तक ऊपर ही आएगी।
0: जैसा कि आप बहुत सालों से विद्यार्थियों और छात्रों के बीच में हैं और उन्हें ग्रो करते देखती हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, कई बार हमने देखा है कि कोई भी विद्यार्थी ज्यादा, कई विद्यार्थी खासकर ज्यादा लंबा नहीं बैठ पाते, उनको पढ़ने के लिए बीच बीच में ब्रेक चाहिए होता है, तो नियमित रूप में पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप जैसी जो लाइब्रेरियन है वो किस रूप में सलाह देना चाहेंगे उन्हें कि कैसे उनका जो मन है वो एकाग्रचित रहे?
1: मेरे हिसाब से अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी स्कूल में या कहीं भी पढ़ रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अगर आपने एक लक्ष्य बना लिया है तो आपको जरूरी नहीं है कि वो लक्ष्य आप तुरंत लक्ष्य की ओर तुरंत ही पहुंच जाएंगे। आपको पहले लाइब्रेरी आइए आप या कहीं डेली अपना एक टाइम टेबल बनाइए। जरूरी नहीं है कि आप एक बार बैठे तो आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी, आप छोटी छोटी चीजें बनाइए अपने, थोड़े थोड़े पॉइंट बनाइए। एक दिन आप थोड़े दिन बैठिए, एक घंटे बैठिए, थोड़े दिन और बैठिए, धीरे धीरे आप अपनी जैसे जैसे अपने टाइम बढ़ाएंगे उसके हिसाब से क्या है अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे। आप अगर एकदम से ये सोचेंगे कि नहीं मेरे को अभी पढ़ना है और अभी के अभी मैं इस चीज को ले आऊं, दूसरा जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में सफलता मिले। आपको अगर सफलता लेना है तो आप उसमें एक ही बार में सफल नहीं हो पाएंगे, एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, बोलते हैं ना कि धीरे धीरे आप सीढ़ी चढ़ेंगे, तो उसी तरह से आप सीढ़ी चढ़िए, धीरे धीरे अपने लक्ष्य बनाइए, और लक्ष्य बड़े बड़े नहीं बनाइए, पहले छोटे बनाइए, आप पहले छोटों को प्राप्त करिए, उसके आधार पर आप बड़े की ओर बढ़ पाएंगे।
0: जी, अंत में मैम, अगर बिलासपुर में कोई युवा या विद्यार्थी पहली बार जिला पुस्तकालय आना चाहे तो उसे पुस्तकालय की सदस्यता लेने और सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा?
1: अगर वो जिला पुस्तकालय आना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट तो उनको यहाँ पे मेंबरशिप लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे, जैसे परिचय पत्र लेके आना पड़ेगा, फोटोज लगती है, ये सब लेंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको मेंबरशिप मिल जाएगी, उसके बाद मेंबरशिप लेके आते हैं तो आपको यहाँ आने के बाद यहाँ के जो लाइब्रेरी के रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे लाइब्रेरी में शांत वातावरण रहता है, साथ ही आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइब्रेरी के जो दूसरे पाठक हैं उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही हम जो बुक्स आपको इशू और रिटर्न कर रहे हैं तो उन बुक्स का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स लाइब्रेरी की एक धरोहर है, तो उसलिए आप उसमें कोई कुछ डैमेज ना हो, ये सब

0: चीजें ना हो, तो उस चीज को ध्यान में आपको रखना
1: पड़ेगा। मैम ये भी बता दीजिए कि ये लाइब्रेरी का समय क्या है?
0: ये लाइब्रेरी ओपन तो सुबह हो जाती है 7 बजे से, परंतु पाठकों के लिए जो खुली रहती है सुबह हमारी 8 बजे से 11:30 बजे तक रहती है, और शाम को पाठकों के लिए रहती है ये 4 बजे से लेकर के 6 बजे।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे श्रोता साथियों और युवा साथियों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और लाइब्रेरी के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए।
0: धन्यवाद आपको भी।
2: तो दोस्तों, आज आपने हमारे इस क्रम में जाना कि पुस्तकालय की गतिविधियां, यहाँ के उपलब्ध सुविधाओं और विद्यार्थियों के लिए इनकी उपयोगिता कैसे बहुत महत्वपूर्ण है। आज की बातचीत में एक बात तो बिल्कुल साफ होकर सामने आई है कि पुस्तकालय केवल किताबों को रखने की जगह नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहाँ विचार जन्म लेते हैं, ज्ञान बढ़ता है और सपनों को दिशा मिलती है। किसी विद्यार्थी के लिए पुस्तकालय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का साथी हो सकता है, किसी युवा के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाने का माध्यम, किसी पाठक के लिए सुकून का स्थान और किसी शोधार्थी के लिए नई जानकारी की तलाश का केंद्र। हमारे आसपास तकनीक तेजी से बदल रही है, आज एक क्लिक पर हजारों जानकारियां हमारे मोबाइल स्क्रीन पर आ जाती हैं, लेकिन इस जानकारी के बीच सही, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी को चुनना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे समय में पुस्तकालय का महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आपको पढ़ने का शौक है, तो अपने शहर के पुस्तकालय से जरूर जुड़िए। हो सकता है कि जिस किताब की तलाश आप कर रहे हैं वह आपको वहीं मिल जाए और वहीं किताब आपकी जीवन की दिशा बदल, क्योंकि किताबें सिर्फ पन्नों पर लिखे शब्द नहीं होते, वह किसी के अनुभव, किसी की मेहनत और किसी के ज्ञान का ऐसा खजाना होते हैं जिससे हम बिना वह जीवन जिए भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए हम अपने शहर की इस ज्ञान परंपरा को मजबूत करें, पुस्तकालय तक जाएं, किताबों से दोस्ती करें और पढ़ने के आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसी उम्मीद और एक अच्छी किताब पढ़ने के संकल्प के साथ मेरा शहर आज के इस क्रम से मुझे दीजिए अनुमति।
3: क्रम मेरा शहर में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती सुशीला शर्मा जी को।
4: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
5: जी,
4: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
5: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
4: पर ये होगा कैसे?
5: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
4: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
5: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
4: बस
5: बस
4: समझ गया।
5: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: कुछ शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
9: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
3: दोस्तों, चलिए सुनते हैं साइबर जागृति अभियान के बारे में।
10: अभियान संबंधी आवश्यक जानकारी। मित्रों, साइबर अपराधी आम लोगों से रकम ऐंठने नित्य नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, और कई बार भोले भाले लोग इस संबंध में पर्याप्त ज्ञान के अभाव में उनके कुचक्र में उलझकर अपना बहुत कुछ गंवा बैठते हैं। यदि किसी भी अनजान नंबर से आपके मोबाइल पर कॉल आता है और वह अपने आप को पुलिस, CBI, ED या बैंक कर्मचारी अथवा न्यायालय का मजिस्ट्रेट बताता है तथा आपके विरुद्ध FIR दर्ज हो चुकी है, आपकी गिरफ्तारी होनी है जैसी धमकी देता है या इसके एवज में बड़ी रकम की मांग करता है, तब ऐसे झूठे फोन कॉल पर विश्वास न करें, न ही डरें। ध्यान रहे, उपरोक्त विभाग किसी को ऐसे फोन नहीं करता है। ये साइबर अपराधी होते हैं जो आम जनों को डरा धमका कर पैसे वसूल कर भाग जाते हैं, इसलिए सावधान रहें। इस प्रकार के फोन कॉल आने पर फौरन डायल 1930 या पुलिस को सूचित करें।
6: जनहित में सदैव

0: बिलासपुर पुलिस छत्तीसगढ़।
1: साथियों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के आखिरी गीत का, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत से सजाया है रजिंदर कृष्णन ने और शब्द दिए हैं चित्रगुप्त ने। ये गाना है फिल्म बरखा से। लीजिए, सुनिए ये गीत।

तो दोस्तों, हमने जैसे कि स्कूल में कुछ शब्द सुने, नमः, शांति, विद्या, सत्यम, धर्म, ये सारे शब्द हमने स्कूल में सुने हैं, पढ़े हैं और कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि ये जो शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द हैं, और संस्कृत जो है वो भारत की ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण आधार है। संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा का नाम नहीं, बल्कि वह वेदों से लेकर उपनिषदों तक, रामायण और महाभारत से लेकर कालिदास के साहित्य तक, दर्शन, व्याकरण, गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और अनेक ज्ञान विधाओं के विकास में संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस गौरवशाली भाषा और सांस्कृतिक विरासत की याद को ही हमें संजोना है, और इसका अवसर हमें देता है संस्कृत दिवस। दोस्तों, आज संस्कृत दिवस है, और संस्कृत दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे अनेक ग्रंथों, या फिर अगर हम अपने दैनिक जीवन में भी देखें तो कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें संस्कृत के शब्द हम रोज यूज करते हैं, जैसे कि माता, पिता, मित्र, विद्यालय, समाज, ज्ञान, संस्कार, प्रकृति, मानव, परिवार, जैसे अनेक शब्द हैं जो आज भी हमारे भाषाओं में, हमारे बोलने के तरीकों पर उपलब्ध हैं। प्राचीन ग्रंथों से लेकर हमारे आज के युग तक सारी चीजें हम संस्कृत में ही जानते हैं। तो इस दिन को संजोने के लिए, इस भाषा को संजोने के लिए यह दिन बहुत आवश्यक हो जाता है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपका दोस्त और होस्ट अभिजीत सिंह आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा जगत। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं और अब कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको जानकारी दे दें आज और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। आज शाम 7:30 पर आप सुनेंगे ग्राम सभा में बेरा के गोट, जिसका विषय होगा रिश्तों का जीवन में महत्व का पर्व रक्षाबंधन, कृषि प्रबंधन में महिला समूह की भूमिका। इस विषय पर भी आप बेरा के गोट सुनेंगे। इसके साथ ही फोन इन क्रम होगा, विषय होगा खरीफ फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन। विशेषज्ञ डॉक्टर दुष्यंत कौशिक, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर, संचालन पंचू भैया। इसके साथ ही क्रम होगा मौसम, मंडी भाव और सामयिक सुझाव का। रात 8:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत में संजय वत्सल के गीत। 8:15 पर हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम रजनीगंधा।

प्रिय भारती प्रसारण सेवा में रात 9:15 पर हम जुड़ेंगे और दिल्ली केंद्र से 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात 9 अंग्रेजी में समाचार। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनेंगे आप शाम 6:20 और शाम 7:00।

आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। कल सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अमराई में भुजदेव जी, पूजा चंद्राकर और सरस्वती गोस्वामी। इसके साथ ही आप सुनेंगे भागवत सत्र और सरस्वती जयंती। रात्रि के विशेष सुबह 10:30 मिनट पर आप सुनेंगे संबंधित कार्यक्रम। कार्यक्रम बातों बातों में सुबह 9 बजे, सदाबहार 9 में आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, और सुबह 7:05 का समय होगा सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का। शाम सुबह 6:45 पर आप सुनेंगे चिंतन, और सुबह 6:30 का समय होगा खेती की बात कार्यक्रम का, जिसमें विषय होगा मिर्च के प्रमुख रोग और प्रसारण सेवा से हम जुड़ेंगे सुबह 9:15 पर। 9:55 पर आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार, और 10:30 पर आप सुनेंगे 10:30 पर आप सुनेंगे नए तराने। सुबह 11 बजे हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा। आइए आपको बता दें कल शाम के प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। शाम 7 बजे आप सुनेंगे ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम। रात 8 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत में अभिजीत पोहनकर के गीत। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनी गंधा। शाम 5:05 पर आप आनंद लेंगे चित्रपट संगीत का, और दिल्ली केंद्र से हम जुड़ेंगे समाचार संध्या के लिए 8:45 पर, और अंग्रेजी में समाचार होंगे रात 9 बजे। विविध भारती प्रसारण सेवा से हम जुड़ेंगे रात 9:15। श्रोताओं आपको एक बार फिर बता दें कल सुबह प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अमराई में भुजली गीत, इंदिरा चंद्राकर और भागवत सबरे साथियों के स्वर में। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। रायपुर केंद्र से सुबह 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम बातों बातों में। सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का समय होगा सुबह 7:05 पर, और 7:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। 10:30 पर हम हाजिर होंगे नए तराने लेकर। विविध भारती प्रसारण सेवा से हम जुड़ेंगे सुबह 11 बजे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 6:10 होने वाले हैं, और अब समाचार हम

0: अब सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ ही समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 बच्चर पूरा हो गए है। बच्चर 2014 में आजे के दिन हो रही शुरुआत। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक के मामला आगू आए के बाद प्रबंधन है बीएससी कृषि प्रथम बच्चर के दूसरा सेमेस्टर के परीक्षा ल निरस्त कर दे है। और भाई बहनी के पवित्र स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के तिहार आज छत्तीसगढ़ समेत देश भर में उत्साह और उमंग के संग मनाए जाते। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 बच्चर पूरा हो गए है। यह देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य ल बदले के दिशा में एक अहम पड़ाव है। ये योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चर 2014 में आजे के दिन करे रहीन। 12 बच्चर में ये योजना विशेष रूप ले वंचित समुदाय मन बर औपचारिक बैंकिंग ऋण बीमा पेंशन और डिजिटल भुगतान तक पहुंच के विस्तार करे है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ ले ज्यादा खाता खोले जा चुके हैं जिमा 32 करोड़ 92 लाख महिला लाभार्थी हरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहिन के पाछू 12 बच्चर में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणाम के प्रभाव बड़ सुघर है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी है कहिन के जनधन योजना वित्तीय समावेशन ल बढ़ावा दे और देश के लोगन मन ल सक्षम बनाए में महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक के मामला आगू आए के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन बीएससी कृषि प्रथम बच्चर के दूसरा सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स परीक्षा ल निरस्त कर दे है। ये परीक्षा 19 अगस्त के आयोजित हो रही। अब ये परीक्षा सितंबर के दूसरा हफ्ता में दोबारा रखे जाही। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन रायपुर स्थित तेलीबांधा थाना में FIR दर्ज कराए है। प्रदेश में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स के नीलामी ला बढ़ावा देबर 31 अगस्त के नवा रायपुर में रोड शो आयोजित करे जाही। भारत सरकार के खान मंत्रालय डहाले आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्र के संग्रह राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगी। केंद्र सरकार है नीलामी के 8वां किस्त में 20 ठीन खनिज ब्लॉक शामिल करे है। इमा ग्रेफाइट दुर्लभ मृदा तत्व वेनेडियम टाइटेनियम और टंगस्टन जैसे खनिज शामिल है। रोड शो में निवेश और नीलामी प्रक्रिया में चर्चा होगी। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के बीच लापता रायपुर के मोनिका यादव के सकुशल हुए के सूचना है। प्रशासन के अनुसार महादेव घाट निवासी मोनिका 22 अगस्त ले नेपाल में रहीन और बाढ़ के बाद ओखर परिजन मन ले संपर्क नहीं हो पात रही। राज्य सरकार है सहायता बर टोल फ्री नंबर 1070 और कंट्रोल रूम नंबर 07712234 71 जारी करे है। बिलासपुर जिला के मस्तूरी विकासखंड के ओखर गौधाम में पाछू 3 दिन में 6 जानवर मन के मौत हुए है। पशु चिकित्सा विभाग के जांच रिपोर्ट के अनुसार एमा 4 पशु के मौत वृद्धावस्था और 2 झीन के दूसर कारण से हुए है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश में पशु चिकित्सा विभाग के टीम गौधाम के निरीक्षण करके मृत पशु मन के पोस्टमार्टम करिस। जांच में हाल के बहुत ज्यादा वर्षा के सेती गौधाम परिसर में जल भराव के स्थिति अगुवाईस। गौधाम में करीबन 300 पशु मौजूद हैं। जम्मू पशु मल्ला सुरक्षित जगह में स्थानांतरित करे के निर्देश दे गए है। डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के नोटिफिकेशन जारी करे है। एमा ब्रांच पोस्टमास्टर असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक के पद शामिल है। विभाग डहाले 25,000 ले ज्यादा पद ऊपर भर्ती करे जाही। वन टाइम रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त ले 19 सितंबर और आवेदन फीस भुगतान 2 ले 21 सितंबर तक होगी। इति छत्तीसगढ़ वन विभाग में वन रक्षक मन के 1400 ले ज्यादा रिक्त पद में भर्ती के प्रक्रिया शुरू हो गए है। लिखित परीक्षा 13 दिसंबर के रखे जाही। उन्हें शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर लेहे आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता लेहे हमर वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल

मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा था छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बढ़बो पांचे समाचार को ती सुनैया मल्ला बता दन के प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इधरी छत्तीसगढ़ पुलिस को तिले चलाए जात साइबर जागृति अभियान ऊपर केंद्रित रही। एक तहत सहायक पुलिस महानिरीक्षक रोहित झा लेगे भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 29 अगस्त के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहरले FM और प्राइमरी चैनल में बिहानिया 9 बजे ले करे जाही। जिला छत्तीसगढ़ के जम्मू आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले करही। राज्य सरकार ह अलग अलग निगम बोर्ड और आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मल्ला कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के दर्जा दे है। सामान्य प्रशासन विभाग गोतीले जारी आदेश के अनुसार 18 पदाधिकारी मल्ला मंत्री के दर्जा दे गए है। एमा 3 झल्ला कैबिनेट और 15 झिनला राज्य मंत्री के दर्जा दे गए है। भाई बहनी के पवित्र स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के तिहार आज छत्तीसगढ़ समेत देश भर में उत्साह और उमंग के संग मनाए जाते। आज के दिन बहनी अपन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते और ओखर लंबा उम्र के कामना करते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा रक्षाबंधन के मौका में लोगन मल्ला बधाई दिन है। इही बीच राज्यपाल रमेन डेका हा आज रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंच के भगवान जगन्नाथ के दर्शन और पूजा पाठ करके रक्षा सूत्र बांधिन। राज्यपाल हा ए मौका में प्रदेशवासी मन के सुख समृद्धि और खुशहाली के कामना करिन। उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा अपन रायपुर स्थित निवास में रक्षाबंधन के पर्व मनाइन। ए मौका में मुख्यमंत्री ल आने आने स्कूल के छात्रा सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता मन रक्षा सूत्र बांधिन और उखर लंबा उम्र के कामना करिन। ए मौका में मुख्यमंत्री हा प्रदेशवासी मन ल बधाई और शुभकामना दिन। उन्हें रायपुर समेत प्रदेश के 5 केंद्रीय 22 जिला और 6 उप जेल में रक्षाबंधन के तिहार आज उत्साह और सद्भाव के संग मनाया गया। रायपुर सेंट्रल जेल में आज बिहानिया 8 बजे ले मझनिया 3 बजे तक बहनी मल्ला बंदी मल्ले मिले और ओ मल्ला राखी बांधे के अनुमति दे गए रहिस। जेल अधीक्षक योगेश सिंह छत्री है बताइन कि सुरक्षा व्यवस्था ला ध्यान में रखत एक झीन बंदी ला राखी बांधे भर 3 बहनी मल्ले ही प्रवेश दे गिस। इसने केंद्रीय जेल परिसर दुरुगमा मंदी मल्ले मिले और ओ मल्ला राखी बांधे पहुंचे बहनी मन के सुरक्षा व्यवस्था के संग दुरुग पुलिस है साइबर जागृति अभियान चलाइस। ए दौरान साइबर टीम हा मौजूद लोगन मन ले ऑनलाइन ठगी फर्जी कॉल संदिग्ध लिंक OTP और डिजिटल धोखाधड़ी ले बाचे के उपाय बताइस। ओती बीजापुर मा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान मन बालिका बाल गृह छात्रावास के छात्रा मन संग राखी तिहार मनाई। छात्रा मन अधिकारी और जवान मन ला राखी बांधिन और संग्रह भाई बहनी के स्नेह के संदेश दिन। उन्हें कांकेर जिला में भानुप्रतापपुर क्षेत्र के ग्राम चौगेल में आत्मसमर्पित माओवादी मन जिला रिजर्व गार्ड DRG के जवान मनला राखी बांध के रक्षाबंधन के पर्व मनाइन। ए मौका में आत्मसमर्पित महिला माओवादी मन बताइन कि ओमन पहली घाव रक्षाबंधन के तिहार मनावत हैं। ओमन कहिन कि मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम ले ओमन राखी बनाए बर सीखिन और आज यही राखी पुलिस जवान मन के कलाई में बांधना खास और भावुक अनुभव है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका में काली मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित हो या समारोह में खेल अलंकरण पर चयनित खिलाड़ी प्रशिक्षक और निर्णायक मल्ला राज्य अलंकरण ले सम्मानित करही। पुरस्कार खातिर पाछू 3 पछर बर कुल 82 खिलाड़ी मन के चयन करे गए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री ट्रॉफी बर 5 दल के 43 खिलाड़ी और प्रशिक्षक मल्ला चुने गए हैं। और अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग प्रदेश में अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह में भारी वर्षा हुए और गाज गिरे के चेतावनी दे है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी है बताइन कि उत्तर प्रदेश और ओखर ले लगे जिला में एक ठिन निम्न दाब के क्षेत्र बने हुए है। इखर असले प्रदेश में अवैया 6 दिन तक बारिश के गतिविधि में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 बच्चर पूरा हो गए है। बच्चर 2014 में आज के दिन हो रही शुरुआत। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक के मामला आगू आए के बाद प्रबंधन है BSc कृषि प्रथम बच्चर के दूसरा सेमेस्टर के परीक्षा ला निरस्त कर दे है
और भाई बहनी के पवित्र स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के त्यौहार आज छत्तीसगढ़ समेत

0: देश भर में उत्साह और उमंग के संग मनाए जाते। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी आप रायपुर केंद्र से सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। शाम के 6:20 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं और इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गावड़कर, सरिता प्रिंस, एकांश गावड़कर, टी मल्होत्रा, डी ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। ये हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल, राजेश। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू। लछनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफ्जाल ताज। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, ऊषा, अमित राय, हैप्पी राय। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा। नारवेल महाराष्ट्र से PS नावरकर, निर्मला, विशाल नावरकर और सुधाकर। राजे जाधव, प्रशांत, राजे जाधव, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सरवद, ये हैं कालेगांव जाफराबाद से। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ फिल्म रेशम की डोरी। अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं पंजौनिया जिला जलौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, दुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन युवराज साहू, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, निधि निखिल, यश प्रयाण, शिवम रेखा, धनेश्वरी वर्मा, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा श्याम कुंवर, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ, रीचा देवांगन, कुम्हार खेड़ा सहारनपुर से सैयद मशरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री, और लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, रुद्रा खमरिया से अक्रम, अमीन, अर्श, अतिका, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा। आइए सुनते हैं हम सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

0: फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ थी, इंदिवर के लिखे बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
2: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
3: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
4: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
3: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
5: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
1: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की

0: मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
1: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
2: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
5: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने, और कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, बिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा श्याम कुंवर, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ, रीचा देवांगन, कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मशरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री, लुत्रा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श, अतिका, बुड़गान से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, डबरीपारा तिवर्ता से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी, और बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत। फिल्म हम साथ साथ है का ये गीत कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की।

युग में आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन देव कोहली का के लिखे बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।

इस क्रम का आखिरी गीत सुनते हैं और इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेश्वरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा मैसौल सीतामढ़ी बिहार से मुशर्रत जहाना तलत फरहत रिकफत नुजहत साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज बुचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से परम सिंह जौड़ा मनजीत कौर करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिंह दमन और अभिजीत भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा पूजा परिहार रायगढ़ बिहार से उमा राज पवन संजय दीपक और कमल लक्षर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहराज जहां पलौदा से दिलहरन गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल समृद्धि पटेल नेपानगर से हैं प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र साह दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्रमणि नोखेलाल वर्मा और धांडी नांदुड़ा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे संदीप बाठे अमूल्य बाठे और पलारी से प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा।

0: और इस गीत के साथ ही ईमेल करें, गीत सुने का ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 6:45 होने वाले हैं और प्रादेशिक समाचार के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
6: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
7: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
8: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
7: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
8: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
7: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
8: क्यों?
7: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
9: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
11: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
12: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
11: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
12: आकाशवाणी से।
9: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
13: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक मामले में बीएससी कृषि प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर की फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स परीक्षा निरस्त, FIR दर्ज। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। 12 वर्षों में इस योजना ने विशेष रूप से वंचित समुदायों के लिए औपचारिक बैंकिंग, ऋण, बीमा, पेंशन और डिजिटल भुगतान तक पहुंच का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 32,92,00,000 महिला लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव

0: बेमिसाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बीएससी कृषि प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर की फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स परीक्षा को निरस्त कर दिया है। ये परीक्षा 19 अगस्त को आयोजित हुई थी। अब ये परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में दोबारा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने रायपुर स्थित तेलीबांधा थाना में FIR दर्ज करवाई है। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। इस बीच राज्यपाल रमन डेका ने आज रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन और विधिवत पूजा अर्चना कर सूत्र बांधा। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने रायपुर स्थित निवास में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को विभिन्न स्कूलों के छात्राओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
1: आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और हमारी बहनों को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: वहीं रायपुर सहित प्रदेश की 5 केंद्रीय, 22 जिला और 6 उप जेलों में रक्षाबंधन का त्यौहार उत्साह और सद्भाव के साथ मनाया गया। रायपुर सेंट्रल जेल में आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक बहनों को बंदियों से मिलने और उन्हें राखी बांधने की अनुमति दी गई थी। जेल अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक बंदी को राखी बांधने के लिए 3 बहनों को ही प्रवेश दिया गया। इसी तरह केंद्रीय जेल परिसर दुर्ग में बंदियों से मिलने और उन्हें राखी बांधने पहुंची बहनों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ दुर्ग पुलिस ने साइबर जागृति अभियान चलाया। इस दौरान साइबर टीम ने उपस्थित लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक, OTP और डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए। उधर बीजापुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने बालिका बाल गृह छात्रावास की छात्राओं के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। छात्राओं ने अधिकारियों और जवानों को राखी बांधी और भाई बहन के स्नेह का संदेश दिया। वहीं कांकेर जिले में भानुप्रतापुर क्षेत्र के ग्राम चौगेल में आत्मसमर्पित माओवादियों ने जिला रिजर्व गार्ड DRG के जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस मौके पर आत्मसमर्पित महिला माओवादियों ने बताया कि वे पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मना रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से उन्होंने राखी बनाना सीखा और आज उन्हीं हाथों से तैयार की गई राखी पुलिस जवानों की कलाई पर बांधना खास और भावुक अनुभव है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के बीच लापता रायपुर की मोनिका यादव के सकुशल होने की सूचना है। प्रशासन के अनुसार महादेवघाट निवासी मोनिका 22 अगस्त से नेपाल में थी और बाढ़ के बाद से उनका परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। राज्य सरकार ने सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1070 और कंट्रोल रूम नंबर 07712223471 जारी किया है। बिलासपुर स्थित बिलासा देवी विमानतल पर आज नई दिल्ली से बिलासपुर पहुंची अलायंस एयर की फ्लाइट का टायर लैंडिंग के दौरान फट गया, साथ ही पहिया भी क्षतिग्रस्त हो गया है। फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। हादसे के बाद बिलासपुर से प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले समारोह में खेल अलंकरणों के लिए चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को राज्य अलंकरण से सम्मानित करेंगे। पुरस्कार के लिए कुल 82 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए 5 दलों के 43 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को चुना गया है। राज्य सरकार ने अलग अलग निगम, बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 18 पदाधिकारियों को मंत्री का दर्जा दिया गया है। इनमें 3 को कैबिनेट और 15 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और

0: सेवक के पद शामिल हैं। विभाग द्वारा 25,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त से 19 सितंबर और आवेदन फीस भुगतान 2 से 21 सितंबर तक होगा। इधर छत्तीसगढ़ वन विभाग में वन रक्षकों के 1400 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिखित परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि उत्तर प्रदेश और उससे लगे जिलों में एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक चक्रीय चक्रवाती घेरा निर्मित है। इसके असर से प्रदेश में आगामी 6 दिनों तक बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है।
1: आगामी 24 घंटों में एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होने की संभावना है। कल से लेके आगामी 3-4 दिन तक ये लो प्रेशर एरिया का प्रभाव से पूरा प्रदेश में वर्षा का गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है। मुख्य रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ में और मध्य छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आज का स्थिति में आगामी 6 दिन तक भी येलो अलर्ट जारी किया है उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए भारी वर्षा के लिए।
0: श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान पर केंद्रित रहेगा। इसके तहत सहायक पुलिस महानिरीक्षक रोहित झा से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 29 अगस्त को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रदेश में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए 31 अगस्त को नवा रायपुर में रोड शो आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने नीलामी की 8वीं किश्त में 20 खनिज ब्लॉक्स शामिल किए हैं। इनमें ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्व, वैनेडियम, टाइटेनियम और टंगस्टन जैसे खनिज शामिल हैं। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड के ओखर गौधाम में पिछले 3 दिनों में 6 पशुओं की मृत्यु हुई है। पशु चिकित्सा विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार इनमें 4 पशुओं की मौत वृद्धावस्था और 2 की अन्य कारणों से हुई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने गौधाम का निरीक्षण कर मृत पशुओं का पोस्टमार्टम किया। जांच में हाल की अत्यधिक बारिश के कारण गौधाम परिसर में जलभराव की स्थिति सामने आई। गौधाम में करीब 300 पशु मौजूद हैं। पशुओं की सुरक्षा के लिए सभी पशुओं को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ ही संपन्न हो गई। 57 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। महासमुंद पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वाहन से 170 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 85 लाख रुपए बताई गई है। और रायगढ़ जिले में बीती रात एक बाइक दीवार से टकरा गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक मामले में BSc कृषि प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर की फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स परीक्षा निरस्त, FIR दर्ज। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान एक स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल।

0: आत्मनिर्भर बेफिक्र।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आप रायपुर केंद्र से सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 7 बजे हैं। और अब सुनिए ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं और इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं गांव जाखो से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा खटक। लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। जामानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल। गांव हीरावली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी, हिमाक्ष। डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया नारंग। बुलढाणा वडसिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलीज डिकेस्ट्रो। बठेना से हैं परमेश्वर साहू, राजबत्ती, टोप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा साहू। और बुरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

और अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं। इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से, वेद मिठा, अलका मिठा, बोरथरा नैला से, प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु, राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी, गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, लोरमी चचेड़ी से कमल कान मरावी, प्रमिला, नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी। आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद का।

अंधा कानून फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, और दीजिए सुनिए कार्यक्रम में ये अगला गीत। और इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान, सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु, और जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया आयान, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

0: शोले फिल्म का ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाज़, आनंद बख्शी के लिखे बोल और आडी बर्मन का संगीत।
1: सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की ढेरों ढेरों बधाइयां दे रहे हैं धतरंगी से भागवत वर्मा और लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी।
2: रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
3: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
2: रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से

0: न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
1: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
2: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं। इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं पंजौनिया जिला जलौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, तेवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम रायन, अब्दुल सलाम रायन, पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, पाहंदा पलारी से हैं नितेश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन, अंडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमल कांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, समडेल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता, राजकोट से हैं राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, सरगुजा मैनपाट से हैं अजीता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

छोटी बहन फिल्म का गीत अभी आपने सुना, और कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुना रहे हैं। इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना आदेश कुमार काले, वसुधा वज्रसेन, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरव खुराना, एस

0: ना। और कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुना रहे हैं। इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना आदेश कुमार काले, वसुधा वज्रसेन, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरव खुराना, एसके पप्पी, सहारनपुर से आशु मोची, कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनैरी, फरहीन अब्बासी और दानिश गुनौरी, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर।
1: Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Film.

और इस गीत के साथ ही ईमेल करें, गीत सुने का ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 7:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए किसान भाई बहनों का कार्यक्रम ग्राम।

मजबूत मैं आपीरित के बंधना के तिहारे तभी अही कहबो मजबूती से बंधे हमर बंधना के तिहार के बधाई आओ एक पैत आओ राम राम जय जोहार। तो संगी हो ये पावन परब के बात करबो तो ये सिर्फ कलाई में बंधे धागा नो है बल्कि मन ला भी मजबूत करते। सब जानथन रक्षाबंधन मतलब भाई बहनी के विश्वास माया दुलार अपनापन और जीवन भर एक दूसर के साथ निभाए के सुंदर वचन है। ये परब पर हमला याद दिलाते कि जिंदगी में धन दौलत ले ज्यादा कीमती का होते हमर रिश्ता हमर परिवार और हमर अपन मन के माया दुलार। कथे संगी हुआ कलाई में बंधे धागा और मन में बसे विश्वास भाई बहनी के माया रथे सदा खास। तो ये पावन पर्व में सुनी ये खास गीत जिला स्वर दे हैं सहारो बाई और खर संगवारी मन।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनैया जम्मू रेडियो श्रोता संगवारी मल्ला कजरी बहिनी के मया पीरित भरे राम राम जय जोहार। भई आज तो हमार बहुत बड़े अम्मा

0: देखा संगी हुआ कतका सुघर गीत भैया ल राखी बांधे जाहूं जेला स्वर धेरे इन्हें सहारो बाई और खर संगवारी मन ये तो सुनेन गीत अब पारी आथे सुने के संदेशा।
1: रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
2: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
1: कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक राखी, एक मुस्कान और न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाइयाँ। जब दीदी अपने हाथों से न्यू दिल्ली स्वीट्स की मिठाई खिलाती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन जुबान पर रख दिया हो। इस रक्षाबंधन रिश्तों की सबसे मीठी याद घर ले जाइए।
2: न्यू दिल्ली स्वीट्स, हाउस ऑफ प्योरिटी, लिंक रोड, बिलासपुर।
0: संगवारी हुआ संदेशा ला सुनेन कथी रक्षाबंधन हम अल्लाह का सीख देते।

0: भाई, रक्षाबंधन हमला ये सिखाते कि ये रिश्ता सिर्फ खून के संबंध ले नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और अपनापन ले मजबूत होते। संगवारी हुआ, रिश्ता हवे अनमोल, धन धन ले नहीं तो ले जाए। रिश्ता हवे अनमोल, धन ले नहीं तो ले जाए। अब मया के दू बूंद ले जिंदगी महकाए। राखी के धागा कही थे, का कही थे जाना था? राखी के धागा कही थे, मत टूटे विश्वास, असुख दुख मा संग रहीबो, यही छावे मिठास। तसंगी हुआ, मिठास मा बंधना है ये रक्षाबंधन के तिहार मा। रक्षाबंधन मा हमला सिर्फ कलाई मा राखी नहीं बांधना है, बल्कि दिन मा मया, सम्मान और विश्वास के गठान भी बांधना है। आवा संकल्प लीन, अपन भाई बहनी ला समय देना है, अपन परिवार संग सुख दुख बांट के संग में रहना है, गठान कस बंध के जो भी शिकवा गिला है ओला भुला के अपन रिश्ता में मिठास भी घोलना है। काबर के जिंदगी के असली कमाई पैसा नहीं, बल्कि वो मनखे है जिन सुख में मुस्का थे और दुख में हमन के हाथ पकड़ के खड़े रही थे। रिश्ता बचाबो तब परिवार बची ही, और परिवार बचाबो तब समाज बन ही। आखिरी में यही कि वो संगी हो, राखी के धागा कथे मयाला बनाए रख, मन के हर कोना मा अपनापन सजाए रख। आए जाए जिंदगी मा सुख दुख के फेर, आवत जावत जिंदगी मा सुख दुख के फेर, और रिश्ता रहे अटूट जन्म जन्म के नेह। यही सुंदर भावना के संग आप सब झला राखी पुन्नी के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आपन के भाई बहनी के मया मा विश्वास और खुशहाली बने रहे, और हमू मन आपस में सब जो रेडियो के माध्यम ले भाई बहनी किसान सब जुड़े हुए हैं, सब के मया प्रेम ये राखी के बंधना कस मजबूत और महकत रहे खुशी खुशी और खुश हुआ। चलिए कार्यक्रम में आगू कति बड़ी, काबर के आज है फोन इन कार्यक्रम। अब फोन इन कार्यक्रम में आज के विषय है खरीफ फसल में समन्वित कीट प्रबंधन। ये विषय के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दुष्यंत कौशिक, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर। और ये कार्यक्रम के सफल संचालन हमारे पंचू भैया करें हैं, ता आवाज सुनी फोन इन कार्यक्रम।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहर। मैं हूं आपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रूपेश कुमार कंवर। आज है शुक्रवार, अब प्रत्येक शुक्रवार के संध्या के 7:30 में फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करे जाते, जेमा किसान भाई मन बर पशुपालन, मुर्गी पालन, कृषि उत्पादन, मछली पालन और स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान पाए बर हमारे बीच में विशेषज्ञ के रूप में पहुना माला बुलाथन, जेमा अपन फोन करके समाधान पाथा। आज हमारे बीच में पहुना विशेषज्ञ हवा कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दुष्यंत कौशिक जीवन। एवं आप मन बताते कि अभी के बेरा खरीफ फसलों में संभावित कीट प्रबंधन हमन कौन प्रकार से करें। संगवारी हो, आज रक्षाबंधन राखी के तिहार, जे प्रकार से रक्षा सूत्र एक ऐसे पवित्र धागा है जेमा हमार भाई बहनी के रिश्ता ला विश्वास इसने सुरक्षा के प्रतीक रूप में माने जाते हैं। हमार कलाई में बंधे एक छोटे से धागा हमला विश्वास और एक दूसर के प्रति रक्षा और संकल्प के सुरता देवाते। ठीक वही प्रकार से हमार जो खेत में भीग बेरा में धान पान फसल अपनाए हमन, तो फसल के सुरक्षा और कीट नियंत्रण हमार फसल ला एक रक्षा सूत्र के तौर में काम करते। और अभी बेरा हम देखी तो हमार निंदाई कोड़ाई और हमार रोपाई की बुथक हम लगभग समापन की ओर है। सबसे ज़्यादा विशेष चेत करके आवश्यकता होती कि ए बेरा हम जो अपन खेत में फसल अपनाए हवन वहाँ फसल में कीट प्रबंधन हमन कौन प्रकार से करी, तो आज हमारे बीच में पहुना आए हवा डॉक्टर साहब। आज के कार्यक्रम में सब किसान भाई मन कति ले आपन के स्वागत करता हूँ। राम राम, जय जोहर।
2: जय जोहर पंचू भैया।
1: संगे संग राखी तिहार के आपन ला बहुत बहुत बधाई है डॉक्टर साहब। देखिए तो अभी हमारे किसान भाई मन के जो खरीफ फसल के रोपा है, लहरा है, बुता काम अब धीरे धीरे थिरात जाते, और कहीं कहीं ए बेरा सबसे ज्यादा हम चेत करके आवश्यकता होती है कि हमारे खेत की निगरानी कौन प्रकार से करिए। खास करके बात करिए धान की फसल में अभी बेरा कौन कौन से कीट लगे की संभावना रहते, एला हमारे किसान भाई मोला बताता।
2: जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न करे है पंचू भैया। अभी के समय में ना धान की जो फसल है,
1: अच्छा अच्छा,
2: अभी खरीफ फसल में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान की ही रकबा है।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो धान में जो कीट लगते उमा मुख्य रूप से 11-12 प्रकार के कीट आ जाते।
1: अच्छा अच्छा,
2: जेमा सबसे ज्यादा जो अभी प्रभावित है

0: एक तो तना छेदक है, दूसरा पत्ती लपेटक है,
1: भूरा
0: माहो है, सफेद माहो है,
1: और
0: एक कीड़ा और आगे है जिन लोग कहते हैं पेनिकल माइट।
1: अच्छा
0: है ना, हरा फुदका, हिस्पा, गंदी बग, थ्रिप्स और एक आर्मी वर्म के नाम से भी आते हैं, जिन्हें कट वर्म भी कहते थे। ये सब कीड़ा मन धान बहुत प्रभावित कर रहे थे।
1: डॉक्टर साहब आप कर गोड़ बात करवे करबो, संगवारी मन फोन कर रहे थे आरो आते, पहले ही संगवारी मन कर गोड़ बात कर रहे थे
0: जी।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ राम राम, जय जोहार, कौन बोला, कहाँ बोला था जी?
2: राम राम, मैं ग्राम जूनियर दिल्ली में बोला था।
1: आज के फोन इन कार्यक्रम में आपन के स्वागत करत हन, झोका जय जोहार।
2: जय जोहार भैया, जय जोहार। अभी के समय में रोपा लिहारा तो कल आ रहे, लग गए रोपा भी, लग गए लिहारा भी बोहन खड़े।
1: अच्छा अच्छा,
0: जय जोहार मरावी जी।
2: अभी जो बहुत लग गए है।
0: हाँ,
2: या?
0: हाँ, हाँ।
2: अच्छा, पत्ता भी मन थोड़ा सा टिप टिप पकड़ाए टाइप के हो गए है।
0: हाँ,
2: लिहारा के है और रोपा भी के है।
0: देखा, सबसे पहले तो ये बात ल समझे के बात है, जब भी कोई कीड़ा या रोग लगते जो भी दवाई डालना है कृषि वैज्ञानिक से पूछ करके ही डालना है और सही मात्रा में डालना है। हाँ, और ऐसा नहीं बिना पूछे अगर हमन डाल देते ना, तो कई बार सिंथेटिक पायराथाइड दवा कहते जैन लेमडा साहेलुथिन, डेल्टा मेथिन, कराटे, कुमकुम, ऐसे दवा जेना थे वो हमन पहले डाल देते कि सब कीड़ा मर जाए। पर ओकर से का होते ना, सभी कीड़ा मरते ना, तो जो मित्र कीट है ओहू हम मर जाते। और आज अगर हम तना छेदक ला मारे के लिए जो दवा हमन डालें, साइपरमेथिन, लेमडा साहेलोथिन, डेल्टा मेथिन, जो बाजार में कराटे, कुमकू, ऐसे टाइप के बहुत सारे नाम से आते, तो ओकर कारण बाद में भूरा माहो भी आते, भूरा माहो और
2: भूरा माहो आते।
0: हाँ, तो एक कीड़ा के नियंत्रण तो करा था, लेकिन वही दवाई के कारण एक रिसर्जेंस होते, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाते कीड़ा और दूसरा कीड़ा भी आ जाते, तो भूरा माहो भी आ जाते। फिर भूरा माहो के हमें नियंत्रण के लिए बिना सोचे समझे जो भी दवा अपन मन में आई वो लोग उपयोग कर लेते हैं, तो ऐसा दवा के उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले जैसे अभी की स्थिति में तना छेदक के ज्यादा प्रकोप चालू हो जाते, जिन्हा पौधे के वृद्धि रोक देते, है ना, नीचे में छेद कर देते और छेद ले करके ऊपर ऊपर बढ़ते और पौधा के नीचे अंदर के टिश्यू जिन है वो लखा देते, तो ओमा का होते गभोट अवस्था से पहले अगर हम निराकरण कर दी गभोट अवस्था में तो तना छेदक मर जाते, अगर नहीं करी तो डेड हार्ट बन जाते, मतलब पोंगरी तो निकलते लेकिन आगे बढ़े नहीं। फिर आखिरी में का है, बाली तो निकलते लेकिन बाली में दाना नहीं रहे, पोचा दाना निकलते जिनमें सफेद बालियां कहते, है ना। तो एकर से थी पौधे की वृद्धि रुक जाते, दाना नहीं बने, दाना जो बाली निकलते तो खाली रह जाते, उपज में बहुत कमी हो जाते। तो एकर लिए सबसे अच्छा उपाय जेन अगर हम जैविक और यांत्रिक नियंत्रण की बात करी तो एक फेरोमेन ट्रेप आते, जेला 12 से 15 एक हेक्टेयर में फेरोमेन ट्रेप लगाए जाते। दूसरा है, हाँ, अब जैविक नियंत्रण में एक ट्राइकोग्रामा जापानिकम या ट्राइकोग्रामा चिलोनिस नाम के छोटे से कीड़ा रहते, ये कीड़ा भी है तना छेदक के कीड़ा ला मार देते अंडा ला, तो 1,00,000 परजीवी, ये परजीवी ट्राइकोग्रामा है, एक अंडा के समूह ला अगर धान के खेत में तना छेदक अंडा देते वो समय डाले में तना छेदक के बहुत हद तक के नियंत्रण हो जाते। और एक बहुत अच्छा उपाय ये भी है, प्रकाश प्रपंच जिन ट्रेप का थे, प्रपंच मतलब जाल फैलाना, प्रकाश के जाल फैलाना, एक लाइट ला लगा दो खेत में 6 से 9 बजे शाम के बीच में, तो ओमा सभी प्रकार के जो रात में उड़ने वाला जो कीड़ा है वह आकर के फंस जाते। नीचे में माटी तेल रख दो इतो तस्तरी या तसला मा, है ना, तो वही तसला मा, तो वही में आके गिरते तो हम मर जाते। और एकल भी पहली जो गर्मी के समय रहते ना, तो वो ग्रीष्मकालीन जुताई बहुत महत्वपूर्ण है, जेमा फसल अवशेष भी नष्ट हो जाए और जमीन के अंदर जो कीड़ा मन छुपे है तेनों में जुताई के द्वारा ऊपर आ जाए और सूर्य के गर्मी से नष्ट हो जाए। अब रासायनिक नियंत्रण ये सब करे के बाद भी अगर नियंत्रण नहीं होते तो फिर रासायनिक नियंत्रण माथन, जेमा आजकल बाजार में क्लोरान ट्रेनेली प्रोल ऐसे करके दवा थे 18.5 SC के, ओकर 150 ml एक हेक्टेयर में डालबो ना तो नियंत्रण हो जाते। और अगर यह नहीं मिलिस तो काटा हाइड्रोक्लोराइड भी आते 4G के, जिन 10 किलोग्राम एक हेक्टेयर में डालते बाली निकले के पहली, है ना। तो एक तो अपन गभोट अवस्था में डालना है, दूसरा अगर नहीं हुई तो बाली निकले के पहली, बाली निकले के बाद में डाले में तो कोई नियंत्रण नहीं हो सके,
2: नहीं हो,
0: है ना, तो ये बात ला ध्यान रखना है।

0: अब ओकर बाद में आ जाते भूरा माहो, वह बहुत ज्यादा परेशान करते तना छेदक के बाद। हाँ, तो ये कहाँ रहे थे? पौधा के निचले भाग में झुंड बना के कीड़ा रहे थे और रस चूसत रहे थे, और रस चूसे के कारण क्या है, पौधा के जो पत्ती है वो पीला होकर के सूखे लगते और एक गोल गोल आकार में रहे थे। खेत में दिखे ना तो गोल गोल आकार में जले जले टाइप के दिखे ही, ओला कथे हमन हापर बर्न, ठीक है। तो एकर कारण से क्या होते भूरा माहो से पौधा के बढ़वार रुक जाते। अब जहाँ गोल गोल जले जले दिखते तेना दबे दबे भी दिखते, बढ़वार रुक गए और दाना के भराव कम हो जाते, उपज में बहुत ही ज्यादा कमी आ जाती। हाँ, अब अहूमा ध्यान रखना है, भूरा माहो आए है तभे दवाई ले डालना है, नहीं आए है तो दवाई ले नहीं डालना है। तो अब आए है तो कितना कीड़ा होना चाहिए जिन समय में हमला दवाई का उपयोग करना है। तो इला ध्यान रखना है कि अगर पौधा की बढ़वार अवस्था है ना, गभोट अवस्था है, तो एक ठो तना माना 10 से 12 भूरा माहो के कीड़ा अगर दिख गए, थोड़ा गिने लगी तो, या फिर ओकर प्रजनन अवस्था जब आ जाते तो 20 से 25 कीड़ा एक तना में हो तभी ही दवाई के छिड़काव करना चाहिए। अब एकर अगर हम बात करी तो का करी, भाई भूरा माहो भी है, तना छेदक भी है, पत्ती मोड़क भी है, तब या कटवर्म भी है, तब एक बाजार में आते दवा थायोमेथेक्साम 25% WG के, ओकर एक एकड़ के हिसाब से ना लगभग 40 से 50 ग्राम ला घोल करके पानी में अच्छे तरीके से घोल करके हिला करके
1: मिक्स,
0: हाँ 40 से 50 ग्राम एक एकड़ हिसाब से अगर थायोमेथेक्साम दवा ला डाल दी तो ये सबो कीड़ा हा मर जाते और हमार हाँ कीट से नियंत्रण हो जाते।
2: ठीक मरावी जी, फोन लगाया एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहर।
1: राम राम, जय जोहर।
2: डॉक्टर साहब आप कर गोड़ बात करबे करबो, संगवारी बन फोन कर थे आरो आते, पहले ही संगवारी बन कर गोड़ बात कर थन
0: जी।
2: हेलो
3: हेलो,
2: राम राम, जय जोहर जी।
3: राम राम, जय जोहर।
2: हाँ, कौन बोला, कहाँ बोला था जी?
3: मैं कमलकांत मरावी, लोरमी ग्राम चेड़ी बोला हूँ।
2: हाँ जी, राखी तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई आप बोला।
3: आपोल बधाई है भैया। रोपो पर लग गए है, पानी कतेक रखना है और कीटनाशक का डालना है, एक बारे में बताते।
0: जय जोहर मरावी जी।
3: जय जोहर, जय जोहर।
0: मैं दुष्यंत कौशिक बोला था, तो आप मन पूछे है कि रोपा लग गए है और कैसे कीटनाशक दवा के उपयोग करना है। मरावी जी, पिछले कुछ समय से धान के बाली जब पकते तो अधिकतर बाली है पोचवा भी हो जाते, बदरंग भी हो जाते, इला देखे है?
3: हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो वो का कारण से होते जानता?
3: मैं वही तो जानकारी लेना।
0: हाँ, तो एक ऐसे कीड़ा है जो बहुत छोटे है और आंखी में दिखाई नहीं दे, जिला हमन कथन पेनिकल माइट, ठीक है। ये पेनिकल माइट जैन होते ना, ये 8 पैर वाले मकड़ी प्रजाति के है जो खुले आंख से दिखाई नहीं दे क्योंकि बहुत अधिक ये छोटे रहते, और इला केवल आवर्धन लेंस जो होते ना ओकरे से ही हमन देख सकते थन। तो एक बार जैन खेत में भी ये माइट के प्रकोप होते तो ये जाना कि अगले साल भी वही में ही माइट के प्रकोप होना ही होना है, जब तक कि हम उपाय नहीं करबो, ये माइट ला पूरा निराकरण नहीं करबो। तो का करना है माइट के उपचार के लिए, निराकरण के लिए, सबसे पहले तो गभोट अवस्था जैसे ही चालू होते धान के वो समय और एक धान के बाली निकले के पहले की अवस्था में 2 बार हमला ये दवा के छिड़काव करना है। एक तो दवा का नाम है डाइफेंथ्रिन 50 WP, अगर 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है, और दूसरा दवा है प्रोपीकोनाजोल जिन फफूंद नाशक दवा है 25 cc, ओकर 1 ml 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना है। मतलब ये कि ये जो डाइफेंथ्रिन है ओकर 1.5 ग्राम और प्रोपीकोनाजोल है ओकर 1 ml, दोनों ला एक साथ मिला करके 1 लीटर पानी में घोल करके पहला छिड़काव गभोट या पोटरी का अवस्था में छिड़काव करना चाहिए, और दूसरा छिड़काव जो है बाली निकले के पहले ही छिड़काव कर दें, तो ये पूर्ण रूप से पेनिकल माइट जेन है या सीथ माइट के जो आक्रमण है यह रुक जाते है। ठीक है मरावी जी,
3: छिड़काव अभी कर सकते हैं?
0: गभोट के अवस्था में एक बार छिड़काव करना है, ठीक है, और उसके बाद में धान में बाली निकले की अवस्था बनते ना तो निकले के पहले छिड़काव करना है, निकले के बाद नहीं।
3: एक समस्या हुआ थे भैया, वही समय जला हम गांव भाषा में लाई का था माइट के
0: लाई फूटना, जो पीला पीला कलर के थे, लाई टाइप के दिखते थे ना, कहा था?
3: हाँ हाँ
0: हाँ, वो फफूंद जनित रोग है, तो होल छिड़काव करिए ना, तो प्रोपीकोनाजोल फफूंद नाशक दवा है तो जरूर

0: कुछ न कुछ ओमा अच्छा ही लाभ दही।
1: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब, आपका गोड़ बात करबे करबो संगवारी मन फोन करत है आरो आते पहले ही संगवारी मन कर गोड़ बात करत हन
0: जी।
3: हेलो हेलो,
2: हाँ राम राम, जय जोहार, कौन बोलत, कहाँ बोला था जी?
3: चुपरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है मनोज नामदेव।
2: हाँ स्वागत है छत्तीसगढ़ में आप मन के, जय जोहार राम राम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: और खेती बाड़ी कैसे चला थे आपन कथी?
3: बिल्कुल सर, खेती बाड़ी हमारे बढ़िया चल रही है, इस समय बारिश चल रही है।
2: हाँ जैसे अभी बात करी मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश में अभी का फसल अपनावा था वाला हमारे रेडियो सुनिया किसान भाई श्रोता संगवारी मन बतावा ना
3: सर। मध्य प्रदेश में मूंगफली और सोयाबीन की फसल अभी है फिलहाल, और उर्द मूंग भी है। जी हाँ सर, इसकी फसल करते हैं हमारे यहाँ।
2: अच्छा अच्छा,
3: हमारा ये सवाल है कि सर अभी फिलहाल में उर्द और मूंग जो हमारे यहाँ खेती होती है उसमें क्या हो रहा है सर, कि अभी मूंग में और उर्द में इल्ली का प्रकोप दिखाई दे रहा है
2: जी।
3: तो अभी लगभग 8-10 दिन से ये प्रकोप चल रहा है इल्ली का, तो थोड़ा सा मेरे को आप मार्गदर्शन दे के उसमें कौन सी दवाई मैं डालूं जिससे इल्ली का प्रकोप खत्म हो जाए।
0: अभी जो उड़द मूंग की जो फसल है उसमें आपने जैसे बताया इल्ली के प्रकोप ज्यादा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, नहर भी पानी है, तो नहर के माध्यम से भी और एक खेत से दूसरे खेत के माध्यम से जो पानी बहती है उसके माध्यम से भी ये इल्ली जो है एक खेत से दूसरे खेत में आ जाते हैं।
3: ठीक है।
0: और ये इल्ली इतना खतरनाक होता है, अगर स्पोडोप्टेरा की बात करें, तंबाकू इल्ली जो कहते हैं, तो वो 24 घंटे में पूरे पत्तियों को खा जाता है और डंठल युक्त बना देता
3: है।
0: तो आपने इल्ली का जैसे बताए थे, तो अगर तंबाकू की इल्ली आती है जिसे स्पोडोप्टेरा कहते हैं, तो अगर ये 24 घंटा रह जाए तो आपके पूरा मूंग उड़द की फसल की जो पत्तियां हैं उसे खा खा करके डंठल युक्त बना देता है, है ना। वैसे एक हेलिकोवर्पारमिजेर आता है जो फली छेदक या पत्ती खाने वाले सुंडी कहते हैं, तो दो प्रकार की सुंडी मुख्य रूप से आक्रमण करती है। अगर हम हेलिकोवर्पारमिजेर की बात करें सुंडी, तो ये हरा भूरा कलर का मोटा सुंडी होता है, है ना, और फूलों और फलियों में मुख्य रूप से छेद करती है। लेकिन जो तंबाकू किल्ली है जिसे स्पोडोप्टेरा कहते हैं, ये भी हरी और भूरी कलर की सुंडी हो सकती है और पत्तियों को ये तेजी से खाती है। ठीक है, ये पत्तियों को खा करके जाली नुमा कर देती है और अधिक प्रकोप से ना पौधे लगभग पत्ती विहीन हो जाता है। तो अगर 2 से 3 सुंडी प्रति मीटर के लाइन में, 1 मीटर में अगर हम देखें, तो 2 से 3 सुंडी है या 10% पत्तियों को क्षति पहुंचा दी है, तो तत्काल हमको फिर जो कीटनाशक दवा है उसका छिड़काव करना चाहिए। तो उस कीटनाशक दवा को आप नोट कर लें
3: जी, सब बताएं।
0: हाँ, इमामेक्टिन बेंजोएट, ये 5% SG, इस नाम से बाजार में मिलेगा। इसका जो है 0.4 ग्राम ना, याद रखिए।
3: हाँ, बहुत जानता हूँ सर।
0: हाँ, 1 लीटर पानी में घोल करके अगर छिड़काव करते हैं 2 बार, है ना, 15 दिन के अंतराल में, तो पूर्ण रूप से ये कीटों का सफाया हो जाएगा। और अगर ये दवा के अलावा अन्य दवा भी है एक, जिसे हम कहते हैं क्लोरान ट्रेनेली प्रोल, ठीक है, क्लोरान ट्रेनेली प्रोल, ये 18.5% SC के नाम से बाजार में आता है। इसका भी अगर हम 0.4 ml मतलब 0.4 ml 1 लीटर पानी में घोल करके अगर छिड़काव करते हैं, तो इस कीटों से आक्रमण से हमको जरूर निजात मिलेगी ही मिलेगी
3: जी।
0: लेकिन इसमें आपने जो मूंग उड़द की बात की है ना
3: जी, जी,
0: उसमें एक कीड़ा और बहुत ही ज्यादा हानिकारक कीड़ा आता है जिसको कहते हैं सफेद मक्खी।
3: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही,
0: है ना। ये पत्तियों की निचली सतह पे रहती है और रस को चूसती है, और आंखों में अगर देखेंगे तो हल्की सफेद सफेद दिखेंगे और जैसी पत्ती को हिलाएंगे उड़ता हुआ दिखाई देगा।
3: बिल्कुल,
0: है ना। तो ये पत्तियों के निचली सतह पर पूरे झुंड में मिलती है, छोटा होता है, सफेद होता है, है ना, सफेद पंख वाला होता है ये कीड़ा। अब ये पूरे पत्तियों के रस से चूसता है, पत्तियां पीली पड़ती हैं और पत्तियां पीली पड़ करके ना ये मुड़ जाती हैं नीचे की ओर, आप देखेंगे पत्तियां मुड़ती हैं, दूर से भी देखेंगे तो पत्तियां मुड़ी हुई दिखाई देंगी।
3: बिल्कुल सही
0: है ना। तो ये पक्का जान लीजिए कि सफेद मक्खी का आक्रमण हो गया है। और ये जब सफेद मक्खियां का आक्रमण होता है और रस चूसने लगते हैं, तो ये पत्तियां जब पीली पड़ जाती हैं और देखिएगा डॉट डॉट डॉट डॉट दिखाई देता है, मतलब और ये पीला मोज़ेक वायरस अगर एक बार लग गया किसी पौधे में तो पूरा

0: पूरे फसल में लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर ये पीला मोजेक वायरस लगता है, कोई पौधा पीला पीला दिखाई दे रहा है सफेद मक्खी के कारण, तो तत्काल उस पौधे को उखाड़ करके, हमको गड्ढा करके उसमें दबा देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए।
1: लगत है संगवाई मन फुकरत हवे आरो आत है, पहले संगवाई मन कर गोड़
0: बात के धब्बा हुई तो वो सीथ ब्लाइट के धब्बा हो सकत है, ठीक है। तो वो सीथ ब्लाइट के कारण भी धान के पत्ती है पीला हो जाती।
2: अच्छा हाँ। तो हरा नहीं होते ना सर, ओमा खातुआ को भी ओमा छिड़काव करे हावन।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, कि अगर आप मन देखी है धान के पौधा के नीचे ला, और वो नीचे ला देखी है तो वो धान के पौधा के नीचे में काला काला कलर के धब्बा लगे हुई, जेनहा थोड़ा सड़े जैसे भी दिखत हो ही।
2: अच्छा।
0: हाँ, और वो धब्बा अगर हो ही, धब्बा के कारण जिन्हें सीथ ब्लाइट रोग होता
2: है,
0: हाँ ना, सीथ ब्लाइट, और वो सीथ ब्लाइट अगर हो ही, ठीक है, तो हमला वो सीथ ब्लाइट के लिए दवा डाले लगी, एजोस्ट्रिबिन करके दवा थे 23% ऐसी, एजोस्ट्रिबिन, ठीक है, या फिर प्रोपिकोनाजोल, ठीक है, ये सीथ ब्लाइट के दवा है। ये दवा के अगर आप मन छिड़काव करिया 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, एक एकड़ में 200 ml एजोस्ट्रिबिन करके, तो वो पीलापन गायब हो ही। लेकिन ध्यान रखिए, अगर धान के पौधा के जड़ी के पास में पीला पीला हो ही तो वो सीथ ब्लाइट हो सकते है, ऐसे मोर कहना है, ठीक है। दूसरा जो पीलापन होते ना, वह भूरा माहो, हरा माहो, एक कारण भी होते, सफेद माहो।
1: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बेरा होते कार्यक्रम ले विदल है कि जात जात अपन कर आखिरी सवाल ये करना चाहबो कि रासायनिक नियंत्रण के उपाय का हवा, इहला थोड़ा बताता अपन।
0: रासायनिक नियंत्रण के उपाय के मतलब है रसायनों के द्वारा ही नियंत्रण करना।
1: अच्छा अच्छा,
0: ठीक है। एमा रासायनिक नियंत्रण के लिए जो मुख्य रूप से सोचे और समझे लगते कि कैसे करना चाहिए, एमा भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि जब कीड़ा है तो ओकर आर्थिक क्षति स्तर जब हो करना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा,
0: जो कीटनाशक दवा के जो पैकेट है ओमा उलझेला लेबल कथन ओमा निर्देश दिए रहते बहुत सारा।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो वो निर्देश पढ़ना चाहिए और कर पालन करना चाहिए। कीटनाशक दवा के छिड़काव करते समय जो आदमी छिड़काव करे थे ओला दस्ताना, मास्क,
1: गमछा,
0: चश्मा, हाँ, मुंह में बांध करके गमछा, ये सब पहन करके छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। ये सब करे के बाद में कई ऐसे भी चीज हैं जिला ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है।
1: अच्छा अच्छा,
0: जैसे यदि दवा का छिड़काव अगर संभव है तो शाम के समय ही करें, ठीक है। अलग अलग रासायनिक दवा या अलग अलग श्रेणी वाले दवा जो भी बताए हैं उसको बदल बदल के छिड़काव करें। जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक गण है या कॉलेज के वैज्ञानिक गण है, दवा छिड़काव करे के 3 घंटे के बाद ही बारिश हो तो ठीक है। पहले अगर 3 घंटे के अंदर कीटनाशक दवा, फफूंदनाशक दवा या अन्य दवाला एक साथ मिला देते और एक साथ मिला करके खेत में छिड़क देते, ऊपर से घाटा ही होते, फायदा नहीं हो और बढ़ोतरी हो जाते कीड़ा मन करके।
1: अच्छा अच्छा,
0: ठीक है, ये मुख्य सामान्य एकर निर्देश है जी।
1: ये प्रकार से कर हम नियंत्रण कर सकते हैं की दवा।
0: हाँ,
1: संगवारी हो, एक तरी से आज के फोरिन कार्यक्रम हमारे बीच में पहुना आ रही हवाई डॉक्टर दुष्यंत कौशिक जी मन, एमरिन हवाए कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के सहायक प्राध्यापक, खरीफ फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन हमन कौन प्रकार से करी, दूर दराज ले हमर किसान भाई मन फोन करी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपन हमर किसान भाई मन समस्या के समाधान बताया कि कैसे अभी के बेरा में खरीफ फसल में समन्वित कीट प्रबंधन हमन कौन प्रकार से करी, और वही बेरा में फिर अपन करा नवा विषय में जुड़बू, इतक बढ़िया जानकारी बताया एक बार आपन, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई, और ये आज के रक्षाबंधन त्योहार के भी आपन बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: संगी हुआ, अभी हम सुनत रहे फोन इन कार्यक्रम। आज के विषय रही से खरीफ फसल में समन्वित कीट प्रबंधन, और ये विषय विशेषज्ञ रही है डॉक्टर दुष्यंत कौशिक, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर, और सफल संचालन हमार पंचू भैया करत रही है। थोकन मौसम के जानकारी दे दी, आज मौसम में 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए। देखा बेरा हर बुलक गए, अब जाके बेरा हो गए घर। तो आज के कार्यक्रम ले देवा विदा, जो कहो कजरी बहनी के, मैया प्रीत भरे राम राम, जय जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम सभा कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। और अब आइए आनंद लेते हैं सुगम संगीत का। सुगम संगीत के इस क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संजय वत्सल के गीत।
1: न जाने तुम बंद पलकों में क्या छुपाए फिर रहे हो, अगर पलकें उठाओ तो पता चले।

संजय वत्सल के गीत अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत में। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम में 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:15 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, सावन की हरियाली, बारिश की फुहारें और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन, यह केवल एक धागा नहीं बल्कि विश्वास, स्नेह, जिम्मेदारी और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है। रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की असली ताकत प्रेम और विश्वास में होती है। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसमें केवल रक्षा की कामना नहीं बल्कि भाई के सुख, समृद्धि और लंबी आयु की मंगल कामना भी छिपी होती है।

श्रोताओं, हमारी संस्कृति में भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्तों में माना जाता है। बचपन की नोक झोंक, एक दूसरे की शिकायतें, फिर भी हर मुश्किल में साथ खड़े रहने का भाव इस रिश्ते को खास बनाता है। समय बदल गया है, आज कई भाई बहन अलग अलग शहरों और देशों में रहते हैं, लेकिन राखी का त्यौहार दूरियों को भी छोटा कर देता है। वीडियो कॉल, संदेश और डाक से भेजी गई राखियां यह साबित करती है कि प्रेम की डोर दूरी से नहीं टूटती। कहा भी गया है कि रिश्तों की डोर नाजुक जरूर होती है, पर सच्चे प्रेम से बंधी हो तो उम्र भर साथ निभाती है।

श्रोताओं, रक्षाबंधन का इतिहास बहुत समृद्ध है। पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण और द्रौपदी का प्रसंग हो या फिर रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कथा, राखी हमेशा विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक रही है। आज के दौर में रक्षाबंधन का अर्थ केवल भाई द्वारा बहन की रक्षा तक सीमित नहीं है, यह एक दूसरे के सम्मान, सहयोग और भावनात्मक संबल का भी प्रतीक है। बहनें भी हर परिस्थिति में अपने भाइयों का हौसला बनकर खड़ी रहती हैं। रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब उनमें संवाद, सम्मान और अपनापन बना रहे।

श्रोताओं, हम सब के बचपन की यादों में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे अपनी बहन या भाई के साथ बिताए गए पल याद ना आते हों। स्कूल की शरारतें, त्योहारों की रौनक, छोटी छोटी लड़ाइयाँ और फिर तुरंत हो जाने वाली दोस्ती, यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती है।

श्रोताओं, रक्षाबंधन का यह पावन पर्व हमें यह सिखाता है कि परिवार की समाज की सबसे मजबूत इकाई है। जब परिवार में प्रेम और विश्वास होता है तो समाज और राष्ट्र भी मजबूत बनते हैं।

0: श्रोताओं, राखी का धागा केवल कलाई पर नहीं बनता, यह दिलों को जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की हर खुशी और हर कठिनाई में परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होता है।
1: Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Filmi Gaane.

श्रोताओं, आज जब दुनिया तेज़ी से बदल रही है, तब ऐसे पर्व हमें अपनी जड़ों, संस्कारों और रिश्तों से जोड़े रखते हैं। रक्षाबंधन का यह पर्व भाई बहन के प्रेम, विश्वास और समर्पण का उत्सव है।

0: साथियों, आइए रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हम अपने रिश्तों में प्रेम, सम्मान और विश्वास को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लें। और इसी के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा से हमें दीजिए विदा।
1: गूंजूंगा मैं प्यार से तेरे अरमानों की माला।
0: आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 8:45 होने वाले हैं। और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320

0: भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
2: We have given them range of support offers.
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
4: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनाक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
6: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री

0: मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
2: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
3: भारत सरकार ने योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
0: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी UGCnet.NTA.NIC.IN पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्सपर @AIRNews।

0: हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं। ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
1: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के विल्वन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम मनोज सिंह राणा विद द न्यूज एट 9। The headlines: India sends third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance to flood-hit Nepal. External Affairs Ministry says 320 Indian nationals remain uncontactable. Death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 547. Over 1,500 people remain missing on both sides of the border. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. Government measures improve market availability of sugar, ensure faster movement, ex-mill sugar prices fall by around 20%. India's index of industrial production records growth of 6.7% in July this year. And India's Belaval Senthil Kumar to take on Hungary's Balázs Farkas in the final of PSA Budapest Squash Open tonight.

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं सिलसिला है प्यार का। इस फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत। जो

आपके लिए कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इस फिल्म से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, जतिन ललित का संगीत।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आइए सुनते हैं इस फिल्म से अगला गाना, उदित नारायण की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

0: रुकना तो हम चाहते हैं, लेकिन वक्त हो चला है अलविदा लेने का। अगली मुलाकात के वादे के साथ दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत। आज का आपके लिए कार्यक्रम होता है संपन्न। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को।

0: इसने दर्शकों के लिए ऋषिकेश मुखर्जी का मतलब है साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में, जिनमें हास्य भी होता है, मनोरंजन भी और कोई सार्थक संदेश भी।
1: मैंने

सब आम लोगों के लिए फिल्में सपनों का एक संसार होती हैं, और इस स्वप्न संसार को अलग अलग रंगों से रंगना, कुछ नया करके दर्शकों के सामने पेश करना, यही सपना देखा था तब के कलकत्ता और आज के कोलकाता में जन्मे ऋषिकेश मुखोपाध्याय ने। साइंस ग्रेजुएट ऋषि दा ने अपने शुरुआती दिनों में गणित और विज्ञान विषय में अध्यापन भी किया, जिन्हें ऋषि दा के नाम से पुकारा जाता रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स के साथ, जबकि वो पहले कैमरामैन और बाद में फिल्म एडिटर बने। ये बात है लेट 40s की। उसके बाद वो मुंबई आ गए और यहां आकर निर्देशक बिमल रॉय के साथ बतौर सहायक निर्देशक और एडिटर जुड़ गए। हम बात कर रहे हैं अब 1951 की। उस दौरान उन्होंने बिमल रॉय की माइलस्टोन फिल्म्स दो बीघा जमीन और देवदास के लिए भी काम किया।

0: 1957 में ऋषिदा को स्वतंत्र निर्देशन का मौका मिला। फिल्म थी मुसाफिर। ये फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन ऋषिदा की किस्मत में तो सफलता लिखी ही थी। तो वो समय भी आ गया जबकि 1959 में उनके निर्देशन में राज कपूर और नूतन अभिनीत फिल्म अनाड़ी ने अपार सफलता अर्जित की।
1: किसी

साथियों, ऋषि दा ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 42 फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषि दा को फिल्म फेयर ने 7 बार अपने अवार्ड से सम्मानित किया। 1956 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड नौकरी, 1959 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मधुमति।

1970 बेस्ट स्क्रीन प्ले अनोखी रात, 1972 बेस्ट एडिटिंग आनंद, 1972 बेस्ट स्टोरी आनंद, 1981 बेस्ट मूवी अवार्ड खूबसूरत, 1972 बेस्ट फिल्म आनंद।

0: कभी तो हंसाए।
1: ऋषिदा ने अपनी फिल्मों में हमेशा कहानी को और पात्रों को महत्व दिया। यही नहीं, उन्होंने हमेशा ही नए नए कलाकारों को अपनी फिल्मों में मौका दिया। जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, इन जैसे कलाकारों ने उनके साथ काम करके अपनी उत्कृष्ट कला पेश की।

0: रिशिदा की फिल्मों में से कौन सी फिल्म छोड़ दी जाए, किसका जिक्र किया जाए, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। हिंदी सिने संसार में रिशिदा का जो योगदान रहा है, उसके लिए सन 2001 में भारत सरकार ने रिशिदा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1960 में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला फिल्म अनाड़ी को। 1961 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म अनुराधा। 1961 में ही गोल्डन बियर अवार्ड के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई फिल्म अनुराधा। और 1999 में रिशिदा सम्मानित हुए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से।
1: मैंने

ऋषिदा का पूरा जीवन फिल्मों के लिए ही समर्पित था। उन्होंने सदा ही अपने दर्शकों के लिए साफ सुथरी, स्वस्थ, मनोरंजन से भरी फिल्में बनाई और अपने चाहने वालों के बीच सदा के लिए अपनी जगह बना ली। 27 अगस्त सन 2006 इस दिन लंबी बीमारी के बाद ऋषिदा का मुंबई में निधन हो गया।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: साथियों, ये था निर्माता, निर्देशक और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को समर्पित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
2: आज के फनकार।

0: छाया गीत,
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

छाया गीत के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। अगाध स्नेह और अटूट प्रेम का रस घोलता है भाई बहन का रिश्ता। बचपन की अटखेलियाँ, लुका छिपी का खेल, जैसे बारिश और मिट्टी का साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर सौंधी खुशबू का एहसास पूरे घर को महकाता है और घोलता है खुशियों का अर्क जीवन में।

भाई के लिए बहन क्या है और बहन के लिए भाई का मोल कितना है, ये बातें शब्दों में नहीं भावनाओं में बयां की जाती है। भाई को दुनिया की हर सुंदर चीज में अपनी बहन की ही छवि नजर आती है। और बहन, भला दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बहन को अपने भाई से ज्यादा अनमोल लगी हो? प्रेम का ये रूप अनूठा है,

कैसा भी हो, बिछोह उसके साथ जुड़ा ही होता है। बचपन का ये साथ भी कहां जन भर साथ चलता है। आखिर एक न एक दिन अपने भाई की नोक झोंक में कही गई बातों को सच करती हुई वो बहन चली ही जाती है परदेश, अपने पिया का घर बसाने। और उसे रोज चिढ़ाता भाई भरी आंखों से देखता ही रह जाता है।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। बचपन की यादों में खोई बहना याद करती है घर की चार दीवारी, अपना आंगन, सखियों की चुहलबाजियां, और इन यादों में मुस्कुराती है तो भर भर आती हैं अखियां भी। कलेजा मुंह को आता है और याद आती है उस खेवैया की, जो ले जा सकता है बचपन की उन गलियों में कभी भी। पुकार लगती है बस उस नाम की।

बचपन की बातों को अपने दिल से लगाए, कभी हंसे तो कभी आंसू बहाए, भेजे संदेश पीहर कभी बादलों के साथ, कभी करे चंदा से अपने वीरे की बात। कौन समझ सकता है एक बहन के मन के हालात, पराए घर में जिसके दिल में बसते हैं अपने घर के हंस।

वो याद करती हैं तो भूला कहां भाई का भी दिल अपनी इस बहन को। घर में फैली हर ओर उसकी ठिठोली, हंसी खिलखिलाहट की मध्यम होती आवाजें। वो दो चोटी में झूमती नाचती चिढ़ती चिढ़ाती वो घर की चौखट में पैर धरते ही अब बहाती है आंसू। भाई छेड़ता है और एक बार फिर मुस्कुरा उठती है बहन। यही तो है अरमान उसका, खिली रहे खुशियों की चमक सदा चेहरे पर।

0: अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 11 बजने वाले हैं और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष